0: I did my schooling and all in Bangalore itself, National High School, and up to PU. I studied in National College, which is one of the renowned colleges. And after that, I switched out. Initially, I had PUC in science, that is plus two in science. मेरा तबियत थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए मैं स्विच ओवर हो गया आर्ट्स के लिए एंड आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी. मैं लेक्चरर बना सो इमीडिएटली सो फॉर 30 इयर्स आई टॉट सोशियोलॉजी. देन एज आई हैव मेंशनड देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश इफ यू चेंज योर इफ यू डोंट चेंज योर डायरेक्शन यू विल हेड वेयर यू आर हेडिंग. सो मैंने डायरेक्शन चेंज किया. मैं कुछ वो भगवान ऐसा रास्ता दिखाता है कि मेरे लिए मेरा तबीयत के लिए भी. एंड आई स्विच्ड ओवर एज ए वेलनेस कंसल्टेंट. आई लर्न फ्रॉम ए रिनाउंड इंस्टीट्यूट. सो आई एम डीपली इनटू दैट इवन टू दिस डे. आज भी मैं थोड़ा सेशंस करता हूँ, दो तीन सेशंस करता हूँ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के बारे में. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने आई एम आउट ऑफ मेडिकेशन फॉर द पास्ट 12 इयर्स नाउ. एंड मैंने आज तक आई मीन सिंस 2007 मैंने डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ एज ए पेशेंट. सो that's my limited background, so I don't want to go on and on. So
1: दोस्तों आपने जाना कि रविशंकर साहब बेंगलुरु से हैं. बेसिकली वो कन्नड़ परिवार से बिलोंग करते हैं लेकिन बहुत ही प्यारे इंसान हैं. उन्होंने हमारे आज के कलाकार जो एक गीतों का प्रोग्राम होता है उसमें भी पार्टिसिपेट किया और आध्यात्म के बारे में आज हमारे से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं. तो चलिए सर, मुझे बात आध्यात्म की करनी है, बात स्पिरिचुअलिटी की करनी है. सो रवि सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लेट अस नो व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी मीन्स फॉर यू. आध्यात्म से आपका क्या मतलब है सर?
0: ओके, इट्स एन अननोन एंटिटी. कोई भी आज तक ठीक से उसके बारे में पूरा नहीं समझ गया है, ऐसा है, मैं मानता हूँ. इट इज लाइक बट टू हैव फेथ इन समथिंग दैट गिव्स पावर, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस. विश्वास देता है और थोड़ा पावर भी देता है, मन का वो पावर देता है. एंड आई फील इट गिव्स एनर्जी ऑल्सो. कोई इट गिव्स बेहतर फीलिंग का वो विश्वास देता है हमारे लिए. दैट्स आध्यात्मिक जीवन मेरे मानना है वो.
1: एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट सर. अध्यात्म का वही मतलब होता है जैसा रविशंकर सर ने बताया. दोस्तों विचार करने की जरूरत है. ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जो बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब सबके अपने अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं इस बारे में. जैसे कुछ लोग मानते हैं अध्यात्म का मतलब है आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ अवर ओन सोल, हु आर वी, कौन है हम, उसी तरीके की चीजें. तो थैंक यू सो मच सर. आगे बढ़ते हुए I'll present this प्यारा सा भजन. इसकी प्रस्तुति है, प्यार से इसको सुनते हैं और मनन करते हैं, सोचते हैं. जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए.

0: तो रविशंकर सर, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, ये दो शब्द हैं, धर्म और आध्यात्म, सर ये एक ही चीज है या अलग अलग है? इज देयर अ डिफरेंस और आर दे द सेम?
1: I think it's different because I taught sociology, and in sociology we have a definition of religion. So there is a sociologist by name Emily Durkheim. So he defines religion is belief in the supernatural power. So supernatural power. So religion or dharma kya hai? Aaj jo hum dharma ka roop dekh rahe hain, wo thoda sa alag sa tha wo earlier. जब मानव जात आरंभ हुआ, सिविलाइज सोसाइटी थोड़ा थोड़ा होने लगा. बिफोर तो अनसिविलाइज सोसाइटी था. सो थोड़ा थोड़ा बाद में सिविलाइज बना के वो चेंज करने लगा. सो उसके ऊपर और डेफिनेशन देता है कि इट्स एनीथिंग दैट इज बिलीफ इन सुपर नेचुरल पावर इज नोन एज रिलीजन. एंड अर्लियर देर वॉज नो गॉड एज सच. सो जो भी एनिमल मिलता था या स्पेशल ट्री होता था, कॉमन ट्री होता था, उसको लोग पूजा करते थे. सो लाइक बानियान ट्री मे बी, और यू नो कोकोनट ट्री, और सम कॉमन एनिमल दैट वाज अवेलेबल. तो पीपल यूज टू वर्शिप दोज थिंग्स. एंड आध्यात्मिक इज टोटली विदाउट दीज थिंग्स वन कैन बी स्पिरिचुअल. And in religion, without religion also one can be spiritual. And spirituality is totally, like you said, it's subjective. So these are the two different things.
0: Okay, all right. You are absolutely right. और दोस्तों, इस बात को समझने की आवश्यकता है. रविशंकर सर दरअसल सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ है उन्होंने, और उसको वो पढ़ा भी रहे. तो सोसाइटी में किसी भी तरीके की जो एक ट्रेंड बनता है, फिर वो चाहे आध्यात्म के बारे में हो, धर्म के बारे में हो, मतलब रिलीजन के बारे में हो, या स्पिरिचुअलिटी के बारे में हो, उसके कुछ रीजंस होते हैं और उसकी कुछ हिस्ट्री होती है. रवि सर ने वही बताया, देयर वाज अ टाइम व्हेन प्रैक्टिकली देयर वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनी गॉड. उस वक्त लोगों को विश्वास चाहिए था, ट्रस्ट चाहिए था, तो उन्होंने कुछ अच्छे पेड़ जैसे बैनियन ट्री, पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, इसी तरह या फिर केले का पेड़ हो, उसको अच्छा मानकर, पवित्र मानकर उसकी पूजा करनी शुरू की. तो वहां से रिलीजन शुरू हुआ, अध्यात्म उसका अलग एक रूप था. तो ये अगेन सोचने का विषय ज्यादा है, डिस्कशन का विषय ज्यादा है. तो आप जो सोचते हैं प्लीज हमें बताइए, जिससे कि हम लोग इस बारे में कुछ और बेहतर समझ सकें. रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए आगे बढ़ते हुए एक प्यारे सा भजन सुनते हैं.
2: प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है. प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं.

0: बहुत सुंदर।
1: रवि जी, अभी हमने बात करी धर्म की, रिलीजन की, तो आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी की, तो क्या कोई पर्सन बिना रिलीजन के भी स्पिरिचुअल हो सकता है क्या? देखिए, देयर इज अ डिफरेंस, है ना, स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना, इन दोनों में फर्क जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। तो अगर कोई इंसान रिलीजियस ना हो तो क्या वो स्पिरिचुअल हो सकता है?
2: हाँ, जरूर हो सकता है। लाइक एज आई एक्सप्लेन, वन कैन बी स्पिरिचुअल विदाउट रिलीजन। मेरा पर्सनल केस में बताता हूँ। पहले मैं जब मैं समझने लगा जीवन के बारे में, हमारे पिताजी तो रोज पूजा करते थे, उसके पास के मिलता था, वो कैसे पूजा करता है, नैवेद्य देता था, वो सब उसके लिए मैं इंतजार करता था, क्योंकि नैवेद्य हो तो फल और शक्कर होता था, उसके लिए मैं इंतजार करता था। बाद में एक घटना हुआ हमारे घर में, हमारा पिताजी तो इतना भक्त थे भगवान का, उसको हार्ट अटैक हो गया। टेम्पल में ही हार्ट अटैक हो गया। आई वॉज टीनेजर एट द टाइम, एंड सोचने के लिए मेरे पास उतना ज्ञान नहीं था। उसको देख के मेरे ऊपर बहुत प्रभाव हो गया और नेगेटिव प्रभाव हो गया। आई वॉज टोटली इम्पैक्टेड बिकॉज एज आई मेंशन, हमारा माता जी नहीं थे, सो बचपन से ही वो मेरा, जब मैं 4 साल का था उस वक्त ही वो गुजर गई, और माई फादर वॉज एवरीथिंग फॉर मी बिकॉज ही टुक केयर ऑफ 7 of us, 7 children, you know, single-handedly. So that person suffered because of even though he was so devotee of God, he had a heart attack in the temple, and that impacted me, and I left going to God, and I left everything. I didn't even did namaskar also to God. I forgot everything. But I was good. My belief is be good and serve good to the people, and you keep your mind and heart clean and do the service to the people. Whoever needs any help, you help them. Usko sahay kijiye, so uske liye madad kijiye. So aise karne se, man saaf rakhne se, wahi religion hota hai, wahi spiritualism hota hai. Achha insaan bana achha hota hai, aur achha kijiye, bura mat sochiye. मैं आज तक इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस और डिजिग्नेशन और कास्ट और रिलीजन, आई ट्रीट एवरी वन इक्वली। वट एवर आई से आफ्टर द प्रैक्टिस, विदाउट थियरी, आई मीन आई डोंट स्पीक थियरी, ओनली थियरी, आई डू प्रैक्टिस दैट इवन टू दिस डे, इवन एट दिस मोमेंट ऑल्सो। सो दैट कैन बी रिलीजन। सो यू नीड नॉट फॉलो एनी रिलीजियस थिंग, irrespective of all these things, one can be good, and that is religion according to me, and that is spirituality according to me.
1: दोस्तों, आपने सुना, रवि जी ने अपनी पर्सनल जिंदगी का एक उदाहरण बताया, उनके पिताजी का उदाहरण बताया, और वो किस तरीके से धर्म से यानी कि रिलीजन से दूर हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, आध्यात्मिक की तरफ बढ़े और स्पिरिचुअलिटी को अपनाकर किस तरीके से जिंदगी को खूबसूरत बनाया। ये फर्क बहुत जरूरी है जानना हमें। कितने ही तमाम साधुओं से, कितने ही तमाम महात्माओं से हम ये सब ज्ञान सुनते हैं, लेकिन हमारे आपके जैसे किसी इंसान से जब ये चीज पता चलती है एग्जाम्पल के साथ, तो हमें लगता है कि ठीक है ना, हम भी तो इन्हीं की तरह है, तो फिर इसी चीज को हम क्यों नहीं अपना सकते। तो रवि जी से ये सीखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पेश करता हूं, प्रस्तुत करता हूं ये प्यारा सा भजन।
3: भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं की जाती, बल्कि विनम्रता, दया भाव

0: बहुत ही सुंदर भजन। रविशंकर सर, आपकी डेली रूटीन में एवरी सिंगल डे आपका आध्यात्मिक प्रैक्टिस क्या है? हाउ डू यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी एवरी डे?
1: ओके, जैसे मैंने बताया, मैं तो इतना ट्रेडिशनल पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं कल्चरली आई फॉलो एवरीथिंग, बिकॉज मैंने देखा हमारे पिताजी को, यू नो, ही वॉज डूइंग द राइट टाइप ऑफ पूजा, सो हर क्रिया वो उन्होंने पालन किया। आई लाइट ए लैम्प इन फ्रंट ऑफ द टेम्प, आई मीन वी हैव ए स्मॉल यू नो गॉड्स प्लेस, सो देयर आई लाइट ए लैम्प एंड डू लिटल बिट ऑफ आई चैंट गणेशा, एंड हमारा घर का गॉड तो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी है, सो उसका श्लोक है, उसको श्लोक वो मैं पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, अब तो आई हैव मेमोराइज द होल थिंग एंड आई कैन डू दैट, सो दैट आई डू दैट, but otherwise I go to there is a god by name Subramanya, so Subramanya temple Tuesday, today also I went to Subramanya temple, so that's, and beyond that I don't practice much of those things, but I follow cultural aspects, not deep into those godly things, so but like I mentioned earlier, I want to do good to the people, whoever is in need. That's my everyday. I am helping some one or the other person in one way or the other way. That's my belief.
0: All right, sir. I get your point, sir. This is extremely, extremely important. दोस्तों, इस बात को समझने की आवश्यकता फिर से बहुत ज्यादा है कि आप किस तरह से every single day अपनी practice को करते हैं। तरीका कोई भी हो सकता है, अपनाया जा सकता है। आज रविशंकर सर ने एक प्यारा सा तरीका बताया है, हम उसे भी अपना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए ये प्यारा सा भजन प्रस्तुत करता हूं, इसका आनंद लीजिए।
2: कोई इंसान जब बुरी भावना से कोई काम करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करते हैं जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं।

0: बहुत सुंदर रवि सर। तो रवि सर, बात अध्यात्म की है, स्पिरिचुअलिटी की है, रिलीजन की है और इस तरीके के सारी चीजों की है। तो देर आर टू वर्ड्स, वन इज मेडिटेशन, अनदर इज प्रेयर। मेडिटेशन मतलब ध्यान और प्रेयर मतलब प्रार्थना। आपके हिसाब से सर, इन दोनों में क्या अंतर है?
1: मेडिटेशन, ये तो मेडिटेशन एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इज फॉर पीस एंड प्रेयर इज फॉर द वेल बीइंग। मेडिटेशन गिव्स कंट्रोल, पीस ऑफ माइंड एंड कॉमनेस, शांत स्वरूप आता है और मन को एक समतोलन आता है। और प्रेयर गिव्स होप, सेटिस्फैक्शन एंड बिलीफ। सो एंड प्रेयर समटाइम्स इट बिकम्स सेल्फिश ऑल्सो बिकॉज वी प्रे इन फ्रंट ऑफ गॉड टू डू गुड फॉर सेल्फ एंड आवर पीपल एंड मे बी सोसाइटी ऑल्सो। वी कैन प्रे फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। आई डू दैट at the end of my everyday routine, you know, that puja, whatever I am following, I pray God to do good for all the people in the world. So there is a saying in our own Indian culture is sarvai janaho sukhino bhavantu. So that's what I pray. I do the same thing. I pray that in Kannada, of course. And as far as meditation is concerned, luckily for me, so as I my wife is not well, so for her sake I went to a guruji who taught me Reiki and hypnosis. And Reiki is a healing method, so some of the people know it. Hypnosis is a sort of meditation where you can go deep into yourself and you can understand the self, and you can he guided me and he has given Diksha, and by getting that power I can go back to my other part of my life, and I can know myself better, and I can know others also in a better way. So that's my meditations, and I practice this every day, three times a day. I am healing my wife, and at the same time I am controlling myself by practicing hypnosis. And I am in hypnosis, I am thinking positive about all the people that I know and all the people around the world also. So that's my practice every day.
0: दोस्तों गौर कीजिएगा, ये एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट, एक बिल्कुल ही नया तरीका, एक बिल्कुल ही नया विधा रवि सर हमें बता रहे हैं। रवि सर ने बहुत मेहनत करके हिप्नोसिस सीखा और उसको किस तरीके से आध्यात्म की तरफ, मेडिटेशन की तरफ लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और जैसा रविशंकर सर ने बहुत प्यारी बात कही, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी, कि प्रार्थना में कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटो आ जाता है। हम ऊपर वाले से कुछ ना कुछ मांगते हैं। तो मेडिटेशन और प्रार्थना में ये फर्क होता है। पीछे कहीं पर मैंने एक कोट पढ़ा था जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा। रविशंकर सर, आपको बताता हूं। मैं मंदिर गया, वो कोट कुछ इस तरीके से था, मैं मंदिर गया तो आज भगवान ने मेरे को ताना मारा, मतलब द गॉड एक्चुअली टीज्ड मी।
1: ओके।
0: रोज चले आते हो कुछ ना कुछ मांगने के लिए, कभी मिलने भी आया करो। डू यू गेट इट सर?
1: या आई गॉट इट। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग नाउ।
0: सो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि भगवान से कभी मिलने भी जाइए, हर समय मांगने मत जाइए। तो इसको कहते हैं मेडिटेशन और प्रार्थना में अंतर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये प्यारा सा भजन प्रस्तुत करता हूं, इसे सुनते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है।

0: consume the food. Unfortunately, these are all getting stressed up, and meditation and other things will give you control. By doing so, you can enjoy your life, you can be relaxed, and you can focus on your own personal life and your family people also. That's my belief.
1: My God, beautiful. बहुत ही प्यारी बात कही रविशंकर साहब ने. दोस्तों, इस बात को समझने की बहुत सख्त जरूरत है, और ये गौर कीजिएगा, चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है. रविशंकर सर ने एक बात कही कि हम ढंग से खाना भी नहीं खा रहे हैं. वी आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज इस प्रकृति ने, इस नेचर ने, या फिर गॉड ने बनाई. हम फोन देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, कर क्या रहे हैं हम? मुझे तो ऐसा लगता है, आध्यात्म की बात करूं अगर, तो हम अन्न का, यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसका हम अपमान कर रहे हैं. वी आर इंसल्टिंग द फूड बाय लुकिंग इनटू अवर मोबाइल एंड ईटिंग इट. द गॉड हैज गिवन अस, द नेचर हैज गिवन अस सो मेनी ब्यूटिफुल फ्रूट्स, ब्यूटिफुल वेजिटेबल्स. कितना सुंदर सुंदर खाने के लिए, खूबसूरत दोस्तों, कलरफुल, ब्यूटिफुल. Look at the shape of our lady finger, look at the shape of a brinjal, look at the shape of mango. Kitne sundar hai wo, aur hum unko dekh nahi rahe hain. Whereas we had been given eyes to watch these fruits, we are watching our mobile. How sad is that?
0: Yes, sir.
1: फिर इसके बाद हम स्पिरिचुअल होने की, आध्यात्म होने की, धार्मिक होने की और रिलीजियस होने की बात करते हैं. हम भगवान का तो अपमान कर रहे हैं, उसकी बनाई हुई चीजों का अपमान कर रहे हैं, अपनी चीजों को यानी कि मोबाइल का तो हम सम्मान कर रहे हैं, तो हम आध्यात्म कहां से हो गए? विचार करिए. आज रविशंकर सर ने एक बहुत बड़ी बात हम लोगों को समझाई है. प्लीज सोचिए आगे बढ़ते हुए. इस प्यारे से भजन को भी सुनिए और सोचिए. जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए. कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी पानी लेकर आती है.

0: रविशंकर सर, अभी आपने वैसे मुझे बताया, फिर भी मैं आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि जो यंग जनरेशन अभी आ रही है, जो कि ये मोबाइल देखते हुए खाना खाने वाली, उनको आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों आए? बिकॉज उनको हर चीज के लिए क्यों चाहिए? दे नीड बेनिफिट्स, बेनिफिट्स एंड बेनिफिट्स. सो व्हाट बेनिफिट्स दे विल गेट इफ इट ऑल दे विल कम टू स्पिरिचुअलिटी?
1: Yeah, of course, it's a challenging question. At the same time, maybe jawan tha, maybe teenage mein tha, jaise main bola. There is a saying in Kannada, so of course I cannot. Gali guddo vaisu we say. Gali

0: the voice. It means a young man can even he can punch the air. So that's the confidence he has got. So nobody.
1: Okay.
0: So nobody can punch the air. It's an illusion. So youngsters are in illusion. So jo dikhai nahi deta hai. वो ब्रह्म भ्रमे करते हैं ब्रह्म ब्रह्म के लोक में है वो ब्रह्म के लोक में है वो सो एंड दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ द लाइफ एंड देन यू नो लिविंग इन इनफैचुएशंस एंड इल्यूजंस सो वी आर ऑल चेजिंग समथिंग वी आर ऑल चेजिंग समथिंग एंड एट द सेम टाइम दे शुड बी अट्रैक्टेड वंस वी एक्सप्लेन देम व्हाट इज द बेनिफिट दे कैन गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स दे विल कम आई हैव सीन मैंने बहुत बोला जो मैं अटेंड किया रेकी एंड हिप्नोसिस सात साल का दस साल का पंद्रह साल का सोलह साल का बच्चे लोग वहां पर थे हमारा गुरुजी से बातचीत की वो एंड दे आस्क ब्यूटिफुल क्वेश्चन एंड गुरुजी वॉज सो हैप्पी दैट पीपल हु आर यंगस्टर्स not like frustrated youngsters. They were all learning. So, and there is a path in you know spiritualism and meditation where they can have control and they can achieve more also because the whole system.

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। अगर हर जोडियक साइन, हर राशि एक पेट होता। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, थोड़ा फनी, थोड़ा रिलेटेबल, और थोड़ा सा अरे ये तो मैं हूं वाला फील देने वाला। आज हम बात करने वाले हैं, अगर हर जोडियक साइन एक पेट होता तो वो कैसा होता। सोचिए, अगर एरीज, टॉरस, जेमिनी ये सब इंसान नहीं पेट्स होते तो उनका एटीट्यूड, उनकी आदतें कितनी इंटरेस्टिंग होती। तो चलिए एक इमेजिनरी पेट वर्ल्ड में चलते हैं। सबसे पहली राशि एरीज, द हाइपर पपी। एरीज एक छोटा सा पपी है, इतनी एनर्जी कि आप थक जाओ पर वो कभी नहीं। सुबह 6 बजे ही उठो उठो उठो खेलते हैं, अगर बॉल फेंक दो तो वो बॉल लेके वापस आएगा, लेकिन कभी कभी खुद ही भूल जाएगा कि बॉल कहाँ है। एरीज पेट का रूल सिंपल है, एक्शन पहले सोच बाद में। टॉरस, रॉयल कैट। टॉरस एक क्लासी कैट है जिसे कंफर्ट सबसे ज्यादा पसंद है, सॉफ्ट कुशन, परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट एस्थेटिक्स, और खाना टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। अगर मूड नहीं है तो आप बुलाते रहो, वो सिर्फ आपको देखेगा और इग्नोर करेगा विद एटीट्यूड। जेमिनी, द टॉकिंग पैरट, बोलता तोता। जेमिनी एक तोता है जो सिर्फ बोलता नहीं, नॉन स्टॉप बोलता है। आप कुछ भी बोलो वो उसका रिप्लाई देगा, और फिर उसका भी रिप्लाई देगा, और कभी कभी खुद से ही बात करता रहेगा। कैंसर, इमोशनल टर्टल। कैंसर एक प्यारा सा टर्टल है, थोड़ा स्लो लेकिन बहुत इमोशनल। अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोर कर दो तो अपने शेल में चला जाएगा, लेकिन प्यार मिले तो आपके पास ही चिपक के बैठ जाएगा। लियो, ड्रामा किंग लायन। लियो ऑब्वियसली लायन ही होगा। एंट्री ऐसी जैसे स्टेज पर आ रहा हो, अटेंशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, और अगर इग्नोर कर दिया तो ड्रामा गारंटीड है। वर्गो, परफेक्शनिस्ट रैबिट। वर्गो एक रैबिट है जो हर चीज परफेक्टली चाहता है, फूड भी अलाइन होना चाहिए, स्पेस क्लीन होना चाहिए, और अगर कुछ भी ऑफ हो गया तो वो खुद ही ठीक करेगा। लिब्रा, स्टाइलिश स्वान। लिब्रा एक स्वान है, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, और हमेशा बैलेंस में, लेकिन उनके डिसीजंस उसमें खैर टाइम लगता है। ये खाना या वो खाना, ये ड्रेस या वो ड्रेस, ये प्रोफेशन या वो प्रोफेशन, और वो बस सोचता ही रहेगा। स्कॉर्पियो, द मिस्टीरियस स्नेक। स्कॉर्पियो एक स्नेक है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। साइलेंट, ऑब्जर्वेंट, थोड़ा ज्यादा इंटेंस, ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, ज्यादा लोगों से इनकी पट्टी भी नहीं, लेकिन जिस पर ट्रस्ट हो जाए उसके लिए सब कुछ, जान भी हाजिर है। सैजिटेरियस, द फ्री हॉर्स। सैजिटेरियस एक हॉर्स है जो बंधन बिल्कुल पसंद नहीं करता,
खुला मैदान, फ्रीडम और एडवेंचर। अगर आप इसे बांधने की कोशिश करोगे तो ये सीधा भाग जाएगा। कैप्रिकॉन, द वाइज एलिफेंट। कैप्रिकॉन एक एलिफेंट है, स्ट्रॉन्ग, काम, इंटेलिजेंट और फोकस्ड। हर चीज प्लान करके करेगा और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। अक्वेरियस, एक यूनिक डॉल्फिन। जी हाँ, अक्वेरियस एक डॉल्फिन है, डिफरेंट, इंटेलिजेंट और थोड़ी क्वर्की। कभी आपको समझ नहीं आएगा ये कर क्या रहे हैं, लेकिन वो खुद परफेक्टली क्लियर हैं अपने विजन में। और आखिरी राशि पाइसिस, द ड्रीमी फिश। पाइसिस एक फिश है जो अपनी ही दुनिया में रहती है, ड्रीमी, क्रिएटिव और हमेशा फुदकती हुई, और कभी कभी रियलिटी से थोड़ी डिसकनेक्टेड, लेकिन दिल सबसे सॉफ्ट। दोस्तों, हर साइन अलग है, हर पेट अलग है और हर इंसान भी अलग होता है। किसी में एनर्जी ज्यादा है, किसी में इमोशन ज्यादा है, किसी में लॉजिक ज्यादा है और किसी में ड्रीम्स। ओ माई गॉड, अगर आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल मैं हूं, तो रिलैक्स, सबको लग रहा है। दुनिया इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि सब अलग है, और अगर सब सेम होते तो लाइफ कितनी बोरिंग होती, साइमीज ट्विंस जैसे। इसीलिए अपने अंदर के पेट को समझो और दूसरों के पेट को एक्सेप्ट करो। मैं हूं आपकी दोस्त। अगली कहानी तक जरूर बताइएगा आपका जोडियाक पेट कौन सा है और क्या वो आपसे मैच करता है। तब तक के लिए अपनी वाइफ को एंजॉय करिए और लाइफ को थोड़ा फन बनाइए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: बजट रोमांटिक्स। ये बंदा बोलता है, मैं तुम्हें चांद तारे ला दूंगा, और डेट पे बोलता है स्प्लिट कर लेते हैं, इक्वालिटी भी तो इम्पोर्टेंट है।

हेनरीज कैफे, जहां चाय से ज्यादा कहानियां उबलती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प कहानी के साथ। आज की कहानी थोड़ी सी धीमी है, थोड़ी सी गर्म चाय जैसी। पहले सिप में सिंपल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसे महसूस करोगे, अंदर कहीं गहरा उतरती चली जाएगी। शहर और उसकी दौड़, ये कहानी है एक शहर की। बड़ा शहर, भीड़ भरा, रोशनियों से जगमग, और फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेला। यहाँ लोग भागते बहुत हैं, पर रुकते कम हैं। मिलते बहुत हैं, पर समझते कम हैं। और इसी शहर के एक कोने में एक छोटी सी गली थी, जहां वक्त थोड़ा धीरे चलता था, और वहां था हेनरीज कैफे। ना कोई फैंसी लाइट्स, ना लाउड म्यूजिक, बस एक पुराना सा वुडन बोर्ड जिस पर हाथ से लिखा था हेनरीज कैफे, और उसके नीचे छोटी सी लाइन थी, यहां चाय के साथ थोड़ा सा सुकून फ्री है। आप सोचोगे ऐसा क्या खास है इस जगह में? खास ये है कि यहां लोग चाय पीने नहीं, अपने आप से मिलने आते थे। हेनरी, वो कौन था? ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, ना उसका पास्ट, ना उसकी कहानी। बस इतना पता था कि वो हर इंसान को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की दौड़ से बाहर खड़ा हो, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो, और बस देख रहा हो, समझ रहा हो, बिना जजमेंट्स के। एक अजीब सी बात, हेनरी के कैफे में एक अजीब सी बात थी। यहां मेन्यू सिंपल था, चाय, कॉफी, थोड़ा सा खाना, लेकिन हर ऑर्डर के साथ एक सवाल फ्री मिलता था। जी हाँ, एक सवाल, और वो सवाल कभी सिंपल होता था, कभी गहरा। कभी वो सिर्फ इतना ही पूछता था, तुम ठीक हो? और लोग हंसते हुए कहते, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन हेनरी के सवाल में कुछ ऐसा था कि लोग थोड़ी देर बाद रुक जाते थे और फिर धीरे से कहते थे, शायद नहीं। रोज शाम को तीन लोग वहां जरूर आते थे, जैसे तीन अलग कहानियां एक ही किताब के अलग पेजेस हों। राघव, कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी सैलरी, सब कुछ परफेक्ट दिखने वाली लाइफ, लेकिन आंखों में थकान और एक अजीब सा खालीपन। वो रोज आता, चाय मंगाता और बस एक ही लाइन बोलता, यार समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। दूसरी मीरा, एक आर्टिस्ट, स्केचबुक हमेशा साथ होती थी, पर पेजेस अक्सर खाली रहते थे। उसके हाथ में टैलेंट था, लेकिन दिल में डर, डर कि लोग क्या कहेंगे। और तीसरी, शांति अम्मा, एक बूढ़ी माँ, जो रोज आती थी, एक ही कुर्सी पर बैठती थी और दूर देखते हुए चाय पीती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जो शायद कभी आने वाला ही नहीं था। एक शाम जो अलग थी, उस दिन बारिश हो रही थी, शहर धीमा पड़ गया था और कैफे में सिर्फ तीन लोग थे। हेनरी ने चाय सर्व की और इस बार उसने एक अलग सवाल पूछा, अगर कल सब खत्म हो जाए। जी हाँ, अगर कल सब खत्म हो जाए तो आज क्या करोगे? सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं था। सच सामने आता है। राघव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं जॉब छोड़ देता, मैं वो करता जो मैं सच में करना चाहता हूं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखा देती, चाहे लोग हंसें या समझें, मैं दिखाती। और शांति अम्मा ने बहुत धीरे से कहा, मैं उसे माफ कर देती, अपने बेटे को,
हेनरी ने उन्हें देखा और बस इतना कहा, तो कल का वेट क्यों? अगले कुछ दिनों में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। राघव ने सच में रेजिग्नेशन दे दिया, डर के साथ लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। मीरा ने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन प्लान की और पहली बार उसने अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखाई। शांति अम्मा ने फोन उठाया, नंबर डायल किया और बस इतना कहा, बेटा घर आ जाओ। एक दिन तीनों कैफे आए लेकिन दरवाजा बंद था, बोर्ड हटा हुआ था और अंदर कोई नहीं था, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। एक छोटा सा नोट, दरवाजे पर एक कागज चिपका हुआ था, जिंदगी रुकती नहीं, बस कभी कभी हम रुक जाते हैं, जवाब हमेशा तुम्हारे अंदर है, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया था। With love, Henry। तीनों वहां खड़े रहते हैं चुप। राघव बोला, ये कौन था? मीरा बोली, शायद एक इंसान। शांति अम्मा मुस्कुराई और बोली, नहीं वो एक एहसास था। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग आते हैं, बहुत देर के लिए नहीं लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर। वो आपको बदलने नहीं, बस आपको आपसे मिलवा देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको कभी पता नहीं चलता कि आप किसी की लाइफ में हेनरी बन चुके हो। कभी एक सही वक्त पर बोला हुआ शब्द, कभी एक सही वक्त पर दिया हुआ साथ, और कभी एक छोटी सी स्माइल किसी की जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। तो आज जब आप अपनी चाय पियेंगे या अपनी रूटीन में बिजी होंगे, तो एक बार रुक कर खुद से जरूर पूछेगा, मैं सच में क्या चाहता हूं? और अगर जवाब मिले तो कल का वेट मत करना। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक दिलचस्प कहानी। आज का थॉट सिंपल है, कभी किसी के लिए हेनरी बन जाना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही सवाल पूछना ही काफी होता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। हमेशा बिजी रहने वाले लोग, ये लोग इतने बिजी होते हैं कि फ्री होने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए। कल मिलते हैं, कल बिजी हूँ। पर तुम तो घर पे हो। हाँ घर पे बिजी हूँ।
1: What?

वर्ड ऑफ द डे गैडजुकरी। दोस्तों, सुबह हो, शाम हो या रात के खामोश पल, अगर आपके साथ बातें हो जाएं, तो हर वक्त थोड़ा सा और खूबसूरत लगने लगता है। और आज की बात थोड़ी हटके है, थोड़ी पुरानी है, थोड़ी सी फिल्मी भी है। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है गैडजुकरी। सच बताऊं, पहली बार सुनोगे तो लगेगा जैसे किसी जादूगर का मंत्र हो, गैडजुकरी। चलिए इसको सीधी भाषा में समझते हैं। गैडजुकरी का मतलब होता है बहुत पुराने जमाने के शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्द जो आज हम रोज की जिंदगी में यूज नहीं करते, जैसे हे नाथ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, मेरा हृदय व्याकुल है। अब आप ही सोचो, अगर आज के व्हाट्सएप चैट में कोई लिख दे हे मित्र, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो तुरंत रिप्लाई आएगा, तू ठीक है ना, फीवर तो नहीं हो गया। आज हम लोग क्या बोलते हैं, और दोस्त क्या सीन है, सब चिल है, क्या कर रहा है। और अगर गैडजुकरी मोड ऑन हो तो यही मैसेजेस हो जाएंगे, आपका वर्तमान कार्यक्रम क्या है, आपका मन कैसा है। ये सुन के लगता है ना जैसे किसी ने मोबाइल हटा के सीधा इतिहास की किताब खोल दी हो। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी क्रश को इम्प्रेस करेगा, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ा रॉयल अंदाज में। वो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम्हारी मुस्कान ने मेरे हृदय को छू लिया। लड़की ने देखा, 2 सेकंड चुप रही, फिर बोली, भाई तू ठीक है या किसी प्ले का रिहर्सल कर रहा है। गैडजुकरी एक अलग ही मैजिक होता है दोस्तों। जब आप कोई हिस्टोरिकल कहानी पढ़ते हो या कोई पुरानी फिल्म देखते हो, तो वो पुराने शब्द आपको उस दुनिया में ले जाते हैं, जैसे आप सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हो। एक सिंपल लाइन, मैं तुम्हें याद करता हूं, और एक पुराने अंदाज में, तुम्हारी यादों ने मेरे मन को घेरा हुआ है। अब बताओ, थोड़ा गहरा फील हुआ या नहीं। कभी कभी पुराने शब्द दिल के ज्यादा करीब होते हैं, जैसे प्यार बोलने से ज्यादा प्रेम, बोलने में एक अलग ही सॉफ्टनेस है। दुख की बजाय व्यथा, खुशी की बजाय

आनंद, ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये अपने साथ एक पूरी फीलिंग लेकर आते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इसका भी ओवरडोज डेंजरस है। सोचो, घर पे मम्मी बुला रही हैं, बेटा खाना खा लो, और आप जवाब दो, हे मातेश्री, मैं भोजन ग्रहण करने के लिए तत्पर हूं। मम्मी का जवाब, सीधा बोलना आ रहा हूं। ऑफिस या इंटर्नशिप में अगर गैट जूखरी चालू हो जाए तो बॉस बोले, फाइल कंप्लीट हुई, और आप बोले, हे प्रभु तुल्य अधिकारी, ये कार्य अभी अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। बॉस बोले, कल से मत आना भाई। तो दोस्तों, बात सिंपल सी है। गैट जूखरी एक स्टाइल है, एक फ्लेवर है, एक अंदाज है, जो कहानियों को खूबसूरत बनाता है, बातों को गहरा बनाता है, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा ही अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिए, आज किसी एक दोस्त को थोड़ा गैट जूखरी स्टाइल में मैसेज जरूर कीजिएगा, जैसे, हे मित्र, आपका दिन मंगलमय हो, और फिर उनका रिएक्शन देखिएगा। मुझे पक्का लगता है या तो वो कंफ्यूज होंगे, या फिर हंस पड़ेंगे, या फिर डायरेक्टली कॉल करेंगे आपको चेक करने के लिए, आपकी तबीयत चेक करने के लिए। चलिए एक और सीन। नॉर्मल, फोन क्यों नहीं उठाया? गैट जूखरी स्टाइल, हे प्रिय, तुमने मेरे आह्वान को क्यों अनसुना किया? रिप्लाई, फोन साइलेंट था यार। कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम सिंपल शब्दों में ही सब कुछ कह देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा रुक कर, थोड़ा महसूस करके, थोड़ा प्यार से बोलेंगे ना, तो वही बात एक याद बन जाती है, एक मोमेंट, एक मेमोरी शायद। और शायद यही है गैट जूखरी का असली मतलब, शब्दों को थोड़ा और खूबसूरत बना देना और थोड़ा और महसूस करवा देना। मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए शब्द, एक और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपनी बातों में थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा जादू और थोड़ा सा स्टाइल जरूर रखिए।

0: ಚತುರ ಏಕ ಪೇರಾಯ್ನ ಯಾ ಗೋಡಾ ಬೋಲ ಯಾ ಚತುರ ಬೋಲ ಗಾ
1: ಎಕ ಚತುರ ನಾರ ಕರ್ಕೆ ಸಿಂಗಾರ ಎಕ ಚತುರ ನಾರ ಬಡಿ ಹೋಶಿಯಾರ ಮೇರೆ ಮನ ಕೆ ದ್ವಾರ ಯೇ ಭುತತ ಜಾತ ಅಪ್ನೇ ಹಿ ಜಾಲ ಮೇ ಫಸತ ಜಾತ ಹಮ ಮರತ ಜಾತ ಅರೆ ಅಯ್ಯ ಚತುರ ನಾರ ಬಡಿ ಹೋಶಿಯಾರ ಕರ್ಕೆ ಸಿಂಗಾರ ಅಪ್ನೇ ಹಿ ಜಾಲ ಮೇರೆ ಮನ ಕೆ ದ್ವಾರ ಫಸತ ಜಾತ ಯೇ ಭುತತ ಜಾತ ಹಮ ಹಸತ ಜಾತ ಹಮ ಮರತ ಜಾತ ಮರತ ಜಾತ ರೇ ಮರತ ಜಾತ
2: Zodiac Junction, जब 12 रास्ते एक ही मंजिल तक ले गए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी हटकर है। इसमें ना सिर्फ कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि उनकी सोच, उनकी आदतें और उनके डिसीजंस सब कुछ एकदम हटके हैं। सोचिए, अगर जिंदगी एक सफर हो और हर इंसान अलग रास्ते से चल रहा हो तो क्या होगा? अगर एक दिन सभी रास्ते एक ही जगह पर आ मिले। एक अजीब सी जगह थी, ना मैप पर मिलती थी ना गूगल पर। नाम था जोडियाक जंक्शन, एक पुराना सा रेलवे स्टेशन जहां से वो लोग आते थे जो लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज्ड होते थे या फिर जो अपनी मंजिल ढूंढ रहे होते थे। उस रात वहां 12 लोग मिले, सब अलग, सब यूनिक और सब अपनी कहानी के साथ।

अर्जुन हमेशा जल्दी में। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर आते ही बोला, ट्रेन कहाँ है, मुझे जल्दी है। उसे रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसके लिए लाइफ रेस थी, बिल्कुल एक एरीज की तरह। भावना कंफर्ट क्वीन। भावना ने पहले बेंच चेक की, ये कंफर्टेबल है भी या नहीं। उसके लिए सफर का मजा सुकून में था, बिल्कुल एक टॉरस की तरह। चिराग नॉन स्टॉप टॉकर। चिराग ने आते ही सबसे बात करना शुरू कर दी, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और बिना जवाब का वेट किए खुद ही बोलता रहा, बिल्कुल एक जेमिनी की तरह। छवि दिल से जीने वाली। छवि थोड़ी इमोशनल थी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर बोली, ये जगह थोड़ी अजीब सी फील दे रही है, नहीं, बिल्कुल एक कैंसर की तरह। लक्ष्य अटेंशन मैग्नेट। लक्ष्य एंट्री ऐसे करता है जैसे हीरो हो किसी फिल्म का, गाइज रिलैक्स मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट, बिल्कुल एक लियो की तरह। वीरेन परफेक्शन लवर। वीरेन ने पहले ही 10 बार शेड्यूल देखा, फिर क्लॉक देखी और फिर बोला, सब कुछ परफेक्टली अलाइंड है, टाइमिंग सही है, बिल्कुल एक वर्गो की तरह। लीना कंफ्यूज्ड बट चार्मिंग। लीना 2 टिकट्स हाथ में लिए खड़ी थी, ये वाली लूं या वो वाली, डिसीजन उसके लिए एक एडवेंचर था, बिल्कुल एक लीब्रा की तरह। समर एक साइलेंट ऑब्जर्वर। समर चुप था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, सबको देख रहा था, जैसे सबकी कहानी समझ रहा हो, बिल्कुल एक स्कॉर्पियो की तरह। कबीर एक फ्री सोल। कबीर ने बोला, यार कोई भी ट्रेन आ जाए मैं तो चढ़ जाऊंगा, उसके लिए मंजिल से ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल एक सैजिटेरियस की तरह। देव फोकस्ड। देव सीधा खड़ा था, मैं यहां एक रीजन से आया हूं, एक टारगेट से, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा, बिल्कुल एक कैप्रिकॉर्न की तरह। अयान एक अलग थिंकर। अयान ने अचानक बोला, गाइस क्या हो अगर ट्रेन ही इल्यूजन हो। सब उसे देखते रह गए, बिल्कुल एक अक्वेरियस की तरह। मेहर ड्रीमी। मेहर आसमान देख रही थी, शायद हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं, बिल्कुल एक पाइसिस की सोच। और फिर अनाउंसमेंट हुआ, ध्यान दीजिए जोडियाक जंक्शन पर आने वाली ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी सच्ची मंजिल जानते हैं। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या सच में उन्हें पता था कि वो कहां जा रहे हैं। अर्जुन रुक गया, पहली बार शायद मुझे नहीं पता। भावना बोली, मुझे सिर्फ कंफर्ट चाहिए था, मंजिल नहीं सोची। चिराग चुप हो गया, सच में पहली बार। हर किसी को रियलाइज हुआ कि वो बस चल रहे थे लेकिन पता नहीं था कि कहां जा रहे हैं। तब समर ने धीरे से कहा, शायद ट्रेन यहां आएगी ही नहीं। सब शॉक हो गए, क्या मतलब। समर बोला, शायद ये जगह ट्रेन के लिए नहीं है, ये जगह हमें रोकने के लिए है, ताकि हम सोच सकें, समझ सकें कि हम सच में क्या चाहते हैं। और उस मोमेंट पर सबको समझ आ गया, जोडियाक जंक्शन एक स्टेशन नहीं था, एक पॉज था। कोई ट्रेन नहीं आई, लेकिन सब वहां से चल दिए अपनी अपनी डायरेक्शंस में, लेकिन इस बार एक क्लियर माइंड के साथ। अर्जुन धीरे चला, भावना ने कंफर्ट के साथ एक पर्पस भी चूज किया, चिराग ने सुनना सीखा और हर किसी ने अपनी मंजिल खुद डिसाइड की। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ के जोडियाक जंक्शन पर कभी ना कभी खड़े जरूर होते हैं, जहां हम रुकते हैं, कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं, मैं जा कहां रहा हूं। और शायद वही पॉज जरूरी होता है, क्योंकि बिना रुके सही रास्ता कभी नहीं मिलता। मैं हूं आपकी दोस्त और आज
आज का सवाल बहुत सिंपल है। आप अपनी लाइफ के जोडियाक जंक्शन पर हो या ऑलरेडी ट्रेन पकड़ चुके हो? सोचिए और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ी प्रोग्रेस होता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो शो जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास है और बेहद संगीतमय है, क्योंकि हमारी स्टूडियो गेस्ट हैं डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ, एक ऐसी प्रतिभाशाली कलाकार जिनका सफर संगीत, शिक्षा और क्रिएटिविटी, इन तीनों का एक खूबसूरत संगम है। डॉक्टर शिखा ने न सिर्फ पीएचडी इन म्यूजिक वोकल है, जिनका शोध राजस्थानी मांड गायकी पर केंद्रित रहा, बल्कि प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर, दयालबाग से पोस्ट ग्रेजुएशन और विक्रम यूनिवर्सिटी से एमएड जैसी उपाधियां इन्होंने अपने नाम की हैं। वो एक बेहतरीन स्टेज परफॉर्मर भी है, कई कॉम्पिटिशन में टॉप रैंक हासिल कर चुकी है और कई सिंगिंग इवेंट्स में जज के रूप में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। साथ ही मिलेनियम टीटी कॉलेज अकलेरा में सीनियर लेक्चरर के रूप में यंग माइंड्स को शेप कर रही हैं। आज हमसे हम जानेंगे उनका बचपन, उनकी म्यूजिकल जर्नी, उनके फेवरेट सिंगर, और हाँ, बीच बीच में हम उनसे खूब खूबसूरत लाइंस भी सुनेंगे, लता जी से लेकर आशा जी और उनके फेवरेट मेल सिंगर तक। तो तैयार हो जाइए सुरों, यादों और इंस्पिरेशन से भरी एक सोलफुल मुलाकात के लिए। शिखा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आलोक जी, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ आप सभी को अपना प्यार भरा नमस्कार करती हूँ।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले शिखा जी, थोड़ा सा अपने श्रोताओं को अपना छोटा सा परिचय दें, आपकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी, कहाँ आपकी पैदाइश है, अभी आप कहाँ रह रही हैं, कुछ अपने बारे में हल्का फुल्का बताइए शुरुआत के दिनों के बारे में।
2: हाँ जी, मेरा जन्म हुआ था अलीगढ़ में, यूपी में अलीगढ़ शहर है, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। हाँ जी, और क्या है कि मेरे फादर जो है वो रेलवे में थे, तो उनकी पोस्टिंग तो कहीं अलग अलग शहरों में होती रहती थी, ट्रांसफर होते रहते थे, तो मैं कई जगह रही हूँ, इसीलिए एमपी, राजस्थान, यूपी, सब जगह, सारे मतलब कई जगह पर रह चुकी हूँ मैं। तो मेरी जो सबसे पहले नागदा में ही मेरी एजुकेशन शुरू हुई थी, मैंने मतलब नर्सरी में मैं नागदा थे हम लोग। उसके बाद में फिर डैडी का ट्रांसफर हुआ, तो हम लोग बयाना, फिर भरतपुर आए। भरतपुर में हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम रुके, 10 साल के करीब हम लोग रुके थे। फिर उसके बाद मेरे डैडी का ट्रांसफर हो गया आगरा में, फिर हम लोग, मेरी पूरी एजुकेशन फिर आगरा में हुई। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, मैं कोटा आ गई, अभी मैं कोटा में ही हूँ।
1: बहुत खूबसूरत, अलीगढ़ तो बड़ा फेमस जगह है, और मुझे तो इसलिए बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अलीगढ़ की पैदाइश है, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा मेरी भी अलीगढ़ की पैदाइश है। अच्छा, इसलिए तो मुझे अच्छा। बहुत मजा आया, हालांकि हम राजस्थान में रहे ज्यादातर।
2: हाँ जी, मेरी मेरी दादी का घर वही है।
1: ओके ओके,
2: हाँ मेरी दादी का घर वही है, तो इसलिए मैं, मेरी पैदाइश वही की है।
1: चलिए बहुत बढ़िया, ये तो अलीगढ़ से शुरुआत हो गई अपनी बातचीत की, सब अच्छी बात ही क्या है। अच्छा, तो शिखा जी, अब ये बताइए कि क्या आपके परिवार में संगीत का माहौल था, या ये लगाव आपने अपने आप विकसित हुआ, ये कैसे हुआ धीरे धीरे, कभी फैमिली का माहौल भी?
2: हाँ हाँ, मेरे मेरे मेरी फैमिली में संगीत का माहौल था। मेरी मदर बहुत अच्छा गाना गाती है।
1: अच्छा।
2: और शायद मैंने उनसे ही सीखा था बचपन से, मतलब बचपन में थोड़ा गुनगुनाती थी मैं, उनको सुनती थी, तो तब मैंने सीखा था उनसे। और थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने शायद उनका यशोमती मैया से बोले नंदाला ये वाला गीत सुना था उनसे और वो ही मैंने सीखा था उनसे, मेरी मदर ने मुझे सिखाया था ये गाना।
1: तो आपकी मदर गाती थी ये, बहुत ही सुनकर मजा आ गया और उसी उन्हीं से उन्हीं की विरासत आपको मिली है। तो चलिए, ये तो चूंकि बात ही यशोमती मैया के गाने से हो गई है तो हम यहाँ एक गाना सुन लेते हैं आपकी मदर को याद करते हुए, एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं, उनके टाइम का कोई गाना सुनते हैं, है ना, आगे चलते हैं।

0: हाँ, तो वेलकम बैक शिखा जी। आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां भी काफी प्रभावशाली है। सबसे पहले हमें बताइए कि संगीत में आपकी औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन किस तरह से शुरू हुई, क्या क्या किया आपने?
1: जैसे कि मुझे म्यूजिक का शौक बचपन से ही था, तो फिर उसको देखते हुए मेरे मदर फादर ने सोचा कि उसको कुछ म्यूजिक में ही कराया जाए। तो सबसे पहले मैंने ये प्रभाकर में ही मुझे एडमिशन दिलवाया था। कोई डिस्टेंस कोर्स होता है ये, तो हाँ, तो इसमें जैसे होता है सर कि पहले जूनियर डिप्लोमा होता है, सीनियर डिप्लोमा, फिर प्रभाकर की डिग्री होती है। तो इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने 11th 12th में ही म्यूजिक लिया, फिर आगे फिर चलता गया। फिर मैंने DMA म्यूजिक लिया था, MA म्यूजिक वोकल से किया मैंने, उसके बाद PhD किया।
0: अच्छा, PhD भी म्यूजिक से ही किया आपने?
1: जी
0: ओके,
1: जी
0: ग्रेट।
1: जी म्यूजिक से PhD किया मैंने, म्यूजिक वोकल से।
0: अच्छा, वंडरफुल। तो आपका ये जो PhD का रिसर्च टॉपिक है शायद राजस्थानी मार गायकी, तो ये क्या
1: जी,
0: है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। आपने क्या किया, किस तरह से PhD में इस पे काम किया?
1: मैं जैसे मैं आपको बताया कि मैं भरतपुर में रही थी छोटी से, हम लोग जो, तो मुझे शुरू से ही राजस्थानी लोकगीतों का बहुत शौक था, बहुत लगाव था उससे मुझे। फिर जब मैं MA में आई ना, तो हमारे हमारे एक सेमेस्टर जो होता था वो डिजर्टेशन का होता था। तो डिजर्टेशन में हम लोगों को टॉपिक लेना था, तो मैंने अपनी मैम से पूछा, मैम क्या टॉपिक ले सकते हैं मैम? तो मैम ने कहा, बताओ तुम्हें कोई किसी किसी चीज में इंटरेस्ट है, कोई म्यूजिक में? तो मैंने बोला कि मैम मुझे राजस्थानी लोक संगीत में है इंटरेस्ट। तो फिर मैम ने बोला कि राजस्थानी लोक संगीत का पूरा ना लेके कोई एक शैली लेते हैं। मैंने कहा, मैम आप सजेस्ट करिए क्या ले सकते हैं? तो मैम ने मुझे ये सजेस्ट किया कि मांड गायकी पर आप कुछ करो। फिर मैंने उस टाइम पे डिसर्टेशन वर्क किया था उस पर, फिर उसी को मैंने आगे PhD में भी कंटिन्यू किया।
0: मांड गायकी पे जब आप ये PhD वगैरह का काम कर रही थी, तो आप इसमें कुछ फील्ड में जाके मांड गायकों से मिलती थी,
1: जी
0: कुछ उनसे
1: जी जी
0: बात बात करती थी? कैसे
1: जी
0: होता है, कैसे करते हैं काम?
1: मुझे बहुत पहले तो रिसर्च वैसे करते हैं कि अपनी बुक्स वगैरह देख के, अपना लाइब्रेरी जाना, ये करना कई जगह की, बाहर बाहर जाके भी लाइब्रेरी में गई, जोधपुर गई मैं, जयपुर भी गई थी, और फिर वहां पर ही जो लोकल वहाँ के सिंगर्स थे उनसे मिलकर, उनका इंटरव्यू लेकर, उनसे मतलब उस टाइप से मैंने पूरा ये PhD का काम किया था। और उस टाइम मेरी डॉटर बहुत छोटी सी थी, 1 साल की भी नहीं थी तब, मैं उसको छोड़ के जाना पड़ता था मुझे। तो उदयपुर, जयपुर और जोधपुर, अजमेर भी गई थी मैं। जी
0: बड़ी सिंसियरली आपने PhD का काम किया, और
1: जी जी
0: जब बच्चे छोटे होते हैं और शादी हो जाती है,
1: हाँ
0: तो इस तरह का आना जाना बड़ी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सही बात है।
1: जी जी
0: तो ये दिखाता है आप बहुत सिंसियर हैं संगीत के प्रति। तो अब जैसे ये बताइए कि क्या आपकी जो ट्रेनिंग है क्लासिकल रही है या लाइट म्यूजिक की है, या दोनों को आप समान रूप से आपका इंक्लिनेशन है सबकी तरफ, कैसे, क्या खास बात है?
1: मैंने क्लासिकल भी सीखा है और लाइट म्यूजिक में मेरा शुरू से रुझान रहा है, तो लाइट म्यूजिक को भी मैंने समान रूप से ही सीखा है।
0: चलिए, ये चूंकि म्यूजिक की इतनी क्लासिकल लाइट म्यूजिक की बात चल रही है, तो हम यहाँ रुक के एक अच्छा सा कोई लाइट म्यूजिक का गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं।

0: अच्छा शिखा जी, आप एक स्टेज परफॉर्मर भी हैं, स्टेज पर थोड़ा सा याद कीजिए, अपनी यादों में गोता लगाइए कि पहला परफॉर्मेंस कैसा रहा था, कौन सा था, कहाँ था, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: पहला परफॉर्मेंस मेरा था, मैं HKG में थी तब हमारे
0: ओके।
1: जो स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं ना उसमें परफॉर्म किया था। तो जो ग्रुप सॉन्ग होते हैं अपने उसमें किया था सबसे पहली बार मैंने परफॉर्म। जी
0: अच्छा
1: जी उसके
0: अच्छा
1: थोड़े से मुझे शायद बोल भी याद है, ऐसे
0: अरे
1: था
0: वाह,
1: कुछ। हाँ हाँ
0: अच्छा, तब तो
1: ऐसे
0: आप
1: कुछ
0: बहुत
1: था
0: छोटी होंगी।
1: कि हाँ बहुत छोटी
0: हाँ
1: सी थी मैं। और
0: हाँ
1: तो उसके बोल थे जैसे ये धरती है अपनी,

0: आपको
1: तरह
0: खुला,
1: का
0: चलिए आपको बड़ा
1: था।
0: HKG की में आपने जो गाना गाया
1: हाँ
0: होगा तो उस टाइम तो आप 5, 6, 7 साल की होंगी मुश्किल से। सही
1: हाँ पाँच
0: बात है। तो
1: बिल्कुल।
0: कहाँ थी आप HKG में, कौन से शहर में
1: मैं
0: थी?
1: भरतपुर में थी, मैं भरतपुर
0: ओके, भरतपुर में थी। ठीक
1: में।
0: है। आपने कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिया है और आपको इनाम और अवार्ड्स भी मिले हैं, तो कोई मेमोरेबल या प्राउड मोमेंट जब जो आप भी आपको याद आता हो, आपके दिल में बसा हो, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: जी, सबसे पहली बार जब मैंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, मैं 5th क्लास में थी तब।
0: अच्छा,
1: तो जी, तो ये हमारा था, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉम्पिटिशन था, उसमें मैं फर्स्ट आई थी। बहुत खुशी हुई थी उस टाइम मुझे, मतलब तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा कुछ ऐसे नंबर आएगा, पर उस टाइम मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ।
0: चलो बहुत अच्छा।
1: और एक बार मैं स्टेज परफॉर्मेंस दे रही थी, और तो उस टाइम हमारे आगरा के जाने माने एक संगीतज्ञ थे, उनका नाम करतार सिंह जी, जो
0: अच्छा
1: इंडियन आइडल में भी आए हैं। हाँ जी, नहीं इंडियन आइडल में सर वो था जी
0: सारे गामा, सारे गामा,
1: जी जी तो
0: सारे
1: उसमें
0: गामा।
1: आए थे वो, तो
0: अच्छा अच्छा
1: उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को सुना, तो आए मेरे पास और मुझे 100 का नोट देकर बोले बहुत बहुत बढ़िया गाया आपने। तो
0: अच्छा
1: वो चीज तो मतलब मेरे लिए हमेशा याद रहती है, वो यादगार लम्हा है, उस
0: अरे
1: चीज को मैं
0: सही,
1: भूल नहीं पाती।
0: नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इस तरह का जो कंपटीशन में कभी कोई जाना माना शख्सियत आके आपको एनकरेज करता है, आपको
1: जी
0: अप्रिशिएट करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और
1: जी
0: वो यादें कभी दिल से जाती नहीं है।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा अब आपको एक अजीब सा सवाल पूछते हैं कि ये तो अप्रिसिएशन की बातें हुई, क्या कभी ऐसा कोई एम्बेरसिंग मोमेंट भी आया है स्टेज पर के आप बताना चाहें, जैसे आप कभी लाइन भूल जाते हैं, कभी फंबल हो जाता है, कभी म्यूजिक साथ, ऐसा कोई ऐसे गड़बड़ भी हुई है स्टेज पे क्या?
1: नहीं, ऐसा तो कोई भी मोमेंट मुझे याद नहीं है,
0: चलिए चलिए,
1: बस
0: बहुत
1: एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ,
0: हाँ हाँ बताइए
1: वो भी
0: बताइए।
1: मेरे बचपन का ही किस्सा है। वो ऐसे म्यूजिक से रिलेटेड तो नहीं है, पर हाँ परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। कि
0: जी,
1: मुझे ये एक बार रामायण वाला जो रामलीला टाइप से स्कूल में कोई प्ले हो रहा था, तो
0: अच्छा
1: टीचर ने मुझे बोला कि सीता जी बनाएंगे तुम्हें। ठीक,
0: अच्छा
1: मैं बन गई, और
0: अच्छा
1: जिस दिन हमारी परफॉर्मेंस थी उसी दिन किसी बच्चे ने मुझे बोल दिया कि सीता जी को रावण चुरा के ले जाता
0: अच्छा
1: है। हाँ, तो उसको बता, उस बात को सुनकर मुझे इतना डर लगा कि मैं स्टेज पर गई नहीं, मुझे रावण चुरा के ले जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने वो परफॉर्म किया नहीं तो किया ही नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: डर लग गया आपको, बिल्कुल सही बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, जैसे आप स्टेज शो वगैरह में जाती हैं सिंगिंग करने, तो आप ये कराओके सिंगिंग ज्यादा करती हैं, लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ भी रेगुलरली परफॉर्म करती हैं, ये किस तरह से है आपका?
1: ये मैंने दोनों ही किया है। अभी फिलहाल थोड़ा सा लाइव वाला कम हो गया, कराओके का ज्यादा है अभी, मेरा लाइव का कम हो गया है। पहले
0: अच्छा,
1: लाइव भी चलता था मेरा, अभी कराओके का ज्यादा है।
0: तो चलिए आपकी स्टेज परफॉर्मेंस के नाम पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर
1: जी
0: आगे बातचीत को जारी रखते
1: जी
0: हैं।

0: हाँ, तो शिखा जी अब ये बताइए, हम थोड़ा सा आपके फेवरेट सिंगर्स के बारे में बात करेंगे और चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आपके फेवरेट फीमेल सिंगर्स कौन हैं? लता जी, आशा जी में से किसकी गायकी आपको ज्यादा इंस्पायर करती है, कुछ इसके बारे में बताइए खुल के हमें।
1: जी, लता जी, आशा जी दोनों ही मेरी फेवरेट सिंगर हैं। और उसके अलावा मुझे कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक जी और साधना सरगम जी, इनके गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं इनके गाने भी मुझे। जी
0: अच्छा,
1: जी जी
0: गीता दत्त कैसी लगती हैं आपको?
1: गीता दत्त तो हो, बहुत ही बहुत, मतलब उनकी तो बात ही अलग है।
0: जब अपने जमाने में वो गाती थी तो किसी जमाने में वो भी टॉप की सिंगर थी,
1: जी, बिल्कुल
0: लता जी
1: बिल्कुल
0: उस टाइम
1: बिल्कुल
0: आई
1: मैं,
0: रही थी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके गाने भी मैं गाती हूँ, उनके बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं गाती हूँ उनके।
0: अच्छा, आप थोड़ा सा सहज हो जाइए, और अगर हमारे श्रोताओं को आप लता जी का कोई दो लाइनें सुनाइए, कोई मुखड़ा सुनाइए, जो भी आपकी इच्छा हो वो सुनाइए, फिर हम आशा जी का भी सुनेंगे आपसे, और सहज होके बिल्कुल आराम से सुनाइएगा।
1: जी, बिल्कुल। दिल और निगाहों के साए, दिल और निगाहों के साए, दिल और निगाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए।

0: नीलता जी का था सॉन्ग।
1: हाँ, और सुनाइए कोई आशा जी का सुना दीजिए।
0: आशा
1: आशा
0: जी
1: जी
0: की
1: का
0: गजल, आशा जी की गजल सुनाऊंगी जो,
1: गजल सुनाएंगे। अच्छी गजल
0: हाँ जो
1: सुनाइए।
0: मेरी
1: और
0: मेरी
1: फिर
0: फेवरेट गजल
1: कोई आशा जी का जो आइकॉनिक एनर्जेटिक लाइंस वाला भी
0: है।
1: सुनेंगे
0: जी
1: आपसे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: बहुत बढ़िया, मुझे पता है आप बिना म्यूजिक के गा रही हैं और साउंड भी थोड़ा ईयरफोन से उतनी मजा नहीं आता, लेकिन बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और अगर ये म्यूजिक के साथ होता तो बस वाह क्या बात होती। लेकिन शिखा जी, आप ये बताइए कि आपका आपका फेवरेट मेल सिंगर कौन है, पुराने दौर का हो या नए दौर का हो, और किसी मेल सिंगर का भी कोई फेवरेट गाना हो तो गुनगुनाइए, और भले ही एक मुखड़ा गा दीजिए, एक अंतरा भी गा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
1: जी, मुझे पुराने सिंगर्स में ही रफीज, मोहम्मद रफी जी और किशोर जी, ये दोनों सिंगर्स के सॉन्ग बहुत पसंद है। तो मैं मोहम्मद रफी जी का एक गीत सुनाना चाहूंगी। तुम
0: हाँ हाँ बताइए।
1: जो मिल गई हो तो ये लगता है जहां मिल गया,

0: देखो खपा न हो, बैठो ना दूर हमसे, देखो खपा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, मेरी क्या कथा है, सोचो तुम ही, जमीन से भी कहीं आसमान मिल गया।
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया, बहुत अच्छा। और रफी जी का तो ये आइकॉनिक सॉन्ग है जिसको सुनने में हम लोगों को बहुत मजा आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड।
0: धन्यवाद धन्यवाद
1: चलिए
0: सर,
1: चलिए, बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया आपका। और फिर हम आपकी गायकी बारे में, जरा इंटरव्यू खत्म हो जाए तो हमारे रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर साहब का मैसेज आया है कि हम लोग कुछ आपसे बात भी करना चाहेंगे इसके बारे में। चलिए, तो आपके संगीत के सफर में अभी बताइए, फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि ये एक ऐसा काम है संगीत का, जो डिवोशन का काम होता है संगीत, तो इसमें
0: जी
1: ऐसा नहीं हो सकता कि बिना फैमिली के सपोर्ट के ये आगे बढ़ा पाए। स्टेज पे भी जाना पड़ता है आपको, प्रोग्राम्स पे भी जाना पड़ता है, तो बताइए किस तरह से चलता है सारा काम?
0: बिल्कुल, फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है, मेरी मदर इन लॉ भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है, मेरी बच्चे तो बच्चे भी कर ही रहे हैं, और हस्बैंड का
1: अच्छा,
0: तो, हाँ हस्बैंड तो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे बाहर भी लेके जाना है कभी कोई परफॉर्मेंस के लिए, तो वो भी जाते हैं मेरे साथ, और तब तक मेरा परफॉर्मेंस रहता है वहाँ पे, मैं हूँ वहाँ पे, तब तक मेरे साथ ही रहते हैं, हर जगह मुझे लेके जाते हैं,
1: वेरी
0: और
1: गुड।
0: हाँ, और मदर इन लॉ भी कभी मुझे कभी मना नहीं किया कहीं भी जाने के लिए, किसी भी टाइम हो कुछ भी हो मैं चली जाती हूँ आराम से, मुझे मतलब कुछ भी घर में भी चिंता नहीं होती कि मुझे भी कुछ काम करना है, तो दिमाग में अगर कोई ऐसे सपोर्ट करने वाला ना, दिमाग में ये रहता है कि आपको घर के भी
1: वाह,
0: काम संभालने हैं, अरे भाई ये काम रह गया ये काम रह गया, उस चीज की मुझे चिंता नहीं रहती है।
1: तो अब ये बता, आपके हस्बैंड भी गाना गाते हैं क्या? ये बताइए, आप दोनों
0: जी
1: मिलके गाना
0: जी
1: गाते हैं क्या?
0: नहीं
1: नहीं, अच्छा, वेरी गुड। ड्यूट वेट नहीं
0: नहीं हाँ
1: गाते?
0: हाँ नहीं, उनको
1: अच्छा
0: शौक नहीं है गाने का,
1: अच्छा
0: हाँ
1: उनके सुनने
0: सुनने
1: का
0: का
1: शौक।
0: शौक है, अच्छे श्रोता हैं वो, श्रोता
1: अच्छा,
0: बहुत
1: श्रोता है।
0: अच्छे हैं,
1: अच्छा
0: श्रोता तो बहुत ही अच्छे हैं,
1: अच्छा वेरी
0: हाँ
1: गुड, वेरी गुड, वेरी
0: जी।
1: गुड, वेरी गुड। तो वो उनका कोई फेवरेट गाना कौन सा, उनको पसंद कौन सा गाना है? कोई फेवरेट गाना है उनका जो आपसे कहते हैं, भाई सुनाओ मेरे को वो गाना सुनाओ आज, तो ऐसा कोई है?
0: ऐसे कोई गाना, हाँ उनको ना पसंद है, तेरे बिना जिया जाएगा,
1: अच्छा
0: वो उनको पसंद
1: अच्छा
0: है।
1: तो गुनगुनाना चाहेंगी? आगे अपन बातचीत जारी
0: जी
1: रखते हैं
0: जी
1: उसके बारे में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं
1: हाँ,
0: गुनगुनाना चाहती हूँ।
1: सुना दी, सुना दी, सुना दी।

0: না জিয়া যাই না।
1: अरे वाह, आपने हस्बैंड के नाम पे तो बड़ा अच्छा गाना सुनाया भाई, बड़े मन से गाया ये गाना। सबसे अच्छा यही गाया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब इस मोड़ पे रुक के हम मेरे ख्याल में यही गाना देश पे सुन लेते हैं, हमारे रेडियो पे भी चलाते हैं, इसको प्ले करते हैं। चलिए।

0: अच्छा शिखा जी, अब ये बताइए कि संगीत के अलावा आपके और कौन कौन से हॉबीज हैं, किस तरह से रिलैक्स करती हैं और क्या क्या करती हैं, किस तरह से इंस्पायर होती हैं अपना आगे का काम करने के लिए? अच्छा
1: मुझे म्यूजिक के अलावा मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, और हाँ, और मुझे क्राफ्टिंग का भी शौक है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर करती हूँ। दोनों काम ऐसे हैं कि मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा,
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कुछ कुकिंग के बारे में बताइए, कौन सी फेवरेट रेसिपी है आपकी, क्या क्या बनाती हैं आप?
1: वैसे तो सभी सारी चीजें ही बना लेती हूँ मैं, लेकिन फेवरेट में आप कहेंगे तो मुझे मतलब लोगों को पसंद है मेरे हाथ के जो सब्जियां या कुछ भी डिश, तो जैसे मेथी मलाई मटर, कटहल की सब्जी, कटहल
0: अरे
1: की
0: वाह
1: सब्जी,
0: वाह वाह, कटहल की सब्जी मेरी
1: कटहल
0: बड़ी
1: की सब्जी।
0: फेवरेट
1: जी बिल्कुल, आप आइए कभी तो आपको
0: है।
1: खिलाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी आएंगे तो आपके हाथ के खाएंगे। हमारे समीर जी से भी कहेंगे कि आप चलिए कटहल की
1: जी
0: सब्जी खा
1: जी
0: के आते, ये भी
1: बिल्कुल।
0: यूपी वाले हैं। हाँ
1: अच्छा
0: समीर जी
1: अच्छा
0: भी यूपी वाले हैं, तो
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: यूपी वालों को तो कटहल पसंद है।
0: कटहल पसंद है, बिल्कुल
1: हाँ
0: पसंद
1: जी बिल्कुल।
0: है, सही है। चलिए चलिए, तो बहुत बढ़िया। अच्छा आजकल थोड़ा सा हम आजकल के जो म्यूजिकल सिनेरियो है स्टेज शोज का, उस पे आते हैं, बातचीत करते हैं। तो आजकल छोटे बड़े शहरों में बड़े सारे म्यूजिकल ग्रुप्स हो गए हैं, कराओके क्लब्स हो गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आपका ये जो म्यूजिक के प्रति मोहब्बत है, प्यार है लोगों का, इसको कैसे देख रही है आप? क्यों शुरुआत हुई है और इस तरह बढ़ता जा रहा है, क्या होगा इसका, कुछ इसके बारे में क्या सोचती हैं आप?
1: हाँ, कराओके क्लब और म्यूजिक क्लब्स में क्या होता है कि सब लोग, सारे संगीत प्रेमी जो मिलते हैं आपस में, एक तो सबका मनोरंजन होता ही है, और क्या, जो जैसे कभी कोई स्ट्रेस में है या कुछ है तो उससे ना स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं म्यूजिक से। और जो मतलब जिनके अंदर मन में गाने की इच्छा है बहुत ज्यादा, तो वो है ना अपनी इच्छा को भी वहां पर आकर अपना पूरा कर लेते हैं। और सिंगर्स का ना इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, बार बार परफॉर्म करते हैं, सीखने को भी मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, दूसरों से भी सीखने को मिलती है कि कौन कैसा गा रहा है, हमें किससे किससे क्या चीज सीखनी चाहिए, वो चीज भी हमें मिलती है वहां पर। तो बस मैं मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज की शुरुआत हो गई है, पर कभी कभी ऐसे लगता है कि सभी तरह के लोग आ जाते हैं फिर गाने के लिए भी ना। ठीक है, जिसको शौक है, बिल्कुल शौक है, ठीक है, शौकिया तौर पर गा ले, वो करते हैं जैसे, और कुछ बहुत अच्छे भी आते हैं, दोनों तरह के ही लोग आते हैं। पर हाँ ये है कि लोगों को एक ना प्लेटफॉर्म मिल गया है। अच्छा
0: सही बात है। देखिए वैसे तो मैं अगर इसको देखूं कि म्यूजिक जो है हमारे घरों और बाथरूम से निकल के स्टेज तक पहुंचा दिया है लोगों
1: जी
0: ने,
1: जी जी बिल्कुल
0: जिस
1: बिल्कुल।
0: तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेटेंट सिंगर थे, बिल्कुल दबी हुई प्रतिभाएं थी, वो भी सामने आ
1: हाँ
0: गई हैं।
1: हाँ
0: और लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा होता जा रहा है। आज की डेट में जयपुर में 22 तारीख को कम से कम 4 शोज हैं,
1: ओ
0: जितने यहाँ वो है ऑडिटोरियम से, सब में कोई ना कोई शो है और सबके इनविटेशन है। अब बड़ी दिक्कत हो जाती है कि किसमें जाए,
1: कहाँ
0: कैसे
1: जाए।
0: जाए, क्या करें। तो और
1: बिल्कुल
0: कई बार क्या होता है कि सिंगर्स वही घूम फिर के, वही जयपुर के 10 15 20 50 सिंगर्स हैं, वो घूम फिर के कभी इस ग्रुप में गा रहे हैं, कभी उस ग्रुप में गा रहे हैं, तो वही चलता
1: हाँ
0: रहता है। कभी कभार कोई
1: हाँ
0: वो होता है, और फिर ऑनलाइन तो सारे चलते ही रहते हैं। तो
1: मतलब
0: ये है, बात है। चलो आप, हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे आप?
1: दोनों ही चीजें है ना, अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो होते हैं वो दोनों ही चीजें होती हैं हर फील्ड में, वो चीजें होते हैं।
0: तो आप कैसे फ्यूचर में देखती हो आप अपने सिंगिंग कैरियर को, किस डायरेक्शन में जाता हुआ देखती हैं आप, कुछ बताइए इसके बारे में।
1: फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपनी सिंगिंग को थोड़ा और डेवलप करूँगी, और परफॉर्मेंस अभी अपने कोटा में देती हूँ, बाहर भी जाकर दूंगी, ये चीज सब प्लान कर रहे हैं हम लोग भी।
0: चलिए चलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए आपकी फ्यूचर के सिंगिंग कैरियर की जो ब्राइट कैरियर होने वाला है, उसके लिए रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातचीत को जारी रखते हैं। अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ गए हैं।

0: और आखिर में शिखा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी यंग सिंगर्स, स्टूडेंट्स और म्यूजिक लर्नर्स के लिए? कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें, कुछ उनको संदेश देना चाहें तो बताइए।
1: जी बिल्कुल, मैं संगीत प्रेमियों से और युवा सिंगर से मैं कहना चाहती हूँ कि म्यूजिक को बहुत प्यार करें। म्यूजिक को और उसके मतलब म्यूजिक की ऐसी ऐसा फील्ड है कि उस मतलब आपके स्ट्रेस को भी दूर कर देता है, खुशी भी देता है, हर चीज भी देता है आपको। और म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक ना रियाज मांगता है, रियाज को कभी मत छोड़ो, रियाज हमेशा करते रहना चाहिए इसका। और अपनी जो आवाज है उस पर मतलब कहना चाहूंगी कि आत्मविश्वास को बना के रखे अपने ऊपर। और जो कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं अपने से, तो गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीखने को मिलता है। जब हम कुछ गलती करते हैं तो उसको सुधार कर उससे कुछ सीखने को ही मिलता है। तो हमेशा ये भी ध्यान रखें और रियाज को कभी भी ना छोड़ें, रियाज करते रहें हमेशा।
0: चलिए, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और मैं इसमें ये बात भी जोड़ देता हूँ श्रोताओं, कि जहाँ आपको स्ट्रेस फ्री करता है वो मिलते हैं, आपको इससे नए दोस्त भी मिल जाते हैं,
1: जी
0: बहुत
1: बिल्कुल,
0: जान
1: दोस्त ही
0: पहचान
1: मिलते
0: आपकी
1: हैं।
0: बढ़ती है, आपकी
1: हाँ
0: एरिया बहुत बढ़ जाता है। जब
1: बिल्कुल
0: आप कंपटीशंस में जाते हैं या स्टेज शोज में जाते हैं तो नए सिंगर्स मिलते हैं, फिर उनसे बहुत अच्छी अच्छी दोस्ती हो जाती है, प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं। और सब लोग चूंकि सब यह संगीत के दीवाने होते हैं, तो उनमें एक आपस में एक भावनात्मक तो जुड़ाव भी हो
1: जुड़ाव हो
0: जाता
1: जाता है,
0: है,
1: जुड़ाव हो
0: जुड़ाव
1: जाता है
0: होता
1: वो,
0: है, एक
1: बिल्कुल
0: बड़ा
1: हो जाता
0: प्यारा
1: है।
0: होता है। और दूसरा है, और ये भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कह रहा हूं, कि जब हम संगीत के बारे में बात करते हैं, जो दुनिया में नेगेटिव चीजें हैं, है, जो नकारात्मक चीजें हैं, एक दूसरे की बुराई करना, भलाई वो करना, वो
1: जी
0: सबसे भी हम दूर होते जाते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: संगीत अपने आप में इतना प्योर है, इतना जेनुअन चीज है, कि जब हम संगीत की बात करते हैं या संगीत से जुड़े रहते हैं, तो हम दुनिया की हर नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाते हैं। तो श्रोताओं, संगीत के नाम पे बस यही है कि शिखा जी, आज बहुत बातें करके आपसे मजा आया, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो वाह, क्या खूबसूरत बातचीत रही आज। डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ जी ने न सिर्फ अपने संगीत सफर की झलकियां हमारे साथ बांटी, बल्कि अपनी मधुर आवाज से हमारा दिल भी जीत लिया। शिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर हमारे श्रोताओं के साथ ये म्यूजिकल जर्नी शेयर की।
1: जी
0: हम दिल से कामना करते हैं कि आपकी सुरों की ये यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रहे और आप आने वाली जनरेशन की को भी इसी तरह से इंस्पायर करती रहे। दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटी, एक नई कहानी और कुछ नई धुनों के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो शो जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

0: FM छाबुआ की आवाज और मैं हूँ आप सभी के बीच में आपकी रेडियो साथी आरजे भावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा आप सभी के बीच में हाजिर होती हूँ लेकर समुदाय के चर्चा में एक नया विषय, और आज भी एक नए विषय के साथ में मैं आरजे भावना हाजिर हूँ आप सभी के बीच में लेकर ये बहुत ही खास और बेहतरीन जानकारी जो है नशा मुक्ति भारत अभियान पर। और आज के इस चर्चा के विषय में शामिल होने हमारे साथ मौजूद हैं ब्रह्म कुमारी से ज्योति बहन। ज्योति बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, कृपया अपना परिचय दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय झाबुआ से मैं ब्रह्मा कुमारी ज्योति बहन, जो कि विगत 25 वर्षों से झाबुआ आदिवासी क्षेत्र में आध्यात्मिकता के द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हूं।
0: दोस्तों, तो आपने जाना ज्योति बहन का परिचय, इन्होंने अपने बारे में बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और अब हम चर्चा के विषय पर आते हैं। तो ज्योति बहन, आप ये बताइए कि नशा मुक्ति भारत अभियान के लिए क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से?
1: आज का हमारा विषय है, जो कि भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी के MOU से एक बहुत सुंदर अभियान चल रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि जो झाबुआ जिला है, हम सभी को ज्ञात है कि इस झाबुआ जिले में नशा बहुत मात्रा में फैला हुआ है। हम ये कहेंगे कि सुबह की शुरुआत और पूरे दिन का अंत अर्थात रात तक अधिकतर मनुष्य आत्माएं शराब में डूबी हुई रहती हैं, तंबाकू पाउच का सेवन करती हैं, और इस गिरफ्त में आज के छोटे छोटे बच्चे भी अछूते नहीं रहे हैं, वो भी इस गिरफ्त में आते जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि हम सभी परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान हैं, और परमात्मा ने हम सभी को एक बहुत सुंदर उपहार दिया है, और वो उपहार है हमारा शरीर। वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर का आकलन करके इसकी कीमत लगाई है, जो है 220 करोड़ रुपए। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि आज यदि हम एक 10 लाख की मारुति कार खरीदते हैं तो भी हम उसका कितना रखरखाव करते हैं, उसमें पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल ही डालते हैं, समय प्रति समय उसकी सर्विसिंग कराते हैं। ऐसे नहीं कि आज हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हमने डीजल डाल दिया, नहीं, हम उस गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपालु है, और उन्होंने हमें 220 करोड़ रुपए का ये शरीर दिया है। आज मनुष्य आत्मा ने उसकी क्या हालत बना ली है। आज का मानव अपने शरीर के अंदर शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, गुटखा आदि डालकर अपने शरीर को डस्टबिन अर्थात कचरे का डब्बा बनाते जा रहा है। आज परमात्मा के सामने भी इन चीजों का भोग अर्थात नैवेद्य कभी नहीं लगाते हैं। परमात्मा के सामने भी हम बहुत सुंदर चीजों का भोग रखते हैं, और हम परमपिता परमात्मा को रोज याद करने वाले, अपने घर में हमने उनकी तस्वीरें लगा रखी है, लेकिन हम अपने शरीर में कितना गंदगी डाल रहे हैं, और उसके कारण जो है शरीर इतना कमजोर होता जा रहा है।
0: जी बहन जी, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी आपसे कि ठीक है नशे की वस्तुएं हैं, लेकिन इंसान नशे का शिकार होता ही क्यों है, या फिर अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, कृपया इसके बारे में बताइए।
1: अब हमें ये जानना होगा कि व्यक्ति नशे का शिकार क्यों होता है। आज तक हमने जितना भी सर्वे किया या जो जो नशीली चीजों का सेवन करते हैं उनसे यदि हम पूछते हैं तो उनका एक ही उत्तर होता है कि दीदी, हम बहुत छोटे थे और हमारे दोस्तों ने हमें ऑफर किया कि पाउच खा लो, या तंबाकू खा लो, या थोड़ी सी शराब पी लो, या गांजा ले लो, और हम उन्हें ना नहीं कह सके। और एक बार हमने बाल्यावस्था में ही उस चीज को लेना शुरू किया, और धीरे धीरे हम जो है उसके आदि बन गए हैं।
0: जी जी मैम, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी। अब एक और सवाल था हमारे मन में कि आखिर ये नशा किन किन चीजों से हो सकता है, या फिर किन किन चीजों से होता है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: तो नशा सिर्फ शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू का ही नहीं है, आज एक और नशा इस समाज को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहा है और वो नशा है मोबाइल का भी नशा। आज यदि हम देखते हैं कि कई घर परिवारों में सुनने के लिए मिलता है, दीदी बच्चा खाना नहीं खाता है और उसको जैसे हम मोबाइल दे देते हैं वो आराम से जो है मोबाइल देखता जाता है और भोजन करता जाता है। बच्चा रो रहा है, हमने उसको मोबाइल दे दिया। तो क्या आज हम अपने बच्चों को, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, हम उसको कैसा जीवन हम खुद ही प्रदान कर रहे हैं? तो वर्तमान समय की ये पुकार है कि हम सभी 24 घंटे में से घड़ी दो घड़ी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में शामिल करें, आध्यात्म के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और आध्यात्म से ही हम सभी का जो जीवन है वो परिवर्तन हो सकता है। आज हमने अपने जीवन में कई परिवर्तन किए हैं जिसके लिए हम सोचते हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन एकांत में बैठकर के यदि हम घड़ी दो घड़ी चिंतन करें तो हम अपने आप से यदि बातें करें या अपना आत्मविश्लेषण करें तो हमें ये पता चलेगा कि हम विकास की ओर नहीं बल्कि आज हम विनाश की ओर जा रहे हैं।
0: जी मैम, हमने सूक्ष्म रूप से ये जाना है कि नशे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अब हम संपूर्ण रूप से जानना चाहेंगे कि आखिर ये नशे के कारण क्या क्या है और इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है या फिर इसके निवारण क्या है, कृपया इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: नशे के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जैसे किसी घर परिवार में बच्चों को स्नेह नहीं मिलता है और इस कारण जो है बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो वो जब बाजार में जाता है तो वो सुंदर पाउच यदि किसी पान की दुकान पर लगे हुए हैं तो उनकी ओर वो अपने आप आकर्षित होता है और एक बार यदि वो खाना शुरू करता है तो वो उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है और वो उसका आदि हो जाता है। कहीं कहीं व्यापार में असफलता है या कहीं किसी को अपने प्यार में धोखा मिलता है तो भी हमने देखा है कि व्यक्ति जो है शराब का या सिगरेट का सहारा लेते हैं, या फिर आर्थिक परेशानियां हैं या व्यक्ति कोई बीमार है वो भी जो है फिर इस नशे की तरफ बढ़ता है और वो नशा जब करते हैं तो थोड़ी देर उनको बड़ा अच्छा लगता है लेकिन फिर जैसे ही नशा उतर जाता है तो फिर वही स्थिति होती है, फिर वो नशा करने लगता है, इस प्रकार वो इस चीज का आदि हो जाता है।
0: जी मैम, अभी आपने आध्यात्मिकता के बारे में बताया तो क्या आप ये बता सकती हैं कि आध्यात्मिकता का प्रयोग करके नशे से दूरी कैसे बनाई जा सकती है, इसका क्या रोल हो सकता है इसमें, कृपया इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, नशे से दूर होने के लिए जैसे व्यक्ति कहता है आज मेरा शराब पीने का मन है या कहीं कहता है कि आज मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले हमें जो है अपने मन को पावरफुल अर्थात शक्तिशाली बनाना होगा और मन शक्तिशाली दवाइयों से नहीं बनेगा, उसके लिए हमें थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर मुड़ना पड़ेगा। तो जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज में खास हम सिखलाते मेडिटेशन, जैसे एक डिस्चार्ज मोबाइल की बैटरी है और जैसे हमने उसको पावर हाउस से कनेक्ट किया तो हमारे मोबाइल की बैटरी रिचार्ज होने लगती है और मोबाइल हमारा कार्य करने लगता है। इसी प्रकार हमारा शरीर एक मोबाइल है और इसके अंदर एक बहुत सुंदर सिम है, वो है आत्मा, और इसके अंदर जो मन है वो बैटरी है। परमात्मा से अपने मन को कनेक्ट करना उसकी एक बहुत सुंदर विधि है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से हम परमात्मा से सीधा कनेक्ट होकर के धीरे धीरे अपने मन को पावरफुल बनाते, मन को शक्तिशाली बनाते हैं। दूसरा, हम नशे को दूर करने के लिए दूसरा हम सहारा लेते हैं बुद्धिमत्ता का विकास। मान लीजिए हमारे पास में कोई व्यक्ति आता है सिगरेट पी करके आता है तो हम उससे घृणा करते हैं, आपके पास से बदबू आ रही है, आप दूर हो जाइए, मेरे पास मत बैठिए। या कोई व्यक्ति शराब पी कर आया तो हम उससे नफरत करते हैं, आपने बहुत शराब पिए, आप हमारे पास मत बैठिए। नहीं, हमें उनसे सबसे पहले स्नेह से प्यार से उनके साथ में पेश आना है कि देखिए आप शराब को कम कीजिए, सिगरेट को पीना कम कीजिए, और धीरे धीरे जैसे उसके बुद्धि में ये उतरेगा कि मुझे इससे दूर होना है। और मान लीजिए अगले दिन एक व्यक्ति एक दिन में 10 सिगरेट पीता है लेकिन उसने अगले दिन 9 सिगरेट पी, उसने 1 सिगरेट कम पी है, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना है, शाबाश, वेरी गुड, आज आपने बहुत अच्छा किया, आपने 1 सिगरेट को कम किया। इससे उसके अंदर उमंग उत्साह आएगा कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे फिर इस नशे को छोड़ने का प्रयास करेगा और उसमें सफलता मिलेगी। तीसरा, नशे को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ, जो कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी से भी हम निशुल्क ही प्रदाय करते हैं, जिसमें सिगरेट, तंबाकू और शराब को छोड़ने के लिए होम्योपैथिक दवाई देते हैं। और चौथा प्रकार है, कुछ घरेलू उपाय भी है, छोटे छोटे नुस्खे बनाकर उसका प्रतिदिन कई दिनों तक नियमित सेवन करने से भी हम नशे को पूर्णतया छोड़कर एक बहुत सुंदर शांतिमय जीवन बना सकते हैं। जो व्यसन का आदि व्यक्ति, उसको आत्मिक स्नेह की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जैसे वो मेडिटेशन करता है तो उसको आत्मिक स्नेह के साथ साथ परमात्मा के प्रति भी वो आकर्षित होने लगता है। और जो जो मनुष्य आत्मा नशे का आदि व्यक्ति परमात्मा की ओर आकर्षित होता है, तो धीरे धीरे उसका जो ये नशा है वो छूटने लगता है, उससे एक रूहानी नशा, एक आध्यात्मिक नशा चढ़ने लगता है कि मुझे श्रेष्ठ कर्म करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन बनाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है।
2: जी मैम, आपने अभी अभी कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बताया, तो हम जानना चाहेंगे और साथ ही जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो सभी भी जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके हम नशे से दूर हो सकते हैं या फिर नशे को खुद से दूर किया जा सकता है। तो प्लीज मैम, वो घरेलू नुस्खे के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: हाँ, नशे को छोड़ने के लिए हम सौंफ, मिश्री, अजवाइन, तिल्ली, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छा मिक्सर में पीस के उसका चूर्ण बना के और उसका दिन भर में 4 या 5 बार उसका सेवन करें, तो जो बार बार जो व्यक्ति का मन करता है मुझे गुटखा खाना है, पाउच खाना है या शराब पीना है, तो वो जो है धीरे धीरे उसका जो है मन उधर से हटने लगता है। दूसरा, एक अदरक का टुकड़ा, अदरक को छील कर उसका ऐसा स्लाइस बना करके भी व्यक्ति मुंह में रख करके उसको चूसता रहे, चबाता रहे और उसका रस अंदर लेता रहे, तो भी जो है पीने की या जो गुटखा खाने की वो धीरे धीरे तमन्ना जो है वो कम होने लगती है।
2: जी मैम, आपने बहुत ही बढ़िया और अहम जानकारियां दी हमारे श्रोताओं को नशे को लेकर, और साथ ही हमारे झाबुआ जिले के जो श्रोता सुन रहे होंगे वो शायद इसे समझ भी रहे होंगे कि नशा कितना खतरनाक है और हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शरीर पर और आर्थिक जीवन में उसका क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो इसे वो सुनेंगे, समझेंगे और साथ ही हम आशा करते हैं कि वो नशे से आज ही दूरी बनाना शुरू करेंगे। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं को इतनी अहम जानकारियां प्रदान की, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, आज आपने जाना नशे से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी परेशानियों से अगर आपको सामना नहीं करना है तो कृपया नशे से दूरी बनाए। नशा कोई अच्छी चीज नहीं है, नशा एक बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और वो बीमारी हमारी जान भी ले सकती है। इसलिए कृपया नशे से दूरी बनाए और जितना हो सके खुद को इससे दूर रखें और भी लोगों को समझाएं कि नशा न करें। नशा मुक्त रहेंगे तभी तो स्वस्थ जीवन जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
4: कोयले की कहानी।
5: दोस्तों जरा पहचानिए तो, ये आवाज किसकी है? पहचानिए पहचानिए, ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था? तो चलिए हम बता देते हैं, वो ईंधन था कोयला। क्या आपने कोयला देखा है? आजकल कोयले का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। आइए सुनते हैं कोयले की कहानी, उसी की जुबानी।

अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था, प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से, धीरे धीरे हौले हौले मृत वनस्पति बदली मुझमें।

0: 的文白宝文白宝文白宝
1: Kada bambay bo, asi

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: चरवाहा।

0: अरे किशन,
1: किशन बेटा कहाँ है तू?
2: क्या है काका?
1: आज पाठशाला नहीं जाना?
2: है काका, आज तो रविवार है।
1: ओ, मैं तो भूल ही गया, आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी है। सुन तो जा, आज तू ही पशु चरा ला।
2: काका मुझे तो आज पाठ याद करना है।
1: ओफो, तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है। ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा, पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना।
2: वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता।
1: अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले, पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने। और हाँ, ये ले डिब्बा, इसमें भात है।
2: अच्छा,
1: दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है।
2: तब तो ठीक है काका। हाँ काका, मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा।
1: ठीक है बेटा, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा।
2: चल शेरू, चल दोस्त, आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा, चला मेरे साथ।
3: किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था तभी उसकी दृष्टि सामने के खेत पर जा पड़ी। उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
4: अरे ओ शंभू, ओ शंभू किधर है तू भाई? अरे कोई है? वो देखो, शंभू के पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओए हुर्रिया, हप हप हप, चला चला चला है। हाँ,
5: अरे ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? कौन है भाई?
6: अरे चादर क्यों खींच रहा है, क्यों चिल्ला रहा है?
7: सोने भी नहीं देता।
5: अरे शंभू, तू तो आराम से सो रहा है, सामने देख। अरे उठना, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
6: ओफो, तुझे क्या, तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे, जा जाकर अपना काम कर।
5: अरे शंभू, कैसा आदमी है रे तू?
6: क्यों परेशान कर रहा है, चल जा यहां से, सोने भी नहीं देता। जा जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे।
5: अरे इतने सारे पशु, मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देखना किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं।
6: एक बार कह दिया ना, तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा।
5: खेत तो सभी के होते हैं, आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं, तब तेरी समझ में आएगा।
6: अच्छा जा जा जा जा जा, मुझे सोने दे।
5: किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं।
3: भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं।
4: चलो चलो चलो
8: किशन, तुम खेत में क्या कर रहे हो?
5: मुखिया काका, पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था।
8: अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिखरे हैं? किसने किया ये सब?
5: वो काका शंभू है ना।
8: हाँ।
5: उसके पशु खेत में घुसाए थे।
8: और शंभू कहाँ था?
5: वो देखिए, वो वहाँ चादर ओढ़े सो रहा है, वो पेड़ के नीचे।
8: तो फिर उसके पशु किसने निकाले?
5: वो तो मैंने देख लिया काका, नहीं तो।
8: तो तूने शंभू को नहीं जगाया?
5: बहुत जगाया काका, बहुत जगाया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी।
8: इन्हें अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले?
5: मेरे पास लाठी है ना।
8: हाँ।
5: इसी से, और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की।
8: बेटा किशन, तुम बहुत बहादुर हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं शंभू की खबर लेता हूं। चलो।
5: चलिए काका, चल शेरू आ।
3: मुखिया काका किशन को लेकर उसी जगह जा पहुंचे जहां पेड़ के नीचे शंभू सो रहा था।
8: शंभू! अरे ओ शंभू!
4: अरे ओ शंभू!
6: अरे अरे, आज पशु चराने क्या आ गया? सोने नहीं देता।
4: क्या है?
8: सोने नहीं देता, तुझे मैं सुलाता हूं। और चलकर देख तेरे पशुओं ने मेरे खेत को कैसे उजाड़ा है।
6: आप मुखिया साहब, आप आपके खेत किसने उजाड़े?
8: मुझसे पूछ रहा है। तू चल के देख खेत की हालत, तब तुझे पता चलेगा किसने उजाड़े हैं खेत।
6: अजी मुखिया जी, मेरे पशु तो यही थे। किसी और के पशु घुसे होंगे।
4: अरे शंभू, क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
6: तू चुप रह। तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है, तुझे कुछ मालूम भी है?
8: अगर आज किशन न होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा न बचता, समझे?
6: लेकिन वो मेरे पशु कहाँ हैं?
8: खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहाँ हैं।
6: मुखिया काका, आज माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा।
8: अच्छा चल जा और देख।
6: हाँ?
8: आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना।
6: जी।
8: किसी और के खेत में ना घुसे।
6: जी।
8: हाँ, तुझे छोड़ रहा हूँ।
6: जी।
8: पर आगे से ध्यान रखना, समझे?
6: मुखिया जी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा।
8: चल बेटा किशन, तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूँ।
5: मुखिया जी, किसी और दिन खाऊंगा, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे पशु वो देखिए, वो दूर निकल गए हैं। अच्छा मुखिया जी।
8: अच्छा बेटा किशन, किसी दिन घर आना। हाँ
5: आऊंगा, जरूर आऊंगा मुखिया जी। चल शेरू आ।
3: किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी शहर से वापस आ गए थे। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुखिया काका के खेत में घुस गए थे और शंभू पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अकेले ही मुखिया काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया। इस पर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और बोले,
1: मेरा किशन बड़े काम का है, अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बहादुर है, अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया और दूसरे की खेत को उजड़ने से बचा लिया। इधर आ बेटा, शाबाश।
5: काका,
1: जा बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर अपना पाठ याद करना।
5: अच्छा काका, चल शेरू आ।
9: आ, आ, आ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 10 के अभी 90.8 FM जाबुआ की आवाज।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कोई ना कोई सुविचार लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले एक सुविचार।
2: तो सुविचार है,
1: द वन हु चेजेस टू रैबिट्स गेट्स नन, यानी
2: जो दो खरगोशों का पीछा करता है वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता।
1: वो किसी को भी पकड़ नहीं पाता। तो श्रोताओं, इस सुविचार का अर्थ ये हुआ कि हमें एक साथ बहुत सारे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए,
2: मात्र एक लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए।
1: जी हाँ, तो जब भी कोई काम करें तो उसी पर अपने लक्ष्य को साध करके रखें, सफलता आपके सामने होगी। साथियों, अब बारी है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने की। हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरा नाम भी दीजिए प्रोग्राम में। तो दोस्त, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समस्या ये है कि आपने अपना नाम नहीं बताया।
2: सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया अपना नाम जरूर बताइए
1: और अपना पता और राज्य का नाम भी जरूर बताइए,
2: और हाँ, संपर्क बनाए रखिए।
1: एक और श्रोता की प्रतिक्रिया हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इस श्रोता ने लिखा है,
2: अजीत जी और विमलेश जी को मेरा सप्रेम नमस्कार।
1: मैं कानाराम चौहान, गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से। हमारा अपना कार्यक्रम उमंग मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ मनोरंजक के साथ साथ बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती हैं। विगत दिनों में इंसुलिन की कहानी आपने सुनाई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए CIET NCERT का धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, जो कानाराम जी ने लिखा है वो एक सैंपल है।
1: सैंपल सुनाने का तात्पर्य ये था कि इसी प्रकार आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, यानी नाम,
2: जगह,
1: जिला और
2: राज्य।
1: तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम के द्वारा यात्रा करते हैं एक विचित्र संसार की,
2: जहां कुछ भी हमारी दुनिया की तरह नहीं है।
1: सुनते हैं कार्यक्रम गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
3: मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैर कर किनारे आ गया और थक कर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला कर मेरे मुंह में उंडेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उंडेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां

पहुंचते ही लिलिपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलिपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह
और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ

कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी

0: खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था। मैं सोचने लगा, मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: गुलीवर की विचित्र यात्राएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: बिन्नी का सपना।
2: अरे तुम्हें क्या हुआ?
3: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
2: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
3: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: SO2 है मेरा नाम,
3: सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाने

0: ना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती है, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
1: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला।

अंग से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे चांद, जंगल,

इया से कोई भी शब्द नहीं है। इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है, जैसे गांव, जहां।

ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन ण शब्द के बीच में या आखिरी में आता है, जैसे बाण।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि झाबुआ जिले में और झाबुआ जिले का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM अब स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है इसकी। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ के किसानों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है, खासतौर पर उन किसानों के लिए जहाँ पर जानकारी का अभाव रहता है और जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है।
3: जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने साथियों को, किसान साथियों को खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को लेकर आते हैं और खास तौर पर उन किसान साथियों को छोटी छोटी बातों पर हम नजर डालते हैं, याद दिलाते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से नई पद्धति से कैसे खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को, यहाँ पर पथरीला इलाका है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि एक फसल बोते हैं और दूसरे फसल बोने के बाद वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं और मजदूरी करने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ की जो मिट्टी है, उपजाऊ शक्ति इसकी बहुत कम है। और सबसे पहले हमें अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि यदि आपको लगता है कि हमारे जमीन में अब उर्वरा शक्ति कम होती चली जा रही है, तो तत्काल अपने नजदीकी जो कृषि विभाग है या KVK है, वहाँ पर जाकर संपर्क करना चाहिए। क्योंकि वैज्ञानिक विधि से यदि आप खेती बाड़ी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि खेती में अधिक मुनाफा होगा। क्योंकि यदि देखा जाए कि बरसात के मौसम में यहाँ पर कपास की खेती अधिकतर की जाती है, सोयाबीन की भी खेती की जाती है। ऐसे में किसान साथी, क्योंकि अगर सोयाबीन की बात करें और कपास की बात करें, तो सोयाबीन में भी काफ़ी पानी लगते हैं और पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो कुछ मुख्य बातें हैं जो अपने साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बता देना चाहते हैं। क्योंकि अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि कैसे, कब बरसात का समय आए, बरसात की मौसम आए और कब अपनी खेती में हम बोनी कर सके। खरीफ की फसलों की तैयारी करने से पहले किसान साथी सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच कराएं, यानी मिट्टी परीक्षण कराएं, साथ साथ में उसको उपजाऊ बनाने के लिए पहले तो गहरी जुताई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ साथ में जो आपके पास पहले जैविक खेती किया करते थे, यानी गोबर की खाद अपने खेतों में डाला करते थे, उससे जो नमी बनी रहती थी खेतों में और साथ में पानी भी बहुत कम लगता था, तो ऐसे में किसान साथी वही विधि फिर अपना सकते हैं, अपने खेतों की तैयारी कर सकते हैं, खाद का वो अपने खेतों में डाल सकते हैं, बीजों का चयन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने खेतों में कौन से बीज ऐसे लगाएं जिससे कम पानी लगे और उत्पादन बहुत अच्छा हो। कुछ खरीफ फसलों की तैयारी कैसे करें, ऐसे में किसानों को सबसे पहले स्थान विशेष की मिट्टी, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं संसाधन के आधार पर कहां कौन सी फसलें करना उपयुक्त है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि ज्ञान कहां से प्राप्त होगा, तो आपके पास KVK है, साथ साथ में कृषि विभाग भी इसमें मदद करता है, सरकार की योजनाएं भी हैं, तो उसका भी हम लाभ ले सकते हैं। क्योंकि धरती के अनुकूलता के आधार पर खेती हमें अब करनी चाहिए। अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में इस तरीके की समस्या जो आती है, तो राज्य के कुल खेती का योग क्षेत्र जो रहता है लगभग 20 मिलियन हेक्टर है, इसमें से केवल 20% भूमि सिंचित है और राजस्थान के किसानों को सिंचाई के विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें ट्यूबवेल, कुएं और टैंक भी शामिल है। कुछ भागों में नहरों से भी सिंचाई की जाती है, लेकिन खरीफ सीजन में मुख्यतः बरसात पर वो लोग आश्रित रहते हैं। तो खेत की तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले सूंड ज्यादातर बरसात जो आधारित खेती है उसको किया जा सकता है, क्योंकि फसल कटने के बाद से अगले मानसून वाले के बीच में किसान साथी अपनी जमीन की जुताई भूरक्षण को रोकने की वजह से जुताई नहीं कर पाते हैं। तो अपने किसान साथियों की एक बात और महत्वपूर्ण याद रखने वाली है कि अपनी खेती का समतलीकरण अवश्य करा लें। साथ साथ में समतलीकरण के साथ पहले जो अपने तालाब हुआ करते थे, कुआं जो हमारी सिंचाई के साधन हुआ करते थे, आज दिन प्रतिदिन नष्ट होते चले जा रहे हैं, उनकी रख रखाव के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। अभी शासन की ओर से एक मुख्यतः बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मेड़बंदान के लिए योजना चलाई जा रही है शासन की ओर से, तालाब गहरीकरण के लिए योजना चलाई जा रही है। आपको जहां लगता है कि यहां पर पानी रुकता है वहां पर मेड़बंदान कर दें जिससे पानी रुका रहे और आपकी जमीन की नमी है वो बनी रहे, क्योंकि यदि वाटर लेवल को देखा जाए तो ऐसे ही मुख्य स्रोत रहते हैं जैसे कुआं हुआ, तालाब हुआ, पोखर हुए, इनमें यदि इनको रोका जाए, इनके रख रखाव किया जाए तो जाहिर सी बात है कि हम अपने खेतों में जो नमी की जो समस्या आती है वो खासतौर पर बनी रहेगी। प्राकृतिक रूप से खेत में उगाई बेकार सी खरपतवार जैसी झाड़ियां हैं उससे खेत से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दें। साथ साथ में इस प्रक्रिया में किसान द्वारा खेत में से आकड़ी झड़ियां जो रहती हैं, साथ में पौधे जो बारिश में आने वाले आने से पहले काट दिए जाते हैं उसकी देख अच्छी तरीके से उसको काट दें जिससे खेत में हल चलाने में आसानी होगी। बीज भी अच्छी तरह से उगते हैं, क्योंकि बड़ी खरपतवार जैसे कांटों से हल चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। आप मिट्टी के आधार पर फसलों का चयन हमारे किसान साथी किस तरीके से कर सकते हैं? तो जो रेतीली जमीन है जहाँ पर वहाँ पर बाजरा, तिल और अरंडी की खेती हमारे किसान साथी कर सकते हैं। भूरी रेतीली जमीन जहाँ पर है वहाँ पर मूंगफली, मूंग, मोठ, बाजरा की खेती कर सकते हैं। लाल पीली जगह है जहाँ पर मूंग और मूंगफली की खेती वहाँ पर भी कर सकते हैं। लाल लोमी जमीन जहाँ पर है वहाँ मक्का, गन्ना की खेती कर सकते हैं। मिश्रित लाल काली मिट्टी है जहाँ पर कपास हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। यदि यहाँ के झाबुआ जिले की मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर लाल मिट्टी साथ साथ में काली मिट्टी भी पाई जाती है, तो ऐसे में कपास, मूंगफली और सोयाबीन की खेती हमारे किसान साथी कर सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो रहती है उसमें चावल, कपास, सोयाबीन की भी खेती कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप जो परंपरागत खेती आपकी चली आ रही जो पुरखों द्वारा आप बोते चले जा रहे हैं उस पर भी हमें सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि किस तरीके से हम एक आधुनिक तरीके से, आधुनिक पद्धति से हम अपने खेती करें जिससे हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि हो। बीजों का चयन महत्वपूर्ण रहता है, कृषि उत्पादन में बीजों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे बोगे वैसा काटोगे, यह मम किसानों की समझ में आना चाहिए। किसानों की उन्नत बीज का चयन करना चाहिए, बीज हमेशा अधिकृत दुकान से आपको लेना चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाला बीज सामान्य बीज की अपेक्षा 20 से 25% अधिक कृषि उपज देता है, अतः शुद्ध एवं स्वस्थ प्रमाणित बीज अच्छी पैदावार के आधार पर होता है। ऐसे में हमें बीजों का चयन मुख्य रूप से हमें कर लेना चाहिए। फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र भी अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि देखा जाए कि पिछली साल आपने जिस खेत में मूंगफली बोई थी उस खेत में आप सोयाबीन बोइएगा, और जिस खेत में आपने सोयाबीन बोया था उस खेत में आप मूंगफली लगाइएगा, जिस खेत में आपने कपास लगाया था वहाँ पर मूंगफली करके देखिएगा। तो ये फसल चक्र अपनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है हमारे किसान साथियों के लिए। फसल चक्र को अपनाना और प्रगतिशील किसान की एक पहचान भी होती है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसानों को फसल चक्र अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे। एक फसल एक ही खेत में बार बार नहीं होनी चाहिए, ये हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी बातचीत हो गई है, यहाँ पर हम गीत सुन लेते हैं और एक भीली गीत के साथ मनोरंजन भी करते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में, और महत्वपूर्ण आपने इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातें हैं जो अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, क्योंकि अभी जैसे ही मौसम हमारे बरसात का आएगा, हमारे किसान साथी तैयारी में लग जाएंगे, अगली फसल का जो चुनाव उनको करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि मक्का और सोयाबीन, कपास, मूंगफली खेती अधिकतर की जाती है। तो ऐसे में किसान साथी फसल चक्र का जरूर इस्तेमाल करें, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप नज़दीकी वहाँ पर कृषि विभाग में चले जाइएगा, साथ साथ में KBK भी है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमारे जो वैज्ञानिक बैठे हुए हैं उनसे अधिक संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो बताएंगे। और साथ साथ में आप अपनी मिट्टी का जो परीक्षण किया, अगर हमने शुरुआत में बात की थी तो मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र यानी मृदा स्वास्थ्य केंद्र जो रहता है वहां पर जाकर, कृषि विभाग में ही रहता है, वहां पर जाकर अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य का परीक्षण अवश्य कराएं। भूमि उपचार की अगर बात करें तो भूमि उपचार करने से भूमि की जनित रोगों और कीटों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दीमक एक मुख्य समस्या है, जहां भी दीमक का प्रकोप देखा जाता है वहां पर किनोलफास 1.5% चूर्ण बनाकर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि की बुवाई से पूर्व मिलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ साथ में दीमक को कम करने के लिए खेत में सूखे फसल अवशेष हटा देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कच्चा खाद भी खेत में नहीं डालना चाहिए, जिससे दीमक में काफ़ी हद तक निजात मिल सकता है। तो बुवाई के तरीके आपको पता ही है, सामान्यतः बुवाई आज भी किसानों द्वारा छिड़काव विधि जो रहती है उससे की जाती है, साथ साथ में जिसमें सिंचाई, निराई, गुड़ाई में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बुवाई की सर्वोत्तम जो विधि है कतार विधि रहती है, तो आप किसानों को सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए, जिसमें हम बीज की उचित मात्रा डाल सकें और जिसमें कतार की कतार और पौधे की दूरी निश्चित कर सकते हैं, और विभिन्न कृषि कार्य में भी लाभदायक होता है। तो ये हमारे किसान साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी, और आपको हम सीधा स्टूडियो ले चलते हैं जहां पर हमने कुछ किसानों से बातचीत की, वो किस तरीके से फसल चक्र अपनाते हैं, किस तरीके से अपने खेतों में फसल करते हैं, आइए उनकी बातचीत हम सुन लेते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हमारे साथ सलिया जी डामोर जो कांकड़कुआ गांव के रहने वाले हैं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ अजमेर जी हैं, वो भी कांकड़कुआ गांव के रहने वाले हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तेज सिंह वाकला जी हैं, कांकड़कुआ गाँव से हैं, इनका खेती में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, इनके अनुभवों को साझा करते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं खेती अगर झाबुआ जिले की बात करें, यहाँ के आसपास के इलाकों की बात करें तो पथरीला इलाका है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। हम जानेंगे आज उन विषयों पर जानेंगे कि यहाँ पर हमारे किसान साथी किस तरीके से खेती कर सकते हैं। सबसे पहले सलिया जी आपसे हमारा सवाल है कि यहाँ पर कौन कौन किस किस प्रकार की खेती की जाती है?
1: अभी हम खेती करने के लिए तैयारी कर रहा है, इसमें हमारे मक्का होती है और कपास, यह थुवर भी होती है, मूंगफली होती है, उड़द भी होते हैं, यह बारिश के समय में हमको यह फसल मिलती है, सोयाबीन भी होते हैं, यह फसल हमको मिलती है सर।
0: अच्छा सलिया जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ पर पथरीला इलाका है, आप जानते हैं पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत भी है, हमने देखा भी है, किस तरीके से आप किस अनुभवों के साथ आप खेती करते हैं?
1: बस खेती यही करते हैं हम, सुबह समय बारिश आते है, इसमें कोई रुका पानी, कोई कुआ है थोड़ा बहुत, उसमें यही करते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ एक दो पानी कपास को मिल जाते हैं, ज्यादा पानी की आवत है ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा, हाँ। अगर कपास की, सोयाबीन की अगर बात करें तो किस तरीके से, चूंकि आपका अनुभव हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा अनुभव है, काफी सालों से आप खेती कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये कपास की खेती की जाती है, कैसे की जाती है?
1: ये सर इसमें अपन को बोवनी करते हैं कपास की, इसमें अपन को निंदाई खुदाई करनी पड़ती है और खाद बीज अपन को ये करना पड़ता है, दवाई भी करनी पड़ती है, टाइम टाइम से खाद मिलते हैं इनको, ये यूरिया भी मिलते है, क्या बोलते हैं सुपरफास्ट और डीएफी कपास को, और मक्का तो यहाँ पर यूरिया खाद से ही पक जाती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, ये इनको डीएफी और पोटास खाद मिलते हैं कपास को, इनकी फसल डीएफी खाद से और दवाई से होती है।
0: अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि आप किस तरीके से भूमि को तैयार करते हैं, जब कपास की खेती आप लगाते हैं किस तरीके से इसकी तैयारी करते हैं?
1: इसको अभी खेड़ाई जुताई कर रहे हैं
0: जी,
1: ये तैयारी कर रहा, अपन उसमें हल सलाया, उसके बाद अपन थोड़ा वखरा कर गेर के इनको थोड़ा कहना डेफा डेफी है या भाग तोड़ के थोड़ी कर तैयारी करेंगे, पानी बारिश को गिर गया तो इसके बाद अपन बोनी करनी है सर।
0: अच्छा, यहाँ पर किस किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर, चूंकि लाल भी मिट्टी है, किस किस प्रकार की कौन कौन सी यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है?
1: ये लाल भी है और काली भी है।
0: काली मिट्टी है,
1: काली हाँ, और इसमें भूरी मिट्टी भी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: किसी किसी को भूरी मिट्टी भी है।
0: अच्छा, ढलान होने के साथ क्या क्या आपको खेती किसानी में समस्या आती है आपको?
1: ढलान में तो सर ये पानी की समस्या होती है, इसमें
0: कितने पानी लगते हैं कपास में?
1: कपास में बस ज्यादा पानी वाले कोई दो चार पानी कर देते हैं, नहीं पानी वाले तो बस एक दो पानी में हो जाता है,
0: एक दो पानी में हो जाता है कपास। कपास से कितना मुनाफा हो जाता है? यदि आपको किसान सुन रहे हैं तो कपास की खेती में बीज कहाँ से लाया जाता है और इससे पहले तैयारी क्या की जाती है उसकी?
1: इसमें बीज तो सर ये मिलते हैं काली बाजार से, हम लाते हैं कपास का बीज और तैयारी इनकी ही है, अभी तैयारी में ही है, बैठा है लोग कर रहा है, कोई हर काम जो भी है छोड़ के खेती पे लग गया है, तैयारी कर रहा है, बारिश की समय आ रही है ऐसे करके।
0: अच्छा अच्छा,
1: यही तैयारी चल रही है सर।
0: अच्छा, खेती के अलावा यहाँ पर और क्या हमारे किसान साथी करते हैं, क्या करते हैं?
1: मजदूरी जाते हैं सर।
0: अच्छा, खेती करने के बाद मजदूरी करने के लिए
1: अभी चले? अभी लोग बाग अभी भी बाहर है।
0: अच्छा,
1: बारिश की समय है तो
0: आ जाते हैं,
1: तो कोई एक दो घर पे है, नहीं आने वाले है।
0: अच्छा,
1: कुछ चार महीना करते हैं और वापस दिवाली बाद बाहर चले जाते, दाड़ की दपोड़ी यही करते
0: सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कपास की खेती में सर कितना फायदा आपको हो जाता है?
1: फायदा तो होता है सर, इस साल तो कपास का भाव भी थोड़ा ठीक रहा।
0: अच्छा,
1: तो इस साल तो फायदा लोगों का।
0: कितने महीने में फसल आ जाती है ये अपने लगाने के बाद?
1: ये लगाने के बाद तो करीब कपास को तो छह महीना हो ही जाते हैं।
0: अच्छा, जो किसान हमारे जैसे कपास नहीं करते, उनकी जानकारी नहीं है, उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसकी बीजों की रुपाई की जाती है, किस तरीके से इसको लगाया जाता है?
1: इसको सर उसको लगाना पड़ता है, तैयारी करते हैं अपन कपास करते हैं तो इस जमीन को जब अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, खाद कई अपन ये गाय का ये खाद मिल जाते हैं, ये डाल देता है इसमें कपास अच्छा बनता है
0: जी।
1: हाँ, इसमें ठीक रहता है।
0: अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि अभी हम यूरिया और हम डीएपी की बात करते हैं, पहले जमाने में जो खेती की जाती थी वो शुद्ध गोबर की गाय के गोबर से या फिर जो जैविक पद्धति होती थी उससे हम खेती करते थे, अब क्यों, ऐसा क्या कारण हो गया है कि इसको बंद कर दिया है और इसी पे हम लोग आश्रित हो गए?
1: इसमें सर ये अभी थोड़ा माल मेवा से कम पड़ गया है।
0: हाँ, मवेशी।
1: हाँ, मवेशी तो कम है अभी। क्या है कि पहला तो एक घर में मवेशी करना 20-15 एक एक घर में कहीं दो दो चार चार आठ आठ दस दस गाय रहती थी, अभी है ही नहीं।
0: क्यों नहीं है, क्या कारण है
1: इसका? अभी क्या है, अभी थोड़ा सारा सरनेमान से थोड़ी कमी है तो अभी नहीं है, बस एक दो बैल है, किसी के पास भैंस है।
0: अच्छा अच्छा,
1: सब ये कम है अभी।
0: जैसे छोटी छोटी जमीन है तो अभी भी आवश्यकता पड़ती होगी बैलों की, हल की या
1: तो,
0: बकर की?
1: वो तो पड़े ना सर।
0: अच्छा, और भैंस पालन या बकरी पालन इस तरीके का नहीं करते हैं किसान इसके अलावा?
1: करते ना सर,
0: करते हैं,
1: बकरी भी है भैंस है।
0: कौन सी बकरी पालते हैं, किस तरीके से वो पालन पोषण उसका करते हैं?
1: बकरी तो सर ये देसी बकरी है,
0: देसी बकरी, फायदा होता है इससे?
1: हाँ, इससे होता है।
0: मुर्गी पालन करते हैं?
1: मुर्गी पालन तो ये देसी मुर्गा है घर पे।
0: अच्छा अच्छा, करते हैं।
1: हाँ, है ना।
0: अच्छा, अब जो समस्या जो आप कह रहे हैं कि कपास में हम लोग जैविक खाद यानी गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मतलब क्यों डालते हैं डीएपी यूरिया?
1: वो अभी क्या है सर, लगातार अपन ने डाल दिया तो ये खाद तो डाला बिना तो नहीं होते हैं।
0: अच्छा,
1: अब तो वो क्या है, खाने की अपन को आदत कुछ पड़ गई तो वो खाद डाला बिना तो होते ही नहीं फसल।
0: अच्छा अच्छा,
1: ऐसा है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या अनुभव हैं खेती किसानी में, आप कितने वर्षों से खेती किसानी कर रहे हैं? बीस साल से खेती कर रहे हैं। कौन कौन सी आप फसल उगाते हैं, कैसे करते हैं?
2: मूंगफली
0: भी करते हैं।
2: अच्छा अच्छा, पूरा थोड़े करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, 10-15 किलो।
0: अच्छा कर देते हैं।
2: कपास,
0: इनको आवाज में हमारी समझ, मतलब समझ में नहीं आ रही, तो आप करो
3: तो फिर से स्टार्ट करो या
2: कर ले उसको कंटिन्यू करो। ठीक, स्टार्ट यहीं से जो हमने सवाल पूछे।
0: हाँ ठीक ठीक। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपडी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, हमारे स्टूडियो में हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और हमारे बहुत सारे किसान साथी इसको अच्छे तरीके से सुन भी रहे होंगे कि किस तरीके से झाबुआ जिले के हमारे किसान साथी कैसे खेती करते हैं, कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं अपनी खेती किसानी में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं और इसके बाद और भी हमारे साथी हमारे स्टूडियो में हैं, उनकी भी बातचीत हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो जाइएगा नहीं, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप लोग रेडियो, अपनी बातें।

0: कहीं ना कहीं प्रकार की जगह से मतलब तार जगह के कई तरह से मतलब बैडू है घेरवाली है ना मालमई
1: बैडू है काले जमीन है
0: मुफड़ा पाके जाता है अड़ा तो है अंठुअर से अपड़ा थी गये हूँ कह रहा सोयाबीन
1: है
0: ते फिर बीजी फसल लेवा हरु खेतर से नहीं मळा
1: बीजी फसल लेवा हर खेतर रियो पण आते बीजी फसल हूं लेवा फिर
0: के पानी नी कमी से
1: पानी नी कमी ने
0: अच्छा पानी नी कमी से ते तन मतलब एके एके फसल मळा है
1: के समसाव फसल मळा
0: है ते एनी खेत मतलब आपण फसल ने अलावा फिर हूं से मतलब फिर हूं तो कमावार हूं करी आपो
1: मैं कमावार बस 12 महीना या फिर 6 महीना कमाई कर लिए फिर उजड़िया फसल ना जाए कमे पोटला बांध
0: ले ए कमे ना जाओ ते ते आप तारता बोकड़ा नहीं मळा बोकड़ो डगरू
1: बोकड़ा डगरू ते है पण ता कम से
0: कम कम से ए तो पण हाव पेलु के तम पेलखा आई डुंगर वसिया नी आपडी कान है कि नहीं डुंगर वसिया नी कई नहीं ते आपो कहां सरावाली जाई है कि नहीं
2: समस्या तो
0: समस्या ये भी है हां सरावाली थोड़ी दिक्कत है ते ठीक ठीक तो तन हूँ लगे कि आप अगर बोकड़ा आप पाली है तो बोकड़ा में अपन फायदा से नहीं है
1: बोकड़ा में फायदा
0: है ना और बोकड़ा में फायदा है लेकिन अपन एक असल प्रजाति नी बोकड़ी मळवी जो है कि नहीं हमने अपना बोकड़ा थोड़ा सा हम मादा दुबला पतला से है ना तो अपन थोड़ी असल प्रजाति नी थोड़े असल जे
2: थोड़े कोलादार
0: है थोड़े असल दिनो मां भी ताजू पड़े नीते होय दूध खावा भी अपन लावी ते थोड़ो बढ़िया क्वालिटी नु मळी जाए ते बढ़िया रहे
1: अन
0: अपन अपन डगरियों मां भी अपन इमेज देखी है ना डगरा है अपना डोबा है इनमा भी अपन असल असल खोजदार बढ़िया मळ जाए
2: तो
0: हाँ औलादार अपन मतलब ताजो थोड़ो बनी सके है ना
2: सही है
0: ते सलिया भाई इने अलावा तन हूँ लागे अपन खेती में हूँ हूँ करवू जो जो अब हूँ करी सकी हमने तो अपन मान लो अगर पानी की समस्या है अपनी कन हमने लेकिन अगर पानी की समस्या ये अपनी थोड़ी कम थी जाए तो आप हूँ हूँ करी सकी
2: बस पानी नी समस्या कम थाई जाती है हूं करी सकी है पानी ऊपर है या
0: हां अगली पानी पर से जैसे कि आप वाड़ी है कि नहीं अगर वाड़ी करवा मांगी तो हमने हमने आप भिंडा है ग्वाल फड़ा है काकड़ा है अपन तरबूज है हां
2: यो करे है ना तरबूज तो हमरा सुमा में कम करे है
0: हां नहीं पर कहीं ना कहीं ना करे है मार मार तानो सुकेड़ो लीन गयो है एक जनो तो अपन अंतरविलियन मेरे एक जनो है तिने तरबूज लगाड़िया है
2: सुमा हर उनाला हर
0: हां उनाला
2: नहीं उनाला हर करिया लोग हां हमार पानी नी समस्या है
0: हां जना
2: राम राम नाया
0: हाँ तो जिन पानी की समस्या है तीन हरू आप की सकी के मतलब थोड़ी ये दिक्कत आवे है ना
2: पानी की दिक्कत है ना
0: हाँ देखो हम कृषि में जो अपन जो बातें कर रहे जो हमारी चर्चा चल रही है
3: जी
0: इसमें हम ये चर्चा कर रहे थे कि जो हमारी कृषि के लिए जो हमारे पास कौन कौन सी जमीन है ना उपजाऊ जमीन हमारे पास कौन कौन सी है कि हम आपको की कम कहीं नी जगह आपने कन है ना तो उसमें क्या क्या मतलब हूँ आपको पकड़ी सकी अपनी इस जगह में है ना तो
3: देखो अपनी जगह में हमने अपने कन जगह तो भूरी जगह भी है अने काली जगह भी है
0: हाँ
3: तो जो भाठोड़ी जमीन है जो अपने कन तो भाठोड़ी जमीन में मूफड़ा पाके सके अने इन अलावा जैसे कि अगर मूफड़ा पकड़ सके अड़द पकड़ सके
0: सोयाबीन
3: भी पकड़ सकी
0: बिल्कुल
3: अने फिर इन अलावा जैसे काली जमीन है तो कपा पकड़ सकी अने फिर इन बाद है तो गेहूं पकड़ सकी सणा पकड़ सकी
0: बिल्कुल बिल्कुल ते या आगो आप देखे ये सणा है गेहूं है यू हंगलू बीज आपन मतलब केतरू पड़ी जाए
3: जैसे ये जमीन ऊपर निर्भर करे से
0: अच्छा
3: हाँ जेवी रीत जो जमीन हो जितनी जमीन हो एवी रीते यू आप ओरी सकी
0: अच्छा ते मतलब तार तार हूँ के मतलब बीज कहाँ तू लाऊ जो आप
3: एम तो बीज तो जैसे कि फिलहाल आप अगर अपना घेर मेले लो होए
0: हाँ।
3: तो अपना घेर नो बीज आप वावी सके और सके बाकी अपने कर नहीं होए
0: हाँ।
3: तो अपन फिर मूल लेव पड़े
0: मूल लेव पड़े ते क्या मतलब कदी कदी मन को बात करे कि आप गैसा जीव पकड़ियो ફેર ત્યુંનું ત્યું બી આપણું લગાડી થોડીક તેની ઉપજ થોડી કમ થઈ જાય એમ કરીને વાત કરે.
3: હા, એ વાત તો બરોબર છે, કેમ કે તેનો જો ઉપજ કમ થઈ જાય, કેમ કે જે એના મનકાકન જો બીજ હે તો એના માહિતી જશે 100% મોટું બીજ જો નહીં રહી શકે, એના કન મિક્સ બીજ રે, કંઈક નાનું બીજ રે, કંઈક મોટું બીજ રે. તો નાના બીજનો તેના જો પૌધો હળકો રે તો હળકા પૌધાના કારણે તેનો જો કમ પાક મળે, ઉપજાવ કમ મળે.
0: આપણું ગવર્નમેન્ટ આપણ કેવીકી હે તો કેવીકી થી ભી આપણ વરે સાલ કૈથા કૈથા ધાન આલે હે, તો તમાર શું કેવું છે? અગર તાંતી મળે તીના ધાન ને આપણે લેવું જોવે કે નહીં લેવું જોવે, યા તમને મળે કે નહીં મળે તીનું ધાન?
3: દેખો આજ તક અમારા એરિયામાં જેસે ગ્રામીણ ક્ષેત્ર હે, ગાવડામાં છે, ગાવડામાં એ સારી જાણકારી નહીં મળવા કરે. અને એક ફેર બીજી વાત છે કે જેમ જાણકારી મળે તો ઘણા ખરા લોકો જેવી રીતે પેલો કે ને દૂધ પી ધોળું ઘોળમો ધોળું, તે હું છે કે જો દૂધ નો ગરમ હતો ને દૂધ પીધો ને ત્યાં સરો પડે મર્યો તો પછી ત્યાં પેલા ઘોળમાં પણ ફૂકી ફૂકીને પીએ, એવી રીતે ઘણા લોકો જો વાત કરે તો તેની વાત ને કારણે લોકો સારી રીતે વાત પર ધ્યાન નહીં દે. તો એ જો સરકારી જો લાભ હે અને સરકારી જો મળે બીજ, એના બારામાં લોકોને જાણકારી નહીં મળે, એટલે લોકો તેને જાણકારી લેવા હારે તૈયાર નહીં થાય અને તેના લોકોને એ વસ્તુ નહીં મળવા શકે.
0: બિલકુલ બિલકુલ. તે મતલબ તું એમ કહેવા માંગી રહ્યો કે એક વારી હું છે આપણું પેલખા આપણું ભરવો કરીને લઈ લઈએ અને કદી કદી ફેર તું બીજ અસલ બી નહીં નીકળે, યા ફેર મતલબ આલું આલું એમ કરીને કદી આપણને મળે હોતું નહીં બીજ, હે ને?
3: હા, વાત એમ કે થાય.
0: હા, તો આપણને એમ લાગે કે યાર તાનું ફેર પાક્યું પાક્યું નહીં પાક્યું એમ કરીને આપણું ફેર નહીં યાર કહેતું મળ્યું મળ્યું નહીં થયું થઈ કે નહીં એમ કરીને આપણું તેની પર એક વિશ્વાસ નહીં કરી પાવી,
3: ભરોસો નહીં કરી શકી.
0: ઠીક, અસલ વાત કીધી તમે અહીંયા.

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज की इस शाम में आपका दिल से स्वागत है SN रेडियो पर। मैं हूं आपकी तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये है वो जगह जहां हम सिर्फ बातें नहीं सुनते, हम महसूस करते हैं, जहां जिंदगी के रंग गीतों के साथ और गहरे हो जाते हैं। आज का एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी लिखाई में शोर नहीं पर गहरा असर होता है। एक टीचर जिन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, समझाया। एक राइटर जिन्होंने सिर्फ लिखा नहीं, महसूस करवाया। और एक इंसान जो वर्ड्स के साथ वैल्यूज भी बनाती रही। आज हमारे साथ हैं कल्पना पुरोहित जी। कल्पना जी, SN रेडियो के इस प्यारे से सफर में आपका दिल से स्वागत है।
1: नमस्ते। नमस्ते तनिषा।
0: नमस्ते मैम। थैंक यू सो मच, आपका दिल से स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। चलिए हम अपना सफर शुरू करते हैं और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन से पहुंचते हैं उस जगह पे जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई थी। कल्पना जी, अगर अपनी जिंदगी के सफर को शुरुआत से थोड़े सरल शब्दों में हम सबके साथ शेयर करें तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे आपके आज तक के सफर को?
1: ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। मैं हसमुख, जिज्ञासु और चुलबुली बालिका थी। मुझे कहानियां सुनना और दोस्त बनाना अच्छा लगता था। जब पढ़ना लिखना सीखा तो शहर की लाइब्रेरी की मेंबर बनी और अपने विचारों को लिखने का प्रयास करती। तब मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की रही होंगी
0: जी।
1: पढ़ने में रुचि होने के कारण मेरी वोकैबुलरी भी समृद्ध हुई। लिखने की प्रेरणा स्वतः स्फूर्त थी। स्वतः स्फूर्त मतलब मेरे खुद से आती थी, मुझे इच्छा करती थी लिखने की
0: जी।
1: तब मुझे नहीं पता था कि मेरी यह लेखन यात्रा जीवन पर्यंत चलेगी
0: जी।
1: तो वो आज तक जारी है। मैं लिखती हूँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी तरह की चीजें लिखती हूँ।
0: तो अगर हम ये कहना चाहें कि बहुत बचपन से आपकी शुरुआत हो गई थी लिखाई में और आपका इंटरेस्ट था और लोगों से जुड़ना, लोगों से बातचीत करना, उस एक क्वालिटी ने आपकी लिखाई को और निखारा, तो क्या ये सही होगा मैम?
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम जब लोगों से मिलते हैं, उनके विचारों को जानते हैं, तो हम सिर्फ अपने विचारों तक सीमित नहीं रहते। तब
0: बहुत
1: हम लोगों के विचारों को भी ध्यान में रखते हुए लिखते हैं,
0: बहुत
1: तो उसका फर्क तो पड़ता है
0: जी। इसी से कनेक्टेड मेरा नेक्स्ट सवाल है, क्योंकि आप जो जो करते हैं जीवन में उस सभी का इम्पैक्ट आपकी लेखनी पे, आपकी बोली पे, आपकी सोच पे होता है। तो आपने काफी सालों तक टीचिंग करी है मैम, एक टीचर होने का एक्सपीरियंस आपकी सोच को, आपकी लिखाई को किस तरह से शेप करता रहा?
1: हाँ जी, मैंने नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाया। मैं हिंदी टीचर रही और हिंदी भाषा से मुझे बहुत प्यार था, इसीलिए मैंने हिंदी सब्जेक्ट ऑप्ट किया। छोटे बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनको सिखाना समझाना सरल बनाने के लिए मैंने रोज सीखने वाली बातों को 8-10 पंक्तियों की कविताएं बनाकर याद करवाया और बच्चों ने याद भी कर लिया खेल खेल में। सामान्य टॉपिक जैसे हेल्दी ईटिंग, गुड मैनर्स, एनवायरमेंट, फेस्टिवल्स वगैरह, बहुत से टॉपिक्स आप देखेंगी तो आप पाएंगे कि आप खुद भी सोचेंगी तो बहुत सारे अनगिनत टॉपिक्स होते हैं जिनपे कोई हमें समझा सकता है, बता सकता है या बच्चों को कुछ लर्न करा सकता है। तो ये मैंने उन्हें छोटी छोटी कहानियों के रूप में नैतिक शिक्षा भी दी। मेरा पहला काम था कि छोटे छोटे बच्चों को हम शुरुआत से ही उनको हम नैतिक शिक्षा दें तो एक अच्छा इंसान बनेंगे बड़े होके। वही एक समय होता है जब बच्चा सब कुछ ग्रैस्प कर लेता है
0: जी।
1: ग्रैस्पिंग बहुत अच्छी होती है उस समय। तो बहुत जो 3 से 5 तक के बच्चे थे उनको मैंने काफी साल पढ़ाया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस दौरान मैंने

0: की नई नई कृतियां लिखी, छोटे बच्चों की कहानियां भी लिखी और कविताएं भी लिखी. अच्छा, बड़े बच्चों के लिए मैंने एनुअल फंक्शन की स्क्रिप्ट लिखी. और बड़े बच्चों के लिए नाटक लिखेंगे तो आपके स्क्रिप्ट तो लोग सुनते हैं, मैच्योर लोग सुनते हैं, तो वो उसी पे. और जो सोशल प्रॉब्लम थी उन पे मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी मोस्टली. तो हाँ, और उनका निर्देशन भी किया मैंने, कितने बच्चों को सेलेक्ट करना है, उनकी वॉइस ओवर, ये सब काम मेरे जिम्मे था. तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एज अ टीचर. मैं एक बहुआयामी लेखिका और कवित्री बनी, जो कि शायद मैं गृहिणी होती तो नहीं बन पाती
1: जी.
0: तो मैंने अध्यापिका होने के कारण मैं स्वयं को एक बहुत बहुआयामी लेखिका बना पाई, इसके मैं ऊपर वाले की बहुत धन्यवाद देती हूँ.
1: जी, हम भी ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ आप जैसी एक कवित्री, एक लेखिका, एक टीचर, एक इतनी सुंदर शख्सियत है और आज हम आपको होस्ट कर पा रहे हैं. थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन. और बहुत नेचुरली
0: जी, आपका प्यार है ये तो.
1: जी मैम, मैम आप डिजर्व करते हैं सब कुछ. और आपने बहुत नेचुरली बताया कि कैसे एक टीचर की जर्नी, हर एपिसोड में बाय एंड लार्ज मेरी ये बातचीत रहती है, क्योंकि ज्यादातर जिनको मैंने इंटरव्यू किया है अभी तक, उनका कहीं ना कहीं गाइडेंस से, मेंटोरशिप से, टीचिंग से कनेक्शन रहा है. ये संयोग की बात है. तो हर एपिसोड में मैं ये बात रिइंफोर्स करती हूँ कि कैसे एक टीचर, एक गाइड, एक मेंटोर आपके जीवन को शेप कर सकता है, क्योंकि आप सच कह रहे हैं, बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी जैसे होते हैं. तो उनको जिस तरह से आप ढालना चाहें, अच्छा सिखाएंगे, उनको नैतिक शिक्षा देंगे, एक एक यंग एज से उनको सिखाएंगे, छोटी छोटी बातें प्रीच करके नहीं बट एग्जाम्पल से, खेल खेल में, तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं. तो बहुत इम्पैक्ट होता है टीचर का. एंड आई एम सो थैंकफुल कि हमारे देश में आप जैसे टीचर्स हैं, और ऐसे टीचर्स हैं जिनको मैं आज तक इंटरव्यू करके आई हूँ. बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मैम. अब आगे चलते हैं, हमारा सफर आगे लेके चलते हैं. आपने लिखने की जो आपकी शुरुआत थी, वो आपकी आदत थी कि बस यू नो किताब लिया, अपनी नोटबुक ली और फटाफट कुछ लिख लिया, या ओवर टाइम ये शौक डेवलप हुआ, या पढ़ने से ये आदत ज्यादा डेवलप हुई? क्योंकि मैं अपने अपने श्रोताओं को ये बताना चाहती हूँ कि लेखन की जो जर्नी होती है वो जरूरी नहीं है कि बहुत यंग एज से शुरू हो. कई बार आप एक पढ़ाव पे आके भी जीवन के रियलाइज करते हैं कि कुछ बातें हैं जो आप भी जीवन में लोगों से कहना चाहते हैं. और वहीं कई कुछ लोग होते हैं जो बचपन से पढ़ते आते हैं और उनकी वो जर्नी वहीं से शुरू हो जाती है. तो जैसे आपने कहा, बचपन में लाइब्रेरी जाते थे, वहां टाइम स्पेंड करते थे, तो कैसे आपकी लेखन की आदत शुरुआत हुई? मतलब इसका, इसकी रूट कॉज क्या थी और कहाँ से आपकी पहली शुरुआत हुई, ये अगर आप हमें थोड़ा बताएं.
0: आप शायद माने ना माने, पर मैं बहुत छोटी थी जब मैं लिखना शुरू किया, तो हमको दो दो शब्द राइमिंग वर्ड सिखाया करते थे स्कूल में. वेरी यंग, तो राइमिंग वर्ड्स लिखती थी और फिर मैं उनके साथ साथ टू लाइनर्स भी लिखती थी. स्लेट पे लिखती थी और मिटा, मम्मा को कहती थी, मम्मा मेरे लिखो, ये लिखी. मम्मा कहती बहुत बढ़िया. मम्मा बिजी रहती थी अपने काम में, तो मैं कहती और लिखो बेटा, बहुत अच्छा लिखा. तो मैं कहती हूँ स्लेट में तो जगह ही नहीं है. मम्मा कहती तो आप, कितना ईजी होता है स्लेट में, तो आप उसको मिटाओ और फिर नया लिख दो. तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी है ही नहीं उस समय की, क्योंकि अगर शायद इतनी समझ होती कि मैं आगे तक भी कभी लिखूंगी तो उनको मैं संभाल के रखती, तो पता लगता कि एक 5-6 साल का बच्चा लिख भी सकता है. खैर वो देखिए, उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है.
1: जी, जी.
0: पर मैंने खुद से खुद को लिखने के शौक से लेखन शुरू किया और अब वो आदत सी बन गई है. मेरे को कुछ भी विचार आते हैं तो मैं लिख लेती हूँ. कभी कभी मेरे पास बाध्यता होती है कि इस टॉपिक पर लिख के आपको देना है, एक दिन में देना है या दो घंटे में देना है, तो तब उस बाध्यता में भी लिखती हूँ और मैं अपने शौक से भी लिखती हूँ. कोई मेरा लिखने में एक आदत बन चुकी है.
1: जी जी, जब लिखना प्रेशर नहीं रहता, एक एहसास बन जाता है, एक फीलिंग बन जाता है, तभी वर्ड्स एक्चुअली जिंदा लगते हैं, वो आपको फील होते हैं, आपको टच करते हैं. बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सही कहा आपने.
0: एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, पढ़ना बहुत जरूरी है. कोई भी टॉपिक पे आप जरूर पढ़िए. जिसको भी लिखने का शौक थोड़ा भी है तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि किसी का सुना पढ़ा और खुद ने लिख दिया. नहीं, आप उस टॉपिक पे पढ़िए. मैं तो इन लोग बच्चों के लिए कह रही हूँ जो कि लिखने के शौकीन होते हैं पर समझ नहीं आता कि क्या लिखें, तो हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहिए उनको. मैं ऐसा समझती हूँ।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रीड रीड रीड एंड रीड टिल मोर। जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रीड रीड रीड एंड रीड टिल मोर एंड ओनली देन दैट यू कैन राइट।
0: यस,
1: बहुत फेमस एक बुक है, तो इससे ये बातों का सफर हमारा चलता रहेगा। बट दोस्तों, इसी सफर को थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और गहरा और थोड़ा और हसीन बनाने के लिए एक सॉफ्ट सा सुकून से भरा गीत आप सभी के लिए। वेलकम बैक कल्पना जी।
0: हाँ जी बोलिए
1: जी। कल्पना जी, आपकी लिखी हुई किताबें आपकी जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रही हैं, आई एम श्योर वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपकी सोलो पोएट्री कलेक्शन परिचय कल्पना से और बच्चों के लिए लिखी हुई नर्सरी राइम मीठे बोल, इन दोनों को लिखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा टच कर पाए तो हमें बताएं मैम।
0: जी बिल्कुल, मैंने कविताएं तो बचपन से लिखी और बहुत कविताएं लिखी, समय समय पर, हर त्योहार पर, हर ओकेजन पर, मतलब सुख में दुख में, किसी घर वाले के लिए, किसी के जन्मदिन पर, किसी के विवाह की वर्षगांठ पर मैंने बहुत कविताएं लिखी। पर कुछ मेरी खास पसंद की जो कविताएं थी या जो मेरे को लोगों ने जिनकी बहुत सराहना की थी, उन कविताओं को मैंने फिर सोचा संकलित करवा लेती हूँ। तो मैंने उसका संकलन करवाया और जब वो पुस्तक के रूप में मेरे सामने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप खुद समझ सकती हैं, कभी आपने भी अपना कुछ प्रिंट करवाया हो, छपवाया हो, तो आपको उतनी ही खुशी होती है जैसे कोई हमारा नया बेबी आया है दुनिया में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और छोटे बच्चों की जो मैंने मीठे बोल लिखी थी वो विद्यालय के लिए ही थी, तो क्योंकि उसको बाहर प्रिंट कराने की मुझे अनुमति नहीं थी स्कूल से, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे लिखती थी और बहुत सारी कविताएं थी छोटे बच्चों की, पर कुछ थी जो सिलेक्टेड कविताएं वो उसको हर क्लास के बच्चों को, मतलब एलकेजी से और प्रेप तक के बच्चों को लर्न कराई जाती थी वो। और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं बता नहीं सकती आपको, शायद आप कभी लिखे तो आप
1: समझ सकते हो।
0: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बच्चे याद करके आपको सुनाते हैं, अपनी फैमिली में सुनाते हैं, उनके पेरेंट्स आके आपको कहते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी कविताएं याद कराई हैं आपने बच्चों को, तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी लिखी हुई बात और छपी हुई बात आई थिंक यूनिवर्स को चली जाती है सीधा, क्योंकि वो इटर्नल हो जाती है इन टाइम। और कभी भी वो बुक जब कोई भी इंसान, कोई भी पीढ़ी का इंसान उसको उठा के पढ़ता है तो वो वही एहसास फील करता है जो कभी हमने लिखने के समय उससे फील किया हो। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ मैम कि बहुत ही आपके दिल के करीब है ये बुक, क्योंकि हर लेखक की पहली लेखनी मेरे हिसाब से तो हर लेखनी लेखक के लिए बहुत स्पेशल होती है, बट पहली तो बिल्कुल बच्चे जैसी होती है क्योंकि तो मैं समझती हूँ मैम बिल्कुल। आप कविता, गीत, कहानी, नाटिका, जैसे आपने बताया सब जॉनर्स में लिखा है आपने, इतनी वेरिड फॉर्म ऑफ राइटिंग की आपकी कैपेबिलिटीज हैं, तो क्या लिखने से पहले कोई प्लानिंग रहती है या फिर आप मन से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कि जो मन में आया वो लिखना है, या कोई एक प्रोसेस है आपका लिखने का, अब जाके इस स्टेज पे आके क्या कोई प्रोसेस है आपका लिखने का, या इट जस्ट फ्री फ्लोइंग की मतलब जो विचार आए वैसा लिखा, कैसा क्या प्रोसेस है मैम आपके लिखने का, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स में आप लिखते हो, सब फॉर्म्स में अलग एक टेक लेना पड़ता है आपको लिखने से पहले, चाहे कहानी हो, चाहे नाट्य शास्त्र हो, चाहे कविता हो, चाहे गीत हो।
0: जी बिल्कुल, जैसे एक तो जो आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की हैं, या जो इतना पेड़ कट रहे हैं उससे है, मतलब जो समसामयिक विषय होते हैं, समसामयिक विषय मतलब जो अभी एट प्रेजेंट जो घटित हो रहा है सब आज के जमाने में, उन पे किसी पे मेरा मन करता है तो मैं लिख लेती हूँ, मेरे पे उसपे बाध्यता नहीं होती कि आप इस पे लिखिए, पर मैं अपनी मन से लिख लेती हूँ। लेकिन कभी कभी जब मैं बच्चों के लिए लिखा करती थी तो मेरे पे बाध्यता होती थी कि बच्चों को इस टॉपिक, मैं खुद ही सजेस्ट करती थी टॉपिक कि इस टॉपिक पे इस बार लिखेंगे, जैसे बच्चे पटाखे और होली और इनके साथ खेलते हैं तब तक तो ठीक है, पर वो अपने आप को नुकसान भी बहुत पहुंचा लेते हैं, पतंग उड़ाते हैं तो हाथ पाथ कट जाते हैं कभी बच्चे, और मतलब बहुत घायल हो जाते हैं, दीपावली पर भी बच्चे घायल हो जाते हैं पटाखों से, और होली के रंग में भी बहुत कुछ मिला देते हैं जिससे, तो ये एक सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ मैं
1: जी।
0: तो इस तरह की चीजें लिखती हूँ जब मेरे पास खुद ही बाध्य हो जाती हूँ कि मुझे इस पर लिखना है, तो मैं उससे संबंधित सारा लिखती हूँ, और जब अपने मन से लिखती हूँ तो मैं किसी भी टॉपिक पे लिखती हूँ और मेरे को खुशी देता है लिखना। आप भी सोचेंगे इतनी खुशी देती है लिखना तो आप इतनी फेमस कवित्री क्यों नहीं हुई।

0: मैम उसका कोई, मैं नहीं मानती कि उसका कोई मेजरमेंट होता है मैम, सच में पक्के तक होता है। जी,
1: आज सब प्रेमचंद को पढ़ते हैं, महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं, तो मैं कभी कभी इनको कहती, मेरे हस्बैंड को कहती हूँ कि देखिए मैं कितना अच्छा लिख लेती थी, अब पुराना अपना देखती हूँ संग्रह तो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इन लोगों की तरह से फेमस हो जाऊं। लेकिन अब इस उम्र के इस पड़ाव पे आके लगता है कि मैं ऐसा कर सकती थी। पर ठीक है, जो जिसका जो रहता है ना,
0: जी बिल्कुल,
1: मेरे कुछ हैं बहुत आप जैसे प्यारे प्यारे लोग।
0: हाँ नहीं, हम तो बहुत पसंद करते हैं और हम चाहेंगे कि आप बहुत सारा और लिखें, और अभी भी बहुत समय है आपके पास वहां तक पहुंचने का, मैं तो ये मानती हूँ।
1: मैं तो जीवन पर्यंत लिखना चाहती हूँ मैं तो।
0: बिल्कुल मैम, और हम पढ़ने के लिए रेडी हैं, हम सारे हम सब पढ़ने के लिए आपके लिए उत्सुक हैं। आप जो लिखें और लिखते चलें और आपकी लिखाई वहां तक पहुंचे जहां आप चाहते हैं, उस शिखर पर आप पहुंच पाए। मैम कुछ है जो आप हमारे लिए पढ़ सकते हैं अभी, अगर आप पढ़ना चाहें तो कुछ छोटा सा, एनीथिंग?
1: मैं एक छोटा सा तो नहीं, थोड़ा सा
0: बिल्कुल बिल्कुल, समय है हमारे पास मैम, आप पढ़िए।
1: मैं एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ। देखिए आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा।
0: जी जी,
1: वैसे तो मेरे पास बहुत बड़ा संग्रह है, लेकिन मैं इसको स्पेशली पढ़ना चाहती हूँ ताकि बच्चे सुने, बड़े सुने, जिसको भी तकलीफ है, जो भी तकलीफ में है।
0: जी,
1: आयु कोई भी हो, कभी कभी परिस्थिति मन वांछित नहीं होती।
0: जी,
1: अपने अथवा किसी अन्य की भूल के कारण हम किसी विपदा में गिर जाते हैं, तब किसी पर भी विश्वास करने से डरते हैं, किंतु कोई भूल इतनी बड़ी नहीं होती कि माता पिता क्षमा न करें या हमें संभल न दें। यह विशेषतः उन विद्यार्थियों के लिए है जो भावुकतावश और दुर्भाग्यपूर्ण जो भावुकतावश घोर दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य करने की ठान लेते हैं, उलट सुसाइड कर लेते हैं और भी बहुत कुछ गलत कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो मैं उसके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बहुत जरूरी है।
1: कोई भी हो सकती है, किसी को नौकरी में तकलीफ हो सकती है, तो मैं बता,
0: बिल्कुल मैम बिल्कुल जी।
1: मेरी कविता है, तू जिसे मन की कहेगा, तू विफल अथवा विकल हो विरुद्ध सब तू विफल हो, बेवचन तू न डिगेगा, भाव सब वश में करेगा, साथी छोड़े साथ तेरा, सामने हो तम घनेरा, स्वप्न क्या तू न बुनेगा, यत्न सारे छोड़ देगा, यह परीक्षा की घड़ी है और चुनौती भी बड़ी है, तो क्या कुंठित हो रहेगा, लक्ष्य से मुख मोड़ लेगा, संभवतः आज भाग्य अस्त होगा, मार्ग कल प्रशस्त होगा, कठिनाइयों को जीत लेगा, विश्वास जब स्वयं पर रखेगा, ऋण है तुझ पर माँ पिता का, पथ देखना मत तू चिता का, असफलता से डरेगा तो सफल कैसे बनेगा, तेरा निर्णय हो न घाती, तू किसी की भी है थाती, आत्म मंथन जब करेगा तू जनक से जा कहेगा, अपने पिता से कहेगा, जनक मतलब पिता
0: जी,
1: जिसने सृजन तेरा किया है, रूप रंग जिसने दिया है, अपनी व्यथा से जब थकेगा, जननी से तू मन की कहेगा, जो है तेरे पथ प्रदर्शक, भाई बंधु गुरु शिक्षक, इनसे दुख साझा करेगा, तू अकेला न सहेगा, मत समझ कोई नहीं है, तेरे सब अपने यही हैं, संशय उन्हें अपने कहेगा, उनकी कही भी तू सुनेगा, नेह का रस तिक्त घट वह, दया के सागर का तट वह हृदय की सब सुनेगा, प्रभु से तू मन की कहेगा, इनका विकल्प तू ढूंढना मत, मस्तक रहे इनके लिए नत, इनके लिए ही सब सहेगा, देवचन तू न डिगेगा, रिक्त कर अपना मनस्तु, छोड़ सारे प्रश्न वस्तु, तिमिर जब मन का छटेगा, पथ तुझे उज्जवल दिखेगा, देवचन तू न डिगेगा, देवचन तू न डिगेगा। थैंक यू,
0: बहुत बहुत बहुत सुंदर मैम, और मतलब इतना सही और इतना रेलेवेंट है ये समय के लिए, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, जयपुर में बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, और हम ये समझें कि हमारा जीवन से वह हमारा नहीं है, सच में उसमें ऋण है, और उस ऋण बंधक से अगर हम इस जन्म में मुक्त होने की कोशिश करेंगे तो अगले जन्म हम फिर वही सहेंगे और उससे और ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ सकती है। तो अपने आप को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने जीवन को एक एक गिफ्ट समझें जो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपसे बंधे हुए बहुत सारे लोग जुड़े हैं उस जीवन से। तो ऐसे स्टेप्स उठाने से पहले प्लीज प्लीज ऐसे प्रेरणात्मक कवियों को सुने और अपने जीवन को थोड़ा सा तीरथ ले लें, क्योंकि वो सिर्फ आपका नहीं है, आपका ऋण है सब लोगों के लिए। बहुत ही सुंदर कविता मैम, थैंक यू सो मच।
1: मुझे लगा मैं शेयर करूं कि नहीं करूं, पर मुझे लगा ये संदेश रेडियो के थ्रू बच्चों तक बड़ों तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मुझे लगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब हम एक गीत की तरफ चलते हैं, बहुत सुंदर बातों का सफर चल रहा है। आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग एक खूबसूरत सा गीत इन खूबसूरत बातों के बीच में, जो सिंप्लिसिटी और पॉजिटिविटी से भरा है।

0: वेलकम बैक कल्पना मैम।
1: हाँ जी
0: जी, हमारी बातों के सफर को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। आपका जो सफर है वो सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को सोशल वर्क से भी बहुत जोड़ा है और काफी एक्टिव रही हैं। तो आपका लिखना और आपकी समाज सेवा, इन दोनों के बीच का जो गहरा रिश्ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ लेखक एक बहुत ही सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग होता है और वो लिखना तभी शुरू करता है जब कहीं ना कहीं उसको समाज की चीजें अफ्लिक्ट करती हैं। पहले तो जर्नी शुरू होती है पर्सनल राइटिंग से और फिर वो पर्सनल से और इम्पर्सनल होके समाज तक पहुंचती है। तो क्योंकि आपको कोई चीज लगी है, कुछ जैसे अभी आपने अपनी कविता पढ़ी सुसाइडल अटेम्प्ट्स के ऊपर, तो उसी तरह कैसे आपके लिखने से जो समाज सेवा का सफर है वो कनेक्ट हुआ और उससे आप अपने लेखन से बाहर निकल के एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर चेंज लेके आ सके, इसके बारे में अगर आप हमें बताएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल अनिशा जी, जो समाज सेवा के अनुभव होते हैं वो लेखन को प्रामाणिक बनाते हैं। मतलब मेरे जो भी अनुभव हुए मुझे समाज सेवा, और समाज सेवा मैं आपको बताना चाहती हूँ सिर्फ इतना ही नहीं है कि जिनके पास वस्त्र नहीं है या जो दो समय का भोजन नहीं कर सकते उनको भोजन देना या वस्त्र देना, मैं इसको समाज सेवा में नहीं मानती, क्योंकि उसके लिए तो सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स चलाती है। समाज सेवा है कि उन डिप्राइव लोगों को या उन कम पढ़े लिखे लोगों को जागरूक बनाएं, मैं उसको समाज सेवा मानती हूँ। तो मैं लोगों को जागरूक बनाने के लिए क्या है कि जो जिनको नीड है, जिनको आवश्यकता है, जिनको जरूरत है, उनको उनकी आवश्यकताएं और उन जरूरतें पूरी कौन करेगा, जो बाकी का समाज है, जो जिसके पास जो समृद्ध है
0: जी।
1: तो जो ये समाज सेवा में ये भी आता है कि हम समृद्ध लोगों को उन लोगों की परेशानियों से अवगत कराएं, तो शोषित वर्ग की पीड़ा से अवगत कराते हैं हम अपनी रचनाओं द्वारा। मैं जितना कर सकती हूँ अपनी रचनाओं द्वारा उनको बताती हूँ पीड़ा, और उससे बहुत फर्क पड़ता है, लोग आगे आते हैं, मदद करते हैं। तो समाज सेवा में एक बहुत बड़ा मतलब क्राउड जुड़ जाता है
0: जी।
1: तो समाज सेवा में लेखन और समाज सेवा मेरी तो हैंड इन हैंड चलती है, मतलब साथ साथ चलते हैं। लेखन और समाज सेवा दोनों ही समाज को बेहतर बनाने के सशक्त माध्यम है, दोनों ही मिलकर जागरूक बनाते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, कैसे लेखन से भी जी, लेखन से भी फंड रेजिंग होती है, लेखन से भी लोग उस पूरे आपके ऑब्जेक्टिव से जुड़ सकते हैं और आगे चल सकते हैं, और कैसे वर्ड्स जब एक्शन से जुड़ते हैं तो इम्पैक्ट और स्ट्रांग हो सकता है। सब बिल्कुल सही है, लेखन की पावर एक अलग ही पावर है, कलम की पावर एक अलग ही पावर है अगर सही यूज की जाए जी।
1: और ये तभी लेखन में ताकत तभी आएगी जब आपने ग्राउंड लेवल पे कुछ काम किया होगा। अगर आपने सचमुच जो शोषित वर्ग की तकलीफें देखी होंगी तभी आप लिख पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, इसलिए मैं सोचती हूँ कि समाज सेवा और लेखन मेरे तो साथ साथ चले हैं, और मुझे लगा कि कुछ उसका असर भी हुआ है।
0: जी जी, तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इस थॉट से ही आई थिंक कहीं ना कहीं यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि आपकी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, और उस थॉट से ही इतना चेंज आ जाता है, और फिर आप तो इतना कुछ कर रहे हैं इतने सालों से, और उसी करने के से चलते आपको कई अवार्ड समय समय पर मिले हैं मैम, कई रिकॉग्निशंस मिले हैं, जैसे कि जी राजस्थान वुमेन्स अवार्ड, पारिक प्राइड अवार्ड, और वुमन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए कई सम्मान। तो ये अवार्ड्स आपके लिए क्या मायने रखते हैं, इतने इस जीवन के सफर में यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या लगता है आपको कि आपने ये सब पाया? अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप सोच रहे हैं कि वहां नहीं पहुंचे प्रेमचंद जी एंड विनोद कुमार शुक्ल जी, बट इतना आपको जो सम्मान और प्लेटफॉर्म मिला है, ये आपको कैसा फील होता है और क्या आपको अनुभव करते हैं आप इस यहाँ तक पहुँच के?
1: हाँ तनुषा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अवार्ड मिलने का मतलब आपके कार्य को पहचान मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला, मुझे चुना गया कि आप तो इतना अच्छा गाती हैं, इतना अच्छा लिखती हैं, मैं आपको आपका नाम मेरे को भेजिए, आपका परिचय, और इस बार आपको अवार्ड दिलाएंगे हम। कहीं कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई हमें मिल गए और उन्होंने पहचान लिया, मैंने तो कभी ये प्रयास भी नहीं किया था, पर हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तो देखिए, जब आपको सम्मान मिल जाता है तो लोगों की आपके प्रति, उनका भी सम्मान बढ़ जाता है आपके प्रति
0: जी।
1: तभी सम्मान देने लगते हैं। ये एक ऐसी कड़ी है जो एक के बाद एक जुड़ती जाती है, और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगा कि मैं जो करती हूँ वो लोगों को पसंद आता है, लोग उसकी सराहना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हम अपने काम में खरे उतरे। अवार्ड तो ले लिया, हम बड़े खुश हैं, लेकिन हम उससे ये ना हो कि हम अपने पथ से थोड़े विचलित हो जाएं। हम अपना अच्छा कार्य करते रहें और हम अपने काम में हमेशा खरे उतरे, मैं ऐसा सोचती हूँ। और समाज में प्रतिष्ठा मिलना तो सभी को अच्छा लगता है।
0: जी जी, जैसे कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इट्स ट्रू। एंड मैम, अगर आपने बताया आप गाते भी हैं, जैसे हमने पढ़ा भी कि आप गीत भी लिखते हैं, तो कोई गीत, अगर मैं ज्यादा फरमाइश कर रही हूँ बट अगर कोई गीत हो जो आप हमारे साथ गुनगुनाएं और हमारे श्रोताओं को सुनाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, छोटा सा कोई भी पंक्ति।
1: तनिषा, दो पंक्तियां सुना दूंगी, तीन चार पंक्तियां, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ कि मुझे लेरिंजाइटिस, बिकॉज मैं टीचर थी
0: जी,
1: तो टीचर थ्रोट बहुत कॉमन है।
0: बिल्कुल,
1: पहले बहुत अच्छा गाया करती थी मैं, अपनी कॉलेज की और स्कूल की स्टार सिंगर थी
0: जी,
1: पर ये लेरिंजाइटिस होने के बाद मैं 20 साल तक गा नहीं सकी।
0: ओ,
1: बहुत तकलीफ में रहा मेरा गला और मेरा मन भी, फिर मेरा मन भी, क्योंकि मैं बचपन से गाने की शौकीन थी। तो मैं आज आपको, अब मैं थोड़ी सी बेहतर हुई हूँ
0: जी,
1: मैं अपने इस जैसे भी गले में मैं आपको दो पंक्तियाँ सुनाती हूँ।
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
1: जी चाहता है गुन

0: दर्पण के आगे बैठी रहूं।
1: सॉरी तनुषा, आप इसको बिल्कुल मिटा देना क्योंकि मुझसे
0: नहीं
1: नहीं गाया जा
0: नहीं
1: रहा।
0: बहुत सुंदर है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मिटाऊंगी, क्योंकि इतना सुंदर गला और इतनी सरलता, इतनी सच्चाई आपकी आवाज में मैम, बहुत ही सुंदर लगा मुझे गीत, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए गाया, बहुत बहुत थैंक यू मैम।
1: थैंक
0: अगर सिंपलिसिटी की आवाज होती तो वो आपकी होती। जी, आगे चलते हैं। आज के
1: यू।
0: युवा को लिखना बहुत पसंद है, सब लिखना चाहते हैं, सब सोशल मीडिया से अफ्लिक्टेड हैं, देखते हैं, सबको कुछ ना कुछ, सबके पास अपनी एक आवाज है, पर कहीं ना कहीं कोई डाउट्स रहते हैं लोगों को कि हम क्या अच्छे लेखक बन पाएंगे, या क्या हमें हमारी मन की बात शेयर करनी चाहिए, लोगों का जजमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि आप चिल्ड्रन हार्ट, बच्चों के दिल से, चिल्ड्रंस हार्ट इससे जुड़ते हैं, आप युवा से जुड़ते हैं, तो आप ऐसे बच्चों के लिए जो लिख तो सकते हैं, लिखना चाहते हैं, बट थोड़ा डरते हैं, थोड़े डाउट में रहते हैं, उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो युवा लिखना चाहते हैं या जो बच्चे लिखना चाहते हैं, मैं उन्हें कहूंगी कि जिस विषय पर लिखने का मन है उसके बारे में जानकारी हासिल करें, पढ़ें, बहुत पढ़ें और अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं। लेखन के लिए आपको बहुत सारे शब्द आने भी आवश्यक हैं, है ना? और अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो उर्दू शब्दों का प्रयोग करें, और हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी शब्दों का प्रयोग करें। आपको नहीं आते तो आप डिक्शनरी देखिए, नहीं तो गूगल सर्च कर लीजिए, क्योंकि राइमिंग वर्ड्स हर जगह मिलते हैं और कविताएं हैं वो उसमें अधिकतर राइमिंग वर्ड्स का ही प्रयोग होता है, तो आप उसमें से देख के सीख सकते हैं। थोड़ी मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी आपको, जो कि बहुत लंबा समय नहीं लेती है, अगर आपका आपकी लगन है लिखने के प्रति और आप अपनी भाषा को परिष्कृत करके जब आप अपनी नॉलेज के साथ लिखेंगे तो मैं कहूंगी कि आप बेधड़क लिखें, क्योंकि सच्चा प्रयास जो होता है वो हमेशा सराहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप लिखें खुद ही, आपको हमको है ना, हम खुद ही अपने जज सबसे अच्छे होते हैं, हमें पता लग जाता है कि ये हमने सही लिखा, अच्छा लिखा या नहीं लिखा। तो जब आप खुद जज बनते रहेंगे ना तो आप परिष्कृत होते चले जाएंगे और आपकी दुनिया भी बहुत सराहना करेगी। मेरा तो ये मैसेज है बच्चों के लिए।
0: बहुत बहुत सही और सटीक मैसेज है मैम कि बहुत सिंपल यात्रा नहीं है ये, प्रयास करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जो लेखनी आएगी उसमें वो रस आएगा, जो आप भी पढ़े तो आपको अच्छा लगे और दुनिया पढ़े तो खैर आपका मैसेज पहुंचे। और ये बहुत सिंपल यात्रा नहीं है, बट बहुत सिंपल हो सकती है अगर आप अपने मन से इससे जुड़े और थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा परिश्रम करें। कुछ भी चीज परिश्रम के बिना नहीं मिलती। बहुत ही सटीक और सुंदर बात कही आपने। अब इसी से कभी कभी कुछ बातें मेरे दिल को इतना छू जाती हैं। इसी फीलिंग के साथ अब हम सुनते हैं एक गीत जो होप और भरोसे से भरा हो।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई,

0: और बहुत कुछ बनने की, पारितोषिक मिलने की, नानी बनने की
1: जी।
0: और ऐसे बहुत से मौके आए जब मैं बेहद खुश थी, तो मैं गिना नहीं सकती आपको कि मैं कब बेहद खुश थी। और रिग्रेट तो देखिए, हम लाइफ में शायद दिन में कभी ना कभी हम रिग्रेट, ओह हमने ये नहीं किया, उसका देखो उसने मुझे कहा था हेल्प करने के लिए, मैं भूल गई। तो हम छोटी छोटी रिग्रेट्स की बात करें तो रहती है हमारे जीवन में लगातार, और खुशियां भी लगातार रहती हैं। तो कोई बहुत बड़ी रिग्रेट तो मुझे लगता है कभी मैंने किसी स्टूडेंट का दिल दुखाया हो। मैं हमेशा मन में सोचती हूँ, ऊपर वाले से मैं माफी भी मांगती हूँ, कोई स्टूडेंट का मैंने अनजाने में ऐसा सबके सामने डांट दिया हो, जो कि बहुत भावुक किस्म का बच्चा हो और मुझे मैंने ध्यान ना दिया हो और उसका दिल दुखा हो, तो वो शायद मैं उसके लिए रिग्रेट कभी कभी जरूर करती हूँ कि अगर मैंने कर दिया हो, मेरी नॉलेज में तो नहीं है
1: जी,
0: पर टीचर कर सकती है। देखिए
1: आपका हर जवाब मुझे इस यकीन की तरफ ले जाता है कि आप कितनी सुंदर, कितनी सरल और कितनी सुलझी हुई शख्सियत है मैम। बहुत बहुत अच्छा एहसास है कि कोई इतना सोचे, और बहुत बहुत अच्छा लगा ये जवाब सुन के, बहुत ही प्यारा जवाब था आपका। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो लोग लाइफ के किसी भी फेज में थक गए हैं, रुक गए हैं, अपने आप से परेशान हैं, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो उन्हें बाहर नहीं आने दे रहे किसी एक समस्या से, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सेंसिटिव हैं जैसा मैंने आपको समझा है, और आप ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइक को समझते हैं, बच्चों के साथ डील किया है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंसान कैसे कभी कभार ऐसी जगह में फंस जाता है जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आपका कोई मैसेज है मैम।
0: मेरे पास बिल्कुल मैसेज है, अभी तो मैंने आपको एक कविता सुनाई थी पढ़कर, उसमें तो बहुत भरपूर मैसेज था। और दूसरी बात ये कि कभी हारिए मत, आपको जीवन मिला है, वो अद्वितीय चीज है, जो मतलब एक बार जब जीवन मिला है तो उसको पूरा जी के जाइए, बीच में मत छोड़िए। आपके बहुत सारे काम हैं जो आप खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए जीने की सोचिए, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने मित्रों और समाज के लिए। आप हारिए मत, बैठकर आप अगर थक चुके हैं तो बैठकर मनन चिंतन कीजिए, उसका जवाब आप ही के पास है। अगर ये सोचते रहेंगे कि अरे अब तो मेरा कुछ नहीं बचा, मैं खत्म हूँ, तो आप ये सोचिए कि जब ये सोच सकते हैं तो आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि मैं बहुत सबल हूँ, मुझे भगवान ने हाथ पैर आंख नाक सब इतना पूरा बनाया है, मैं पूर्ण हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ लोगों की तकलीफें, मैं जैसे मैं दुखी हूँ, मेरा कोई नहीं सुन रहा, तो मैं जाके किसी की तकलीफ भी सुन सकता हूँ। आप वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, आप अपना मन लगा सकते हैं, और इसके आपको तरीके खुद ढूंढने पड़ेंगे। तकलीफ सबके जीवन में आती है, लेकिन सब अपने मन को समझाते हैं और उन तकलीफों से बाहर निकलते हैं। जीवन को समाप्त करना कोई, मैं सोचती हूँ कोई वो नहीं है, जवाब नहीं है हमारी तकलीफों का। जी बिल्कुल, हमारे ये जवाब नहीं है हमारी समस्याओं का, ये समाधान नहीं है। तो हमें कुछ भी करना, सोशल सर्विस कीजिए, लिखिए, बहुत तकलीफ में कोई सुन नहीं रहा, आपके माँ बाप भी कहते तुम गलत हो, आपके फ्रेंड्स भी कहते तुम गलत हो, तो मान लो ना कभी उनकी कि तुम गलत हो
1: जी।
0: ऐसा थोड़ी है कि तुम इतने, तुमको पूर्ण बनाया है तो तुम्हारी बुद्धि भी पूर्ण है
1: जी।
0: नहीं होता ऐसा, तो आदमी को खुद सोचना पड़ता है, लड़की हो, आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, बैठ के चिंतन मनन करें और अपने आप को सोचे मुझे ईश्वर ने कितना अच्छा बनाया है, मैं दुनिया का एक अनोखी वस्तु हूँ, अनोखी चीज हूँ जो मैं इस धरती पे हूँ
1: जी।
0: नहीं तो देखिए डॉग्स भी घूम रहे हैं, कैट्स भी घूम रही हैं, गाय भी घूम रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं मनुष्य हूँ,
1: ये
0: बहुत बड़ी चीज है। अगर जिस दिन ये समझ में आ जाएगी ना, उसको ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि मैं अब क्या करूँ, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मंथन करें, आत्म मंथन करें, अपने साथ बैठे,
0: बिल्कुल आत्म मंथन करें,
1: रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिल
0: गया है। बिल्कुल, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: ऐसी पंक्ति है जो आजकल हर बच्चा बच्चा बोलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही हौसले से भरे शब्द थे आपके। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने सिर्फ एक राइटर से बात नहीं की, हमने एक सोच, एक सफर और एक सच्ची जिंदगी को महसूस किया। कल्पना पुरोहित जी जैसे लोग ये याद दिलाते हैं कि लिखाई सिर्फ शब्द नहीं होती, वो इंसान को इंसान

0: से जोड़ने का जरिया होती है। कल्पना जी आपका दिल से शुक्रिया, इतनी प्यारी, इतनी सीधी, इतनी गहरी बातें हमसे शेयर करने के लिए।
1: थैंक यू तनुषा, धन्यवाद, शुक्रिया। मैं क्या बोलूं, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको सभी अच्छे लगते हैं।
0: नहीं मैम, आप सच में बहुत प्यारे हैं और मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती हूँ आपसे पर्सनली मिलने का इस एपिसोड के बाद। इतनी प्यारी बातें हमने की तो मैं आपको थोड़ा और जान पाई, थोड़ा और झांक सकी आप में, और बहुत ही सुंदर एक शख्सियत मुझे नजर आई। तो थैंक यू सो मच मैम।
1: थैंक यू तनुषा।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो शो जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास है और बेहद संगीतमय है, क्योंकि हमारी स्टूडियो गेस्ट हैं डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ, एक ऐसी प्रतिभाशाली कलाकार जिनका सफर संगीत, शिक्षा और क्रिएटिविटी, इन तीनों का एक खूबसूरत संगम है। डॉक्टर शिखा ने न सिर्फ पीएचडी इन म्यूजिक वोकल है, जिनका शोध राजस्थानी मांड गायकी पर केंद्रित रहा, बल्कि प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर, दयालबाग से पोस्ट ग्रेजुएशन और विक्रम यूनिवर्सिटी से एमएड जैसी उपाधियां इन्होंने अपने नाम की हैं। वो एक बेहतरीन स्टेज परफॉर्मर भी है, कई कॉम्पिटिशन में टॉप रैंक हासिल कर चुकी हैं और कई सिंगिंग इवेंट्स में जज के रूप में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। साथ ही मिलेनियम टीटी कॉलेज अकलेरा में सीनियर लेक्चरर के रूप में यंग माइंड्स को शेप कर रही है। आज हम जानेंगे उनका बचपन, उनकी म्यूजिकल जर्नी, उनके फेवरेट सिंगर, और हाँ, बीच बीच में हम उनसे खूब खूबसूरत लाइंस भी सुनेंगे, लता जी से लेकर आशा जी और उनके फेवरेट मेल सिंगर तक। तो तैयार हो जाइए सुरों, यादों और इंस्पिरेशन से भरी एक सोलफुल मुलाकात के लिए। शिखा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आलोक जी, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ आप सभी को अपना प्यार भरा नमस्कार करती हूँ।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले शिखा जी, थोड़ा सा अपने श्रोताओं को अपना छोटा सा परिचय दें, आपकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी, कहाँ आपकी पैदाइश है, अभी आप कहाँ रह रही हैं, कुछ अपने बारे में हल्का फुल्का बताइए शुरुआत के दिनों के बारे में।
2: हाँ जी, मेरा जन्म हुआ था अलीगढ़ में, यूपी में अलीगढ़ शहर है, वहां पर मेरा जन्म हुआ था। हाँ जी, हाँ। और क्या है कि मेरे फादर जो है वो रेलवे में थे, तो उनकी पोस्टिंग तो कहीं अलग अलग शहरों में होती रहती थी, ट्रांसफर होते रहते थे, तो मैं कई जगह रही हूँ, इसीलिए एमपी, राजस्थान, यूपी, सब जगह, सारे मतलब कई जगह पर रह चुकी हूँ मैं। तो मेरी जो सबसे पहले नागदा में ही मेरी एजुकेशन शुरू हुई थी, मैंने मतलब नर्सरी में मैं नागदा थे हम लोग। उसके बाद में फिर डैडी का ट्रांसफर हुआ, तो हम लोग बयाना, फिर भरतपुर आए। भरतपुर में हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम रुके, 10 साल के करीब हम लोग रुके थे। फिर उसके बाद मेरे डैडी का ट्रांसफर हो गया आगरा में, फिर हम लोग, मेरी पूरी एजुकेशन फिर आगरा में हुई। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, मैं कोटा आ गई, अभी मैं कोटा में ही हूँ।
1: बहुत खूबसूरत, अलीगढ़ तो बड़ा फेमस जगह है, और मुझे तो इसलिए बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अलीगढ़ की पैदाइश है, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा मेरी भी अलीगढ़ की पैदाइश है।
2: अच्छा,
1: तो मुझे
2: अच्छा,
1: बहुत मजा आया। हालांकि हम राजस्थान में रहे ज्यादातर।
2: हाँ जी, मेरी मेरी दादी का घर वही है।
1: ओके ओके,
2: हाँ, मेरी दादी का घर वही है, तो इसलिए मैं, मेरी पैदाइश वही की है।
1: चलिए बहुत बढ़िया, ये तो अलीगढ़ से शुरुआत हो गई अपनी बातचीत की, से अच्छी बात ही क्या है। अच्छा, तो शिखा जी अब ये बताइए कि क्या आपके परिवार में संगीत का माहौल था, या ये लगाव आपने अपने आप विकसित हुआ, ये कैसे हुआ धीरे धीरे, कभी फैमिली का माहौल भी?
2: हाँ हाँ, मेरे मेरे मेरी फैमिली में संगीत का माहौल था। मेरी मदर बहुत अच्छा गाना गाती है।
1: अच्छा।
2: और शायद मैंने उनसे ही सीखा था बचपन से, मतलब बचपन में थोड़ा गुनगुनाती थी मैं, उनको सुनती थी, तो तब मैंने सीखा था उनसे। और थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने शायद उनका यशोमती मैया से बोले नंदलाला, ये वाला गीत सुना था उनसे और वो ही मैंने सीखा था उनसे, मेरी मदर ने मुझे सिखाया था ये गाना।
1: तो आपकी मदर गाती थी ये, बहुत ही सुन के मजा आ गया और उसी उन्हीं से उन्हीं की विरासत आपको मिली है। तो चलिए, ये तो चूंकि बात ही यशोमती मैया के गाने से हो गई है तो हम यहाँ एक गाना सुन लेते हैं आपकी मदर को याद करते हुए, एक अच्छा सा गाना सुन लेते हैं, उनके टाइम का कोई गाना सुनते हैं, है ना, आगे चलते हैं।

0: हाँ, तो वेलकम बैक शिखा जी। आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां भी काफी प्रभावशाली हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि संगीत में आपकी औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन किस तरह से शुरू हुई, क्या क्या किया आपने?
1: जैसे कि मुझे म्यूजिक का शौक बचपन से ही था, तो फिर उसको देखते हुए मेरे मदर फादर ने सोचा कि उसको कुछ म्यूजिक में ही कराया जाए। तो सबसे पहले मैंने ये प्रभाकर में ही मुझे एडमिशन दिलवाया था। कोई डिस्टेंस कोर्स होता है ये, तो हाँ, तो इसमें जैसे होता है सर कि पहले जूनियर डिप्लोमा होता है, सीनियर डिप्लोमा, फिर प्रभाकर की डिग्री होती है। तो इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मैंने 11th 12th में ही म्यूजिक लिया, फिर आगे फिर चलता गया। फिर मैंने DMA म्यूजिक लिया था, MA म्यूजिक वोकल से किया मैंने, उसके बाद PhD किया।
0: अच्छा, PhD भी म्यूजिक से ही किया आपने?
1: जी जी जी
0: ओके,
1: म्यूजिक से PhD किया मैंने, म्यूजिक वोकल से। जी
0: अच्छा, वंडरफुल। तो आपका ये जो PhD का रिसर्च टॉपिक है शायद राजस्थानी मार्ड गायकी, तो ये
1: जी
0: क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। आपने क्या किया, किस तरह से PhD में इस पे काम किया?
1: मैं आपको बताया कि मैं भरतपुर में रही थी छोटे से हम लोग जब, तो मुझे शुरू से ही राजस्थानी लोकगीतों का बहुत शौक था, बहुत लगाव था उससे मुझे। फिर जब मैं MA में आई ना, तो हमारे हमारे एक सेमेस्टर जो होता था वो डिसर्टेशन का होता था। तो डिसर्टेशन में हम लोगों को टॉपिक लेना था, तो मैंने अपनी मैम से पूछा, मैम क्या टॉपिक ले सकते हैं मैम? तो मैम ने कहा, बताओ तुम्हें कोई किसी किसी चीज में इंटरेस्ट है, कोई म्यूजिक में? तो मैंने बोला कि मैम मुझे राजस्थानी लोक संगीत में है इंटरेस्ट। तो फिर मैम ने बोला कि राजस्थानी लोक संगीत का पूरा ना लेके कोई एक शैली लेते हैं। मैंने कहा, मैम आप सजेस्ट करिए क्या ले सकते हैं। तो मैम ने मुझे ये सजेस्ट किया कि मांड गायकी पर आप कुछ करो। फिर मैंने उस टाइम पे डिसर्टेशन वर्क किया था उस पर, फिर उसी को मैंने आगे PhD में भी कंटिन्यू किया।
0: मार्ड गायकी पे जब आप ये PhD वगैरह का काम कर रही थी, तो आप इसमें कुछ फील्ड में जाके मार्ड गायकों से मिलती थी,
1: जी
0: कुछ उनसे
1: जी
0: बात बात करती थी?
1: जी
0: कैसे
1: जी
0: होता है, कैसे करते हैं काम?
1: मुझे बहुत पहले तो रिसर्च वैसे करते हैं कि अपनी बुक्स वगैरह देख के, अपना लाइब्रेरी जाना, ये करना, कई जगह की बाहर बाहर जाके भी लाइब्रेरी में गई, जोधपुर गई मैं, जयपुर भी गई थी, और फिर वहां पर ही जो लोकल वहाँ के सिंगर्स थे उनसे मिलकर, उनका इंटरव्यू लेकर, उनसे मतलब उस टाइप से मैंने पूरा ये PhD का काम किया था। और उस टाइम मेरी डॉटर बहुत छोटी सी थी, 1 साल
0: अच्छा,
1: की भी नहीं थी, तब मैं उसको छोड़ के जाना पड़ता था मुझे, तो उदयपुर, जयपुर और जोधपुर, अजमेर भी गई थी मैं। जी
0: बड़ी सिंसियरली आपने PhD का काम किया। और
1: जी
0: जब बच्चे छोटे होते हैं और शादी हो जाती है,
1: हाँ
0: तो इस तरह का आना जाना बड़ी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सही बात है।
1: जी
0: तो ये दिखाता है आप बहुत सिंसियर हैं संगीत के प्रति। तो अब जैसे ये बताइए कि क्या आपकी जो ट्रेनिंग है क्लासिकल रही है या लाइट म्यूजिक की है, या दोनों को आप समान रूप से आपका इंक्लिनेशन है सबकी तरफ, कैसे, क्या खास बात है?
1: मैंने क्लासिकल भी सीखा है और लाइट म्यूजिक में मेरा शुरू से रुझान रहा है, तो लाइट म्यूजिक को भी मैंने समान रूप से ही सीखा है। जी
0: तो चलिए, ये चूंकि म्यूजिक की इतनी क्लासिकल लाइट म्यूजिक की बात चल रही है, तो हम यहाँ रुक के एक अच्छा सा कोई लाइट म्यूजिक का गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं।

0: अच्छा शिखा जी, आप एक स्टेज परफॉर्मर भी हैं। स्टेज पर थोड़ा सा याद कीजिए, अपनी यादों में गोता लगाइए कि पहला परफॉर्मेंस कैसा रहा था, कौन सा था, कहाँ था, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: पहला परफॉर्मेंस मेरा था, मैं एचकेजी में थी तब हमारे जो स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं ना उसमें परफॉर्म किया था। तो जो ग्रुप सॉन्ग होते हैं अपने उसमें किया था सबसे पहली बार मैंने परफॉर्म। जी
0: अच्छा
1: जी उसके
0: अच्छा
1: थोड़े से मुझे शायद बोल भी याद है, ऐसे
0: अरे
1: था
0: वाह,
1: कुछ। हाँ हाँ
0: अच्छा, तब तो
1: ऐसे
0: आप
1: कुछ
0: बहुत
1: था
0: छोटी होंगी।
1: कि हाँ बहुत छोटी सी थी मैं। और तो उसके बोल थे जैसे

0: आपको
1: था।
0: गाना, चलिए आपको बता, एच के जी की में आपने जो गाना गाया
1: हाँ
0: होगा तो उस टाइम तो आप 5 6 7 साल की होंगी मुश्किल से। सही
1: हाँ
0: बात है। तो
1: बिल्कुल।
0: कहाँ थी आप, एच के जी में कौन से शहर में
1: मैं
0: थी?
1: भरतपुर में थी, मैं भरतपुर
0: ओके, भरतपुर में थी। ठीक
1: में।
0: है। आपने कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिया है और आपको इनाम और अवार्ड्स भी मिले हैं, तो कोई मेमोरेबल या प्राउड मोमेंट जब जो आप भी आपको याद आता हो, आपके दिल में बसा हो, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: जी, सबसे पहली बार जब मैंने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, मैं 5th क्लास में थी तब।
0: अच्छा,
1: तो जी, तो ये हमारा था, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था, उसमें मैं फर्स्ट आई थी। बहुत खुशी हुई थी उस टाइम मुझे, मतलब तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा कुछ ऐसे नंबर आएगा, पर उस टाइम मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ।
0: चलो बहुत अच्छा।
1: और एक बार मैं स्टेज परफॉर्मेंस दे रही थी, और तो उस टाइम हमारे आगरा के जाने माने एक संगीतज्ञ थे, उनका नाम करतार सिंह जी, जो
0: अच्छा
1: इंडियन आइडल में भी आए हैं। हाँ जी, नहीं इंडियन आइडल नहीं सर, वो था
0: सारे गामा, सारे गामा,
1: जी, तो
0: सारे
1: उसमें
0: गामा।
1: आए थे वो। तो
0: अच्छा,
1: उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को सुना, तो आए मेरे पास और मुझे 100 का नोट देकर बोले, बहुत बहुत बढ़िया गाया आपने।
0: अरे
1: वो चीज तो मतलब मेरे लिए हमेशा याद रहती है, वो यादगार लम्हा है, उस चीज को मैं
0: सही,
1: भूल नहीं पाती।
0: नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इस तरह का जो कंपटीशन में कभी कोई जाना माना शख्सियत आके आपको एनकरेज करता है, आपको
1: जी
0: अप्रिशिएट करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और
1: जी जी
0: वो यादें कभी दिल से जा

0: जाती नहीं है।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा अब चलिए थोड़ा सा आपको एक अजीब सा सवाल पूछते हैं कि ये तो एप्रिसिएशन की बातें हो गई, क्या कभी ऐसा कोई एम्बेरसिंग मोमेंट भी आया है स्टेज पर कि आप बताना चाहें, जैसे आप कभी लाइन भूल जाते हैं, कभी फंबल हो जाता है, कभी म्यूजिक साथ, ऐसा कोई ऐसे गड़बड़ भी हुई है स्टेज पे क्या?
1: ऐसा तो कोई भी मोमेंट मुझे याद नहीं है,
0: चलिए चलिए
1: बस
0: बहुत
1: एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ,
0: हाँ हाँ बताइए।
1: वो भी मेरे बचपन का ही किस्सा है। वो ऐसे म्यूजिक से रिलेटेड तो नहीं है, पर हाँ परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। कि
0: जी
1: मुझे ये एक बार रामायण वाला जो रामलीला टाइप से स्कूल में कोई प्ले हो रहा था, तो
0: अच्छा
1: टीचर ने मुझे बोला कि सीता जी बनाएंगे तुम्हें। ठीक,
0: अच्छा
1: मैं बन गई, और
0: अच्छा
1: जिस दिन हमारी परफॉर्मेंस थी उसी दिन किसी बच्चे ने मुझे बोल दिया कि सीता जी को रावण चुरा के ले जाता है।
0: अच्छा
1: हाँ, तो उसको पता, उस बात को सुनकर मुझे इतना डर लगा कि मैं स्टेज पर गई हूँ, मुझे रावण चुरा के ले जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने वो परफॉर्म किया नहीं तो किया ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ
0: डर लग गया आपको बिल्कुल।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा जैसे आप स्टेज शो वगैरह में जाती हैं सिंगिंग करने, तो आप ये कराओके सिंगिंग ज्यादा करती हैं, लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ भी रेगुलरली परफॉर्म करती हैं, ये किस तरह से है आपका?
1: ये मैंने दोनों ही किया है। अभी फिलहाल थोड़ा सा लाइव वाला कम हो गया, कराओके का ज्यादा है अभी, मेरा लाइव का कम हो गया है। पहले लाइव भी चलता था मेरा, अभी कराओके का ज्यादा है।
0: तो चलिए आपकी स्टेज परफॉर्मेंस के नाम पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर
1: जी
0: आगे बातचीत को जारी रखते
1: जी
0: हैं।

0: हाँ तो शिखा जी, अब ये बताइए, हम थोड़ा सा आपके फेवरेट सिंगर्स के बारे में बात करेंगे और चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आपके फेवरेट फीमेल सिंगर्स कौन हैं? लता जी, आशा जी में से किसकी गायकी आपको ज्यादा इंस्पायर करती है? कुछ इसके बारे में बताइए खुल के हमें।
1: जी, लता जी, आशा जी दोनों ही मेरी फेवरेट सिंगर्स हैं। और उसके अलावा मुझे कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक जी और साधना सरगम जी, इनके गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं इनके गाने भी मुझे। जी
0: अच्छा,
1: जी जी
0: गीता दत्त कैसी लगती हैं आपको?
1: गीता दत्त, ओहो, बहुत ही बहुत, मतलब उनकी तो बात ही अलग है।
0: जब अपने जमाने में वो गाती थी तो किसी जमाने में वो भी टॉप की सिंगर थी।
1: जी, बिल्कुल
0: लता जी उस
1: बिल्कुल
0: टाइम
1: बिल्कुल,
0: आई
1: मैं,
0: आई थी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके गाने भी मैं गाती हूँ, उनके बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं गाती हूँ उनके।
0: अच्छा, आप थोड़ा सा सहज हो जाइए, और अगर हमारे श्रोताओं को आप लता जी का कोई दो लाइनें सुनाइए, कोई मुखड़ा सुनाइए, जो भी आपकी इच्छा हो वो सुनाइए, फिर हम आशा जी का भी सुनेंगे आपसे, और सहज होके बिल्कुल आराम से सुनाइएगा।
1: जी, बिल्कुल। दिल और निगाहों के साए, दिल और निगाहों के साए, दिल और निगाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर

0: नैनीताल का था सॉन्ग।
1: हाँ, और सुनाइए कोई आशा जी का सुना दीजिए।
0: आशा जी का, आशा
1: आशा
0: जी
1: जी
0: की एक
1: का
0: गजल, आशा जी की एक गजल सुनाऊंगी
1: गजल सुनाइए।
0: जो,
1: अच्छी गजल
0: हाँ जो
1: सुनाइए।
0: मेरी मेरी
1: और फिर
0: फेवरेट
1: एक
0: गजल
1: कोई आशा जी का जो आइकॉनिक एनर्जेटिक लाइन्स वाला भी
0: है।
1: सुनेंगे
0: जी
1: आपसे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: भजन और दूसरा सॉन्ग सुनाती हूँ आपको, आशा जी का ही।
1: हाँ सुनाइए।
0: बैठी चौक से
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पता है आप बिना म्यूजिक के गा रही हैं और
0: जी
1: साउंड भी थोड़ा ईयरफोन से उतनी मजा नहीं आता, लेकिन बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और अगर ये म्यूजिक के साथ होता तो बस वाह क्या बात होती। लेकिन शिखा जी, आप ये बताइए कि आपका आपका फेवरेट मेल सिंगर कौन है, पुराने दौर का हो या नए दौर का हो, और किसी मेल सिंगर का भी कोई फेवरेट गाना हो तो गुनगुनाइए, और भले ही एक बुखड़ा गा दीजिए, एक अंतरा भी गा दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
0: जी मुझे पुराने सिंगर्स में ही रफीज, मोहम्मद रफी जी और किशोर जी, ये दोनों सिंगर्स के सॉन्ग बहुत पसंद है। तो मैं मोहम्मद रफी जी का एक गीत सुनाना चाहूंगी। तुम
1: हाँ हाँ बताइए।
0: जो मिल गए हो तो ये नहीं लगता है ये जहां मिल गया, एक भटके

लगता किस्मत से मिल गए हो।

0: बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया, बहुत अच्छा। और रफी जी का तो ये आइकॉनिक सॉन्ग है जिसको सुनने में हम लोगों को बहुत मजा आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड।
1: धन्यवाद
0: चलिए चलिए, बहुत
1: धन्यवाद
0: बहुत शुक्रिया आपका। और फिर हम आपकी गायकी के बारे में, जरा इंटरव्यू खत्म हो जाए तो हमारे रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर साहब का मैसेज आया है कि हम लोग कुछ आपसे बात भी करना चाहेंगे इसके बारे में। चलिए,
1: जी।
0: तो आपके संगीत के सफर में अभी बताइए, फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? क्योंकि ये एक ऐसा काम है संगीत का, जो डिवोशन का काम होता है संगीत, तो इसमें
1: जी
0: ऐसा नहीं हो सकता कि बिना फैमिली के सपोर्ट के ये आगे बढ़ा पाए। स्टेज पे भी जाना पड़ता है आपको, प्रोग्राम्स पे भी जाना पड़ता है, तो बताइए किस तरह से चलता है सारा काम?
1: बिल्कुल, फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है। मेरी मदर इन लॉ भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है। मेरी बच्चे तो बच्चे भी कर ही रहे हैं, और हस्बैंड का
0: अच्छा,
1: तो हाँ, हस्बैंड तो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे बाहर भी लेके जाना है कभी कोई परफॉर्मेंस के लिए, तो वो भी जाते हैं मेरे साथ। और जब तक मेरा परफॉर्मेंस रहता है वहाँ पे, मैं हूँ वहाँ पे, तब तक मेरे साथ ही रहते हैं, हर जगह मुझे लेके जाते हैं।
0: वेरी
1: और
0: गुड।
1: हाँ, और मदर इन लॉ भी कभी मुझे कभी मना नहीं किया कहीं भी जाने के लिए। किसी भी टाइम हो, कुछ भी हो, मैं चली जाती हूँ आराम से। मुझे मतलब कुछ भी, घर में भी चिंता नहीं होती कि मुझे कुछ काम करना है, नहीं तो दिमाग में अगर कोई ऐसे सपोर्ट करने वाला, में दिमाग में ये रहता है कि आपको घर के भी
0: वाह,
1: काम संभालने हैं, अरे भाई ये काम रह गया, ये काम रह गया, उस चीज की मुझे चिंता नहीं रहती है।
0: तो अब ये बता, आपके हस्बैंड भी गाना गाते हैं क्या? ये बताइए, आप दोनों
1: जी
0: मिलके गाना
1: जी
0: गाते हैं क्या?
1: नहीं,
0: नहीं, अच्छा,
1: हाँ
0: दोनों बैठ के
1: नहीं,
0: गाते हैं।
1: उनको
0: अच्छा
1: शौक नहीं है गाने का।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: उनको
1: सुनने
0: सुनने
1: का
0: का
1: शौक है, अच्छे श्रोता है वो, श्रोता
0: शौक। अच्छा,
1: बहुत
0: श्रोता है
1: अच्छे हैं,
0: वे।
1: श्रोता तो बहुत ही अच्छे हैं।
0: अच्छा, वेरी
1: हाँ
0: गुड, वेरी गुड, वेरी
1: जी,
0: गुड, वेरी गुड। तो उनका कोई फेवरेट गाना कौन सा, उनको पसंद कौन सा गाना है? कोई फेवरेट गाना है उनका जो आपसे कहते हैं, वही सुनाओ मेरे को, वो गाना सुनाओ आज, तो ऐसा कोई है?
1: ऐसे कोई गाना, हाँ उनको ना पसंद है, तेरे बिना जिया जाएगा,
0: अच्छा
1: वो उनको पसंद
0: अच्छा तो गुनगुनाना चाहेंगी आगे, अपन बातचीत
1: जी।
0: जारी रखते हैं उसके बारे में।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं
0: हाँ,
1: गुनगुनाना
0: सुना दी,
1: चाहती
0: सुना दी, सुना दी।

0: अच्छा गाना सुनाया भाई, बड़े मन से गाए गाना। सबसे अच्छा यही गाया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब इस मोड़ पे रुक के हम मेरे ख्याल में यही गाना देश पे सुन लेते हैं, हमारे रेडियो पे भी चलाते हैं इसको प्ले करके।
1: बिल्कुल
0: चलिए।

0: अच्छा शिखा जी, अब ये बताइए कि संगीत के अलावा आपके और कौन-कौन से हॉबीज हैं, किस तरह से रिलैक्स करती हैं और क्या-क्या करती हैं, किस तरह से इंस्पायर होती हैं अपना आगे का काम करने के लिए? अच्छा
1: मुझे म्यूजिक के अलावा मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, और हाँ, और मुझे क्राफ्टिंग का भी शौक है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर करती हूँ। दोनों काम ऐसे हैं कि मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा,
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कुछ कुकिंग के बारे में बताइए, कौन सी फेवरेट रेसिपी है आपकी, क्या क्या बनाती हैं आप?
1: वैसे तो सभी सारी चीजें ही बना लेती हूँ मैं, लेकिन फेवरेट में आप कहेंगे तो मुझे मतलब लोगों को पसंद है मेरे हाथ के जो सब्जियां या कुछ भी डिश, तो जैसे मेथी मलाई मटर, कटहल की
0: अरे
1: सब्जी, कटहल की
0: वाह
1: सब्जी,
0: वाह वाह, कटहल की सब्जी मेरी भी
1: कटहल की सब्जी।
0: फेवरेट
1: जी बिल्कुल, आप आइए कभी तो आपको खिलाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी आएंगे तो आपके हाथ के खाएंगे। हमारे समीर जी से भी कहेंगे कि आप चलिए कटहल की
1: जी
0: सब्जी खा
1: जी
0: के आते, ये भी
1: बिल्कुल।
0: यूपी वाले हैं। हाँ,
1: अच्छा
0: समीर जी भी
1: अच्छा
0: यूपी वाले हैं, तो
1: हाँ, यूपी
0: बिल्कुल
1: वालों को तो कटहल पसंद है।
0: कटहल पसंद है, बिल्कुल
1: हाँ
0: पसंद
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल।
0: सही है। चलिए चलिए, तो बहुत बढ़िया। अच्छा, आजकल थोड़ा सा हम अब आजकल के जो म्यूजिकल सिनेरियो है स्टेज शोज का, उस पे आते हैं, बातचीत करते हैं। तो आजकल छोटे बड़े शहरों में बड़े सारे म्यूजिकल ग्रुप्स हो गए हैं, कराओके क्लब्स हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आपका ये जो म्यूजिक के प्रति मोहब्बत है, प्यार है लोगों का, इसको कैसे देख रही है आप, क्यों शुरुआत हुई है और इस तरह बढ़ता जा रहा है, क्या होगा इसका, कुछ इसके बारे में क्या सोचती है आप?
1: हाँ, कराओके क्लब और म्यूजिक क्लब्स में क्या होता है कि सब लोग, सारे संगीत प्रेमी जो मिलते हैं आपस में, एक तो सबका मनोरंजन होता ही है, और क्या, जो जैसे कभी कोई स्ट्रेस में है या कुछ है तो उससे ना स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं म्यूजिक से। और जो मतलब जिनके अंदर मन में गाने की इच्छा है बहुत ज्यादा, तो वो है ना अपनी इच्छा को भी वहां पर आकर अपना पूरा कर लेते हैं। और सिंगर्स का ना इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, बार बार परफॉर्म करते हैं, सीखने को भी मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, दूसरों से भी सीखने को मिलती है कि कौन कैसा गा रहा है, हमें किससे किससे क्या चीज सीखनी चाहिए, वो चीज भी हमें मिलती है वहां पर। तो बस मैं मतलब मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज की शुरुआत हो गई है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि सभी तरह के लोग आ जाते हैं फिर गाने के लिए भी ना। ठीक है, जिसको शौक है, बिल्कुल शौक है, ठीक है, शौकिया तौर पर गा ले वो करते हैं जैसे, और कुछ बहुत अच्छे भी आते हैं, दोनों तरह के ही लोग आते हैं। पर हाँ ये है कि लोगों को एक ना प्लेटफॉर्म मिल गया। अच्छा
0: सही बात है। देखिए, वैसे तो मैं अगर इसको देखूं कि म्यूजिक जो है हमारे घरों और बाथरूम से निकल के स्टेज तक पहुंचा दिया है लोगों
1: जी
0: ने,
1: जी जी बिल्कुल
0: जिस
1: बिल्कुल
0: तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेटेंट सिंगर थे, बिल्कुल दबी हुई प्रतिभाएं थी, वो भी सामने आ
1: हाँ
0: गई
1: हाँ
0: हैं। और लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा होता जा रहा है। आज की डेट में जयपुर में 22 तारीख को कम से कम 4 शोज हैं,
1: ओ
0: जितने यहाँ वो है ऑडिटोरियम से, सब में कोई ना कोई शो है और सबके इनविटेशन है। अब बड़ी दिक्कत हो जाती है कि किसमें जाए,
1: कहाँ
0: कैसे
1: जाए।
0: जाए, क्या करें। तो और
1: बिल्कुल
0: कई बार क्या होता है कि सिंगर्स वही घूम फिर के, वही जयपुर के 10 15 20 50 सिंगर्स हैं, वो घूम फिर के कभी इस ग्रुप में गा रहे हैं, कभी उस ग्रुप में गा रहे हैं, तो वही चलता
1: हाँ
0: रहता है। कभी कभार कोई
1: जी
0: वो होता है, और फिर ऑनलाइन तो सारे चलते ही रहते हैं। तो
1: हाँ, मतलब
0: ये है, बात चलो। आप हाँ, आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप।
1: दोनों ही चीजें है ना अपने एडवांटेज।

0: और डिसएडवांटेज होते हैं, वो दोनों चीजें होती हैं हर फील्ड में, वो चीजें होते हैं।
1: सही बात है। तो आप कैसे फ्यूचर में देखती हो, आप अपने सिंगिंग कैरियर को किस डायरेक्शन में जाता हुआ देखती हैं, आप कुछ बताइए इसके बारे में।
0: फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपने सिंगिंग को थोड़ा और डेवलप करूंगी और परफॉर्मेंस अभी अपने कोटा में देती हूँ, बाहर भी जा कर दूंगी, ये चीज सब प्लान कर रहे हैं हम लोग भी।
1: चलिए चलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए, आपकी फ्यूचर के सिंगिंग कैरियर की जो ब्राइट कैरियर होने वाला है, उसके लिए रुक के एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातचीत को जारी रखते हैं। अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ गए हैं,

0: और आखिर में शिखा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी यंग सिंगर्स, स्टूडेंट्स और म्यूजिक लर्नर्स के लिए? कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें, कुछ उनको संदेश देना चाहें तो बताइए।
1: जी बिल्कुल, मैं संगीत प्रेमियों से और युवा सिंगर्स से मैं कहना चाहती हूँ कि म्यूजिक को बहुत प्यार करें। म्यूजिक को और उसके मतलब म्यूजिक की ऐसी ऐसा फील्ड है कि मतलब आपके स्ट्रेस को भी दूर कर देता है, खुशी भी देता है, हर चीज भी देता है आपको। और म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक ना रियाज मांगता है, रियाज को कभी मत छोड़ो, रियाज हमेशा करते रहना चाहिए इसका। और अपनी जो आवाज है उस पर मतलब कहना चाहूंगी कि आत्मविश्वास को बना के रखें अपने ऊपर। और अब जो कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं अपने से, तो गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीखने को मिलता है। जब हम कुछ गलती करते हैं तो उसको सुधार कर उससे कुछ सीखने को ही मिलता है। तो हमेशा ये भी ध्यान रखें और रियाज को कभी भी ना छोड़ें, रियाज करते रहें हमेशा।
0: चलिए, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और मैं इसमें ये बात भी जोड़ देता हूँ श्रोताओं, कि जहाँ आपको स्ट्रेस फ्री करता है वो मिलता है, आपको इससे नए दोस्त भी मिल जाते हैं।
1: जी,
0: बहुत जान पहचान आपकी बढ़ती है, आपका
1: हाँ।
0: एरिया बहुत बढ़ जाता है। जब आप कंपटीशंस में जाते हैं या स्टेज शोज में जाते हैं तो नए सिंगर्स मिलते हैं, फिर उनसे बहुत अच्छी अच्छी दोस्ती हो जाती है, प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं। और सब लोग चूंकि सब संगीत के दीवाने होते हैं तो उनमें एक आपस में एक भावनात्मक तो जुड़ाव भी हो
1: जाता है, जुड़ाव
0: हो जाता है, एक बड़ा प्यारा होता है। और दूसरा है, और एक ये भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कह रहा हूं, कि जब हम संगीत के बारे में बात करते हैं, जो दुनिया में नेगेटिव चीजें हैं, है जो नकारात्मक चीजें हैं, एक दूसरे की बुराई करना, भलाई
1: हाँ।
0: वो करना, वो सबसे भी हम दूर होते जाते हैं।
1: जी,
0: तो संगीत अपने आप में इतना प्योर है, इतना जेन्युइन चीज है, कि जब हम संगीत की बात करते हैं या संगीत से जुड़े रहते हैं तो हम दुनिया की हर नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाते हैं। तो श्रोताओं, संगीत के नाम पे बस यही है कि शिखा जी, आज बहुत बातें करके आपसे मजा आया, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो वाह, क्या खूबसूरत बातचीत रही आज। डॉक्टर शिखा कुलश्रेष्ठ जी ने न सिर्फ अपने संगीत सफर की झलकियां हमारे साथ बांटी, बल्कि अपनी मधुर आवाज से हमारा दिल भी जीत लिया। शिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर हमारे श्रोताओं के साथ ये म्यूजिकल जर्नी शेयर की। हम दिल से कामना करते हैं कि आपकी सुरों की ये यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रहे और आप आने वाली जनरेशन की को भी इसी तरह से इंस्पायर करती रहे। दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटी, एक नई कहानी और कुछ नई धुनों के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो शो जिंदगी के रंग, गीतों के संग। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग, गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के फनकार हैं शंकर जयकिशन, वही प्रसिद्ध जोड़ी जिन्होंने हिंदी सिनेमा में धूम मचाई।

बॉलीवुड हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध संगीतकार शंकर जयकिशन। इनकी जोड़ी एक जमाने में बेहद पॉपुलर थी। इस जोड़ी के जयकिशन का पूरा नाम था जयकिशन दयाभाई पांचाल और शंकर का पूरा नाम था शंकर सिंह रघुवंशी।

1949 से 1969 के बीच पूरे 20 सालों तक जो गीत हिंदी सिनेमा को मिले वो सुरीले दौर के तौर पर सिने इतिहास में अंकित हैं। चलिए दोस्तों, इसी दौर का एक गीत सुनते हैं।

जय किशन का जन्म 4 नवंबर 1929 को गुजरात प्रांत के नवसारी जिले स्थित बसाड़ा शहर में हुआ था। जय किशन को संगीत के प्रति बचपन से ही खासा लगाव था। वो हारमोनियम बजाने में पारंगत थे। बॉलीवुड फिल्मों में एक्टर बनने का सपना लेकर वो बॉम्बे आए। चलिए दोस्तों, हो जाए उनका ही एक गीत।

सन 1948 में राज कपूर की पहली फिल्म आग में शंकर जयकिशन की जोड़ी ने संगीतकार राम गांगुली के साथ बतौर असिस्टेंट काम किया। बाद में राज कपूर और राम गांगुली के बीच किसी बात का मतभेद होने पर इस फिल्म का बाकी संगीत शंकर जयकिशन ने दिया। चलिए दोस्तों, उन्हीं की फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

राज कपूर शंकर जयकिशन के संगीत बनाने के अंदाज से बहुत प्रभावित थे, और बस फिर क्या था, राज कपूर के साथ शंकर जयकिशन की जोड़ी बन गई।

हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन की जोड़ी ने एक साथ कई फिल्में की। इन संगीतकार और गीतकारों की जोड़ी खूब जमी और संगीत प्रेमियों के बीच काफी पसंद की गई। लीजिए, पेशक खिदमत है इनका बनाया हुआ एक और गीत।

கட்டாரி.

दोस्तों सबसे खास बात यह है कि शंकर जयकिशन की जोड़ी को सबसे ज्यादा 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया।

0: 去。
1: तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के फनकार हैं रविंद्र जैन। रविंद्र जैन एक प्रसिद्ध गीतकार, गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे। भले ही वो जन्म से अंधे थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हुए। तो लीजिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रविंद्र जैन जी द्वारा बनाए हुए इस गीत से।

Buenas noches.

रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उनके पिता इंद्रमणि जैन एक संस्कृत पंडित थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी चिकित्सक थे। रविंद्र अपने माता पिता की चौथी संतान थे और उनके 7 भाई बहन थे। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोस्तों, उन्हीं का बनाया हुआ ये गीत सुने।

रविंद्र जैन साहब की पैदा होने के एक दिन बाद भी जब आंखें नहीं खुली तो उनके पिता ने उनके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की। हालांकि डॉक्टर उनके पलके खोलने में सफल रहे लेकिन वो देखने में असमर्थ थे। ये जानकर उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नेत्रहीन बच्चा कितना प्रसिद्ध होने वाला है। आइए दोस्तों सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत

संगीत प्रशिक्षण के लिए ये विश्वास दिलाकर दाखिला दिलाया कि वो बड़े होकर संगीतकार बनेंगे और एक संगीतकार के लिए अंधा होना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसलिए बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की और उनके पिता ने उन्हें उपहार के रूप में एक मिनी हारमोनियम दिया था। शुरू में रविंद्र ने घमंडी लाल और फिर जनार्दन शर्मा जी से ट्रेनिंग ली। जनार्दन शर्मा जी ने उन्हें गायन भी सिखाया। उन्हें न सिर्फ गाने का बल्कि गाने लिखने का भी शौक था। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

भले ही रविंद्र जी अपनी विकलांगता के कारण पांचवी कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उस समय उनके बड़े भाई डीके जैन साहित्य पढ़ते थे और वो उनसे अपनी किताबें जोर जोर से पढ़ने का रिक्वेस्ट करते थे। इसके कारण भले ही रविंद्र जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, फिर भी वो बहुत ज्ञानी बन गए। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन जी कुछ समय बाद कोलकाता पहुंचे अपने चचेरे भाई के पास। रविंद्र जैन जी टैगोर संगीत से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए वो अपने संगीत का अध्ययन करने के लिए आसानी से अलीगढ़ से कोलकाता पहुंच गए। रविंद्र ने वहां 10 साल तक रहकर न सिर्फ संगीत सीखा बल्कि लोगों को संगीत भी सिखाया।

कोलकाता में ही रविंद्र जैन ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ एक और गीत

रविंद्र के मित्र निर्माता राधेश्याम झुंझुनवाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें मुंबई ले जाएंगे और संगीत निर्देशन का अवसर देंगे। और आखिर में 19 सितंबर 1969 को वो राधेश्याम के साथ बॉम्बे पहुंच गए। यहां मशहूर अभिनेता और उनके पुराने दोस्त संजीव कुमार ने रविंद्र को मशहूर निर्माता एनएन सिप्पी साहब से मिलवाया। आइए दोस्तों सुने इन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन ने एनएन सिप्पी के सामने घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं सुनाया, और इसके बाद 1971 से बॉलीवुड में उन्होंने काम करना शुरू किया। सुनते हैं दोस्तों उनका ये गाना।

1973 में आई फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन को लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन थे। सुनते हैं दोस्तों उनका ये एक और गीत।

बॉलीवुड में गाना गाने के अलावा संगीत बनाने के अलावा रविंद्र जैन ने रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया जैसे कई सारे विषयों पर गाने लिखे। महाभारत सीरियल जो टीवी पे आता था वो किसे ना याद होगा, उसका भी संगीत रविंद्र जैन साहब ने दिया। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शाम गजलों के इस महकते हुए प्रोग्राम में जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है मुकेश कुमार जी। बाकी की बातचीत हम मुकेश कुमार जी से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ी सी जानकारी दीजिए अपने बारे में।
1: जी मैं मुकेश कुमार सिंह, सरकारी महकमे में एक मुलाजिम हूँ और मैं रहने वाला हूँ भिलाई छत्तीसगढ़ का। तो मेरी पोस्टिंग यहीं पर है, नागपुर में ही हूँ मैं।
0: तो मुकेश जी आप किस तरह के कलाम या गजल या नज़में लिखते हैं?
1: मैं गजलें ही लिखता हूँ और कि मतलब फिलॉसफी पे ज्यादा बेस्ड रहता है मेरी गजलें।
0: बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल हमको और हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: जी बिल्कुल। गजल का मतलब है कि इश्तिहारों की तरह ही वक्त की दीवार पर, इश्तिहारों की तरह ही वक्त की दीवार पर हर सजा लिखी हुई है जुर्म के आधार पर, इश्तिहारों की तरह ही वक्त की दीवार पर हर सजा लिखी हुई है जुर्म के आधार पर। पहले तो लहरों की हसरत को समझना चाहिए, पहले तो लहरों की हसरत को समझना चाहिए, फिर यकीन अपना जताएं नाव और पतवार पर। जीतना हर बात पे है क्यों जरूरी ये बता, जीतना हर बात पे है क्यों जरूरी ये बता, क्यों हमें अफसोस हो जाता है अपनी हार पर।
0: वाह।
1: और खुद ब खुद गुस्ताखियां किरदार सब करने लगे, खुद ब खुद गुस्ताखियां किरदार सब करने लगे, दोष हम मरते रहे जब जब कहानीकार पर। और मुत्तफिक हो आप हमको देते हैं जितनी खुशी, मुत्तफिक हो आप हमको देते हैं जितनी खुशी, टूटता है दिल भी उतना आपके इनकार पर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो मुकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी प्यारी सी गजल के लिए। कई शब्द और कई अल्फाज तो इस तरह के थे कि मैं बीच में वाह वाह करना चाहता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि आपके फ्लो को न रोकूं और बस कहने दूं आपको, तो इसलिए शांत रहा, चुप रहा। बहुत ही खूबसूरत गजल।
1: थैंक यू सर।
0: तो अब अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई एक गजल हमें बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: जी जी बिल्कुल। जगदीश सिंह जी की आवाज में है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
0: क्या बात है, क्या बात है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है,
1: वक्त तो लगता है।
0: आइए दोस्तों मुकेश जी की फरमाइश पर जगजीत सिंह जी का गाई हुई इस गजल को सुनते हैं।

बहुत बढ़िया मुकेश भाई, थैंक यू सो मच आपकी फरमाइश के लिए, आपकी चॉइस के लिए। तो अगला सवाल मैं छोटा सा पूछना चाहूंगा कि

0: जी बिल्कुल।
1: आपकी हॉबीज क्या हैं? आप जब भी खाली वक्त होता है तो क्या करते हैं उसमें?
0: इसके अलावा मैं थोड़ा सिंगिंग में भी हाथ आजमाते रहता हूँ। सीखा कहीं से नहीं है, मगर घर में ही कोशिश करते रहता हूँ।
1: जी
0: और एक यूट्यूब पर मेरा चैनल भी है,
1: जी
0: उसमें मैं छत्तीसगढ़ी गानों को मतलब रिकॉर्ड करके वीडियो बना के उसका डालता हूँ। तो अभी 3-4 गाने हो गए हैं उसमें,
1: बहुत खूब, बहुत सुंदर।
0: खुद ही कंपोज करता हूँ, खुद म्यूजिक करवाता हूँ, फिर या तो खुद गाता हूँ या किसी सिंगर से गवाता हूँ गाने को अकॉर्डिंग।
1: अरे वाह, क्या बात है, ये तो काफी ज्यादा क्रिएटिव काम है, बहुत बहुत बढ़िया। तो मुकेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
0: अगली गजल के तौर पर मेरी एक छोटी बहर की गजल है। गजल का मतलब है कि गमों को यूं सताया कर हमेशा मुस्कुराया कर, गमों को यूं सताया कर हमेशा मुस्कुराया कर। करे तनकीद गर कोई, तनकीद कहते हैं आलोचना को,
1: जी
0: कि करे तनकीद गर कोई दिल अपना मत दुखाया कर, करे तनकीद गर कोई दिल अपना मत दुखाया कर। तू रख किरदार ही सारे मगर जिम्मा उठाया कर। कोई गर आजमाता है तो बाजी हार जाया कर। अगर अपना बनाना है भरोसा भी जताया कर। अगर होना है रोशन तो अंधेरों से निभाया कर। वो जो पत्थर उठाता है उसे शीशा दिखाया कर।
1: क्या बात है।
0: और बहाए अश्क जब कोई जरा सा भीग जाया कर, भाई अश्क जब कोई जरा सा भीग जाया कर, गमों को यूं सताया कर हमेशा मुस्कुराया कर। ये गजल थी मेरी।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।
1: तो मुकेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंद के किसी गजल गायक की कोई एक गजल बताएं हमें।
0: जी सर बिल्कुल। गुलाम अली साहब की गाई हुई गजल है ये, कभी आह लब पे मचल गई।
1: कभी आह लब पे मचल गई।
0: मचल गई।
1: बहुत खूब, गुलाम अली साहब की ये गजल। आइए दोस्तों सुनते हैं।

0: ओके जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये गजल लिखने का और गजल कहने का शौक या आपके अंदर काबिलियत है, ये आपको कब पता चला और कब से लिख रहे हैं आप?
1: वैसे तो मैं कॉलेज के टाइम से लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने भोपाल से पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा किया है। वहां पर अच्छा माहौल था शायरी का, गजलों का, तो वहां से किसी किताब में पढ़ लिया था मैंने कि ऐसे गजल होती है, ऐसे मतलब और ये होता है करके, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया था, मैं अपने आप से लिखता था। फिर बाद में लोगों ने 2017 में मुझे किसी ने पूछा भाई कि आपकी ये गजल किस मीटर पे है, तो मुझे समझ में नहीं आया कौन सी बहर पे, वो पूछा उन्होंने, तो मुझे बहर शब्द ही पहली बार सुना था मैंने
0: जी।
1: तो मैंने फिर गूगल में सर्च किया बहर क्या होती है। फिर बहर जब गूगल ने बताया 32 प्रकार के हैं ये, तो फिर वहां से मैंने थोड़ी जानकारी इकट्ठा की और फिर जिसने पूछा था उनसे ही मैंने कहा, सरेंडर कर दिया कि मुझे नहीं आता है सब कुछ, पद कुछ भी नहीं मालूम है मुझे, आप सिखा दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सीख जाऊं।
0: जी,
1: तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया और 2017 से ही मैं प्रॉपर मीटर में लिखना सीखा मैंने, मतलब।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मुकेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना अगला कलाम हमें सुनाए।
1: जी बिल्कुल, अब मैं जो भी सुना रहा हूं सब मीटर में ही है उनके हिसाब से।
0: जी जी जी।
1: गजल का मतलब है
0: जी
1: कि वक्त से सीखिए खामोश गुजरने का हुनर, वक्त से सीखिए खामोश गुजरने का हुनर, सीखिए दर्द से जख्मों में उतरने का हुनर, वक्त से सीखिए खामोश गुजरने का हुनर, सीखिए दर्द से जख्मों में उतरने का हुनर, आप अल्फाज के काबू में रवानी को रखें, आप अल्फाज के काबू में रवानी को रखें, भूल जाएं नयू जज्बात उभरने का हुनर,
0: क्या बात है,
1: आप अल्फाज के काबू में रवानी को रखें, भूल जाएं नयू जज्बात उभरने का हुनर, और सांस रोके हुए जीने का हुनर आ तो गया, सांस रोके हुए जीने का हुनर आ तो गया, सांस लेते हुए आया नहीं मरने का हुनर, और खूबसूरत भी वही लोग हुआ करते हैं, खूबसूरत भी वही लोग हुआ करते हैं, आईना जिनको बताता है संवरने का हुनर, और कैसे घुलती है हवाओं में बिछड़ कर गुल से, कैसे घुलती है हवाओं में बिछड़ कर गुल से, कौन खुशबू को सिखाता है बिखरने का हुनर, कि वक्त से सीखिए खामोश गुजरने का हुनर, सीखिए दर्द से जख्मों में उतरने का हुनर।
0: बेहद खूब, बेहद खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही,
1: बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मुकेश जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगली गजल का हुक्म करें, कौन से गायक की कौन सी गजल हम सुनवाएं।
1: एक उस्ताद मोहम्मद हुसैन अहमद हुसैन की गजल है ये,
0: जी।
1: मैं हवा हूं कहां वतन मेरा।
0: जी आइए दोस्तों, मुकेश जी के आदेश पर, मुकेश जी के हुक्म पर यही गजल हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: मुकेश जी, अगला एक सवाल पूछना चाहूंगा इस प्रोग्राम को,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा
1: जी
0: ट्विस्ट देते हुए, थोड़ा सा प्रोग्राम को बदलते हुए, जिससे कि आपको भी मजा आए और सुनने वालों को भी मजा आए, क्योंकि आप लफ्जों के खिलाड़ी हैं, लफ्जों से खेलना आता है आपको। तो सवाल मेरा यह है कि अगर फर्ज कीजिए आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी करने वाला एक जिन्न कहीं से मिल जाए, तो क्या तीन ख्वाहिशें मांगेंगे आप उससे?
1: ऐसी बात तो ऐसी है सर कि ख्वाहिश एक यही है, मेरी सबसे पहली ख्वाहिश यही है
0: जी,
1: वो मैं बता नहीं सकता कि गजल में ही मतलब एक बड़ा एक मुकाम है जो हासिल करना चाहता हूं मैं
0: जी,
1: और इसी के बारे में सोचता रहता हूं हमेशा कि वो वहां तक कैसे पहुंचना है मुझे
0: जी,
1: कौन आगे रास्ता दिखाएगा या कौन मेरी उंगली थामेगा। एक जो है और साथ में ये भी है कि एक वहां तक पहुंचने के लिए अच्छा लिखना भी होगा, तो वो सारे अनुभव जो जिंदगी से मिलता है उन्हें याद रखना और दिमाग में रखना और उनको शायरी में ढालना कैसे है, ये सब कोशिश करते रहता हूं मैं। तो बस मेरी मतलब ख्वाहिश एक ही है मेरी, बाकी और तो कुछ इच्छा है नहीं मेरी, मतलब मैं कुछ और नहीं सोचता हूँ, मतलब बस अपनी नौकरी जो है उसको ईमानदारी से कर लूं, ये ख्वाहिश रहती है कि बस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करूं जो जिसकी मैं तनख्वाह लेता हूं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुकेश जी,
1: और
0: मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: जी जी बिल्कुल, गजल मैं अपनी सुना रहा हूं आपको
0: जी।
1: इसे मैंने मुंबई में सुनाया था एक प्रोग्राम में, तो वहां पर लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था। हम पर यूं एतबार भी अच्छा नहीं लगा, हम पर यूं एतबार भी अच्छा नहीं लगा, हद से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं लगा, हम पर यूं एतबार भी अच्छा नहीं लगा, हद से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं लगा, कुछ हैं शिकायतें मेरी लेकिन खुदा मुझे, कुछ हैं शिकायतें मेरी लेकिन खुदा मुझे, सांसों पे इख्तियार भी अच्छा नहीं लगा। इख्तियार मतलब कंट्रोल, नियंत्रण जो है
0: जी, जी,
1: कि कुछ है शिकायतें मेरी लेकिन खुदा मुझे, सांसों पे इख्तियार भी अच्छा नहीं लगा, और हमने नहीं कहा कोई हमसे मिले मगर, हमने नहीं कहा कोई हमसे मिले मगर, करना यूं दरकिनार भी अच्छा नहीं लगा, और खुशियों के दौर में किया दुश्मन को भी मुआफ, खुशियों के दौर में किया दुश्मन को भी मुआफ, गम में तो गमगुसार भी अच्छा नहीं लगा।
0: क्या बात है,
1: गमगुसार मतलब हमदर्द जो अपना होता है
0: जी,
1: वो कि खुशियों के दौर में किया दुश्मन को भी मुआफ, गम में तो गमगुसार भी अच्छा नहीं लगा, और हमने किसी से भीख तो मांगी नहीं मगर, हमने किसी से भीख तो मांगी नहीं मगर, लेते हुए उधार भी अच्छा नहीं लगा।
0: अच्छा जी,
1: और हम पर यूं एतबार भी अच्छा नहीं लगा, हद से ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं लगा।
0: वाह वाह, क्या
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बड़ी प्यारी गजल। तो मुकेश जी, आपसे गुजारिश करूंगा कि अगली गजल का हुक्म करें, कौन सी गजल हम अपने सुनने वालों को सुनवाएं।
1: जी बिल्कुल, एक फिल्म में इसमें है, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है।
0: बहुत प्यारी, बहुत प्यारी गजल। आइए दोस्तों, यही गजल सुनते हैं मुकेश जी के आदेश पर।

0: बहुत बढ़िया मुकेश जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बचपन में क्या बनना चाहते थे आप?
1: बचपन से मैं सोचता था कि एक मतलब मैं रेलवे में ही नौकरी करना चाहता था। मैं बताऊं तो मेरे दिमाग में, मैं छोटे से गांव से हूं
0: जी,
1: तो है ना, तो मैं वहां जब भी ट्रेन से जाता था तो टीसी लोग को देखता था ना, काले कोट में बहुत अच्छा सा बढ़िया, तो मुझे लगता था तो मैं भी यही बनूंगा एक दिन। बहुत बड़ा ख्वाब नहीं था मेरा, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जितनी भी नौकरियां लगी रेलवे में ही लगी।
0: अरे वाह,
1: मतलब तीन चार नौकरियां मैं रेलवे की छोड़ के अभी जो है वो कर रहा हूँ, रेलवे में ही कर रहा हूँ।
0: तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी अगली गजल हमें सुनाएं।
1: मेरी एक गजल है, इसका मतलब है
0: जी।
1: कि एक हम हैं सितारों को मनाने में लगे हैं, एक हम हैं सितारों को मनाने में लगे हैं, कुछ लोग चिरागों को बुझाने में लगे हैं। एक हम हैं सितारों को मनाने में लगे हैं, कुछ लोग चिरागों को बुझाने में लगे हैं। माना नहीं हमने तो मुसीबत को मुसीबत, माना नहीं हमने तो मुसीबत को मुसीबत, हम जिंदगी आसान बनाने में लगे हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: ये बात समंदर को पता है कि नहीं है, ये बात समंदर को पता है कि नहीं है, लहरों को किनारे ही छुपाने में लगे हैं। ये बात समंदर को पता है कि नहीं है, लहरों को किनारे ही छुपाने में लगे हैं। होता है हवाओं को भी तूफान से खतरा, होता है हवाओं को भी तूफान से खतरा, यूं ही नहीं वो शोर मचाने में लगे हैं। और नादान परिंदों को जो दाना हो मैसर, नादान परिंदों को जो दाना हो मैसर, तो तय है इन्हें लोग फंसाने में लगे हैं। एक हम हैं सितारों को मनाने में लगे हैं, कुछ लोग चिरागों को बुझाने में लगे हैं।
0: बहुत प्यारी गजल, बहुत
1: शुक्रिया
0: मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत प्यारी गजल के लिए। मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद के गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं।
1: गुलाम अली साहब की है, हंगामा है क्यों बरपा।
0: ओहो, क्या बात है।

0: मुकेश जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपनी गजलें हमें सुनाई। आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया और हमारे श्रोताओं को भी आपकी गजलें और आपके पसंद की गजलें सुनकर बहुत मजा आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर बुलाने के लिए आपके प्रोग्राम में। मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।
2: ये जाम भी शाम के वक्त ही क्यों याद आता है, पूछ लेते हैं।

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि झाबुआ जिले में और झाबुआ जिले का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM अब स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है इसकी। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ के किसानों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है, खासतौर पर उन किसानों के लिए जहाँ पर जानकारी का अभाव रहता है और जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है।
2: जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने साथियों को, किसान साथियों को खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को लेकर आते हैं और खास तौर पर उन किसान साथियों को छोटी छोटी बातों पर हम नजर डालते हैं, याद दिलाते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से नई पद्धति से कैसे खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को, यहाँ पर पथरीला इलाका है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि एक फसल बोते हैं और दूसरे फसल बोने के बाद वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं और मजदूरी करने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ की जो मिट्टी है, उपजाऊ शक्ति इसकी बहुत कम है। और सबसे पहले हमें अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि यदि आपको लगता है कि हमारे जमीन में अब उर्वरा शक्ति कम होती चली जा रही है, तो तत्काल अपने नजदीकी जो कृषि विभाग है या KVK है, वहां पर जाकर संपर्क करना चाहिए। क्योंकि वैज्ञानिक विधि से यदि आप खेती बाड़ी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि खेती में अधिक मुनाफा होगा। क्योंकि यदि देखा जाए कि बरसात के मौसम में यहाँ पर कपास की खेती अधिकतर की जाती है, सोयाबीन की भी खेती की जाती है। ऐसे में किसान साथी, क्योंकि अगर सोयाबीन की बात करें और कपास की बात करें तो सोयाबीन में भी काफ़ी पानी लगते हैं और पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो कुछ मुख्य बातें हैं जो अपने साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बता देना चाहते हैं। क्योंकि अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि कैसे, कब बरसात का समय आए, बरसात की मौसम आए और कब अपनी खेती में हम बोनी कर सके। खरीफ की फसलों की तैयारी करने से पहले किसान साथी सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच कराएं, यानी मिट्टी परीक्षण कराएं, साथ साथ में उसको उपजाऊ बनाने के लिए पहले तो गहरी जुताई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ साथ में जो आपके पास पहले जैविक खेती किया करते थे, यानी गोबर की खाद अपने खेतों में डाला करते थे, उससे जो नमी बनी रहती थी खेतों में और साथ में पानी भी बहुत कम लगता था, तो ऐसे में किसान साथी वही विधि फिर अपना सकते हैं, अपने खेतों की तैयारी कर सकते हैं, खाद का वो अपने खेतों में डाल सकते हैं, बीजों का चयन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने खेतों में कौन से बीज ऐसे लगाएं जिससे कम पानी लगे और उत्पादन बहुत अच्छा हो। कुछ खरीफ फसलों की तैयारी कैसे करें, ऐसे में किसानों को सबसे पहले स्थान विशेष की मिट्टी, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं संसाधन के आधार पर कहां कौन सी फसलें करना उपयुक्त है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि ज्ञान कहां से प्राप्त होगा, तो आपके पास KVK है, साथ साथ में कृषि विभाग भी इसमें मदद करता है, सरकार की योजनाएं भी हैं, तो उसका भी हम लाभ ले सकते हैं। क्योंकि धरती के अनुकूलता के आधार पर खेती हमें अब करनी चाहिए। अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में इस तरीके की समस्या जो आती है, तो राज्य के कुल खेती का योग क्षेत्र जो रहता है लगभग 20 मिलियन हेक्टर है, इसमें से केवल 20% भूमि सिंचित है और राजस्थान के किसानों को सिंचाई के विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें ट्यूबवेल, कुएं और टैंक भी शामिल है। कुछ भागों में नहरों से भी सिंचाई की जाती है, लेकिन खरीफ सीजन में मुख्यतः बरसात पर वो लोग आश्रित रहते हैं। तो खेत की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले सूंड ज़्यादातर बरसात जो आधारित खेती है, उसको किया जा सकता है, क्योंकि फसल कटने के बाद से अगले मानसून वाले के बीच में किसान साथी अपनी जमीन की जुताई भूरक्षण को रोकने की वजह से जुताई नहीं कर पाते हैं। तो अपने किसान साथियों की एक बात और महत्वपूर्ण याद रखने वाली है कि अपनी खेती का समतलीकरण अवश्य करा लें। साथ साथ में समतलीकरण के साथ पहले जो अपने तालाब हुआ करते थे, कुआं जो हमारी सिंचाई के साधन हुआ करते थे, आज दिन प्रतिदिन नष्ट होते चले जा रहे हैं, उनकी रख रखाव के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। अभी शासन की ओर से एक मुख्यतः बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मेड़बंदान के लिए योजना चलाई जा रही है शासन की ओर से, तालाब गहरीकरण के लिए योजना चलाई जा रही है। आपको जहां लगता है कि यहां पर पानी रुकता है वहां पर मेड़बंदान कर दें जिससे पानी रुका रहे और आपकी जो जमीन की नमी है वो बनी रहे, क्योंकि यदि वाटर लेवल को देखा जाए तो ऐसे ही मुख्य स्रोत रहते हैं जैसे कुआं हुआ, तालाब हुआ, पोखर हुए, इनमें यदि इनको रोका जाए, इनके रख रखाव किया जाए तो जाहिर सी बात है कि हम अपने खेतों में जो नमी की जो समस्या आती है वो खासतौर पर बनी रहेगी। प्राकृतिक रूप से खेत में उगाई बेकार की खरपतवार जैसी झाड़ियां हैं उसे खेत से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दें। साथ साथ में इस प्रक्रिया में किसान द्वारा खेत में से आकड़ी झड़ियां जो रहती हैं, साथ में पौधे जो बारिश में आने से पहले काट दिए जाते हैं उसकी देख अच्छी तरीके से उसको काट दें जिससे खेत में हल चलाने में आसानी होगी। बीज भी अच्छी तरह से उगते हैं क्योंकि बड़ी खरपतवार जैसे कांटों से हल चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। आप मिट्टी के आधार पर फसलों का चयन हमारे किसान साथी किस तरीके से कर सकते हैं, तो जो रेतीली जमीन है जहाँ पर वहाँ पर बाजरा, तिल और अरंडी की खेती हमारे किसान साथी कर सकते हैं। भूरी रेतीली जमीन जहाँ पर है वहाँ पर मूंगफली, मूंग, मोठ, बाजरा की खेती कर सकते हैं। लाल पीली जगह है जहाँ पर मूंग और मूंगफली की खेती वहाँ पर भी कर सकते हैं। लाल लोमी जमीन जहाँ पर है वहाँ मक्का, गन्ना की खेती कर सकते हैं। मिश्रित लाल काली मिट्टी है जहाँ पर कपास हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। यदि यहाँ के झाबुआ जिले की मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर लाल मिट्टी साथ साथ में काली मिट्टी भी पाई जाती है, तो ऐसे में कपास, मूंगफली और सोयाबीन की खेती हमारे किसान साथी कर सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो रहती है उसमें चावल, कपास, सोयाबीन की भी खेती कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप जो परंपरागत खेती आपकी चली आ रही, जो पुरखों द्वारा आप बोते चले जा रहे हैं, उस पर भी हमें सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि किस तरीके से हम एक आधुनिक तरीके से, आधुनिक पद्धति से हम अपने खेती करें जिससे हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि हो। बीजों का चयन महत्वपूर्ण रहता है, कृषि उत्पादन में बीजों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे बोगे वैसा काटोगे, यह मम किसानों की समझ में आना चाहिए। किसानों की उन्नत बीज का चयन करना चाहिए, बीज हमेशा अधिकृत दुकान से आपको लेना चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाला बीज सामान्य बीज की अपेक्षा 20 से 25% अधिक कृषि उपज देता है, अतः शुद्ध एवं स्वस्थ प्रमाणित बीज अच्छी पैदावार के आधार का होता है। तो ऐसे में हमें बीजों का चयन मुख्य रूप से हमें कर लेना चाहिए। फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र भी अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि देखा जाए कि पिछली साल आपने जिस खेत में मूंगफली बोई थी उस खेत में आप सोयाबीन बोइएगा, और जिस खेत में आपने सोयाबीन बोया था उस खेत में आप मूंगफली लगाइएगा, जिस खेत में आपने कपास लगाया था वहाँ पर मूंगफली करके देखिएगा। तो ये फसल चक्र अपनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है हमारे किसान साथियों के लिए। फसल चक्र को अपनाना और प्रगतिशील किसान की एक पहचान भी होती है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसानों को फसल चक्र अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे। एक फसल एक ही खेत में बार बार नहीं होनी चाहिए, ये हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी बातचीत हो गई है, यहाँ पर हम गीत सुन लेते हैं और एक भीली गीत के साथ मनोरंजन भी करते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आप रेडियो आपड़ी बातें। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में, और महत्वपूर्ण आपने इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातें हैं जो अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, क्योंकि अभी जैसे ही मौसम हमारे बरसात का आएगा, हमारे किसान साथी तैयारी में लग जाएंगे। अगली फसल का जो चुनाव उनको करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि मक्का और सोयाबीन, कपास, मूंगफली खेती अधिकतर की जाती है। तो ऐसे में किसान साथी फसल चक्र का जरूर इस्तेमाल करें, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप नज़दीकी वहाँ पर कृषि विभाग में चले जाइएगा। साथ साथ में KBK भी है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमारे जो वैज्ञानिक बैठे हुए हैं उनसे अधिक संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो बताएंगे। और साथ साथ में आप अपनी मिट्टी का जो परीक्षण किया, अगर हमने शुरुआत में बात की थी तो मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र यानी मृदा स्वास्थ्य केंद्र जो रहता है वहां पर जाकर, कृषि विभाग में ही रहता है, वहां पर जाकर अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य का परीक्षण अवश्य कराएं। भूमि उपचार की अगर बात करें तो भूमि उपचार करने से भूमि की जनित रोगों और कीटों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दीमक एक मुख्य समस्या है, जहां भी दीमक का प्रकोप देखा जाता है वहां पर किनोलफास 1.5% चूर्ण बनाकर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि की बुवाई से पूर्व मिलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ साथ में दीमक को कम करने के लिए खेत में सूखे फसल अवशेष हटा देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कच्चा खाद भी खेत में नहीं डालना चाहिए, जिससे दीमक में काफ़ी हद तक निजात मिल सकता है। तो बुवाई के तरीके आपको पता ही है, सामान्यतः बुवाई आज भी किसानों द्वारा छिड़काव विधि जो रहती है उससे की जाती है, साथ साथ में जिसमें सिंचाई, निराई, गुड़ाई में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बुवाई की सर्वोत्तम जो विधि है कतार विधि रहती है, तो आप किसानों को सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए, जिसमें हम बीज की उचित मात्रा डाल सकें और जिसमें कतार की कतार और पौधे की दूरी निश्चित कर सकते हैं, और विभिन्न कृषि कार्य में भी लाभदायक होता है। तो ये हमारे किसान साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी, और आपको हम सीधा स्टूडियो ले चलते हैं जहां पर हमने कुछ किसानों से बातचीत की, वो किस तरीके से फसल चक्र अपनाते हैं, किस तरीके से अपने खेतों में फसल करते हैं, आइए उनकी बातचीत हम सुन लेते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हमारे साथ सलिया जी डामोर जो कांकड़कुआ गांव के रहने वाले हैं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ अजमेर जी हैं, वो भी कांकड़कुआ गांव के रहने वाले हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तेर सिंह वाकला जी हैं, कांकड़कुआ गाँव से हैं, इनका खेती में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, इनके अनुभवों को साझा करते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं खेती अगर झाबुआ जिले की बात करें, यहाँ के आसपास के इलाकों की बात करें तो पथरीला इलाका है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। हम जानेंगे आज उन विषयों पर जानेंगे कि यहाँ पर हमारे किसान साथी किस तरीके से खेती कर सकते हैं। सबसे पहले सलिया जी आपसे हमारा सवाल है कि यहाँ पर कौन कौन किस किस प्रकार की खेती की जाती है?
1: अभी हम खेती करने के लिए तैयारी कर रहा है, इसमें हमारे मक्का होती है और कपास, यह थुवर भी होती है, मूंगफली होती है, उड़द भी होते हैं, यह बारिश के समय में हमको यह फसल मिलती है, सोयाबीन भी होते हैं, यह फसल हमको मिलती है सर।
0: अच्छा सलिया जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ पर पथरीला इलाका है, आप जानते हैं पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत भी है, हमने देखा भी है, किस तरीके से आप, किस अनुभवों के साथ आप खेती करते हैं?
1: बस खेती यही करते हैं हम, सुमासा में बारिश आते है, इसमें कोई रुका पानी, कोई कुआ है थोड़ा बहुत, उसमें यही करते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ एक दो पानी कपास को मिल जाते हैं, ज़्यादा पानी की आवश्यकता है ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा, हाँ अगर कपास की, सोयाबीन की अगर बात करें तो किस तरीके से, चूंकि आपका अनुभव हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा अनुभव है, काफ़ी सालों से आप खेती कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये कपास की खेती की जाती है, कैसे की जाती है?
1: ये सर इसमें अपन को बोवनी करते हैं कपास की, इसमें अपन को निंदाई खुदाई करनी पड़ती है और खाद बीज अपन को ये करना पड़ता है, दवाई भी करनी पड़ती है, टाइम टाइम से खाद मिलते हैं इनको, ये यूरिया भी मिलते है, क्या बोलते हैं सुपरफास्ट और डीएफी कपास को, और मक्का तो यहाँ पर यूरिया खाद से पक जाती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, ये इनको डीएफी और पोटास खाद मिलते हैं कपास को, इनकी फसल डीएफी खाद से और दवाई से होती है।
0: अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि आप किस तरीके से भूमि को तैयार करते हैं, जब कपास की खेती आप लगाते हैं किस तरीके से इसकी तैयारी करते हैं?
1: इसको अभी खेड़ाई जुताई कर रहे हैं
0: जी,
1: ये तैयारी कर रहा, अपन उसमें हल सलाया, उसके बाद अपन थोड़ा वखरा कर गेर के इनको थोड़ा कहना डेफा डेफी है या भाग तोड़ के थोड़ी कर तैयारी करेंगे, पानी बारिश को गिर गया तो इसके बाद अपन बोनी करनी है सर।
0: अच्छा, यहाँ पर किस किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर, चूंकि लाल भी मिट्टी है, किस किस प्रकार की कौन कौन सी यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है?
1: ये लाल भी है और काली भी है।
0: काली मिट्टी है,
1: काली हाँ, और इसमें भूरी मिट्टी भी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: किसी किसी को भूरी मिट्टी भी है।
0: अच्छा, ढलान होने के साथ क्या क्या आपको खेती किसानी में समस्या आती है आपको?
1: ढलान में तो सर ये पानी की समस्या होती है, इसमें
0: कितने पानी लगते हैं कपास में?
1: कपास में बस ज्यादा पानी वाले कोई दो चार पानी कर देते हैं, नहीं पानी वाले तो बस एक दो पानी में हो जाता है,
0: एक दो पानी में हो जाता है कपास। कपास से कितना मुनाफा हो जाता है जी? आपको किसान सुन रहे हैं तो कपास की खेती में बीज कहाँ से लाया जाता है और इससे पहले तैयारी क्या की जाती है उसकी?
1: इसमें बीज तो सर ये मिलते है काली बाजार से हम लाते हैं कपास का बीज, और तैयारी इनकी है, अभी तैयारी में ही है, बैठा है, लोग कर रहा है, कोई हर काम जो भी है छोड़ के खेती पे लग गया है, तैयारी कर रहा है, बारिश की समय आ रही है ऐसे करके।
0: अच्छा अच्छा,
1: यही तैयारी चल रही है सर।
0: अच्छा, खेती के अलावा यहाँ पर और क्या हमारे किसान साथी करते हैं, क्या करते हैं?
1: मजदूरी जाते हैं सर।
0: अच्छा, खेती करने के बाद मजदूरी करने के लिए
1: अभी चलेगा? अभी लोग बाग अभी भी बाहर है।
0: अच्छा,
1: बारिश की समय है तो
0: आ जाते हैं,
1: तो कोई एक दो घर पे है, नहीं आने वाले है।
0: अच्छा,
1: कुछ चार महीना करते हैं और वापस दिवाली बाद बाहर चले जाते, दाड़ की दपोड़ी यही करते
0: सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कपास की खेती में सर कितना फायदा आपको हो जाता है?
1: फायदा तो होता है सर, इस साल तो कपास का भाव भी थोड़ा ठीक रहा।
0: अच्छा,
1: तो इस साल तो फायदा लोगों का।
0: कितने महीने में फसल आ जाती है ये अपने लगाने के बाद?
1: ये लगाने के बाद तो करीब कपास को तो छह महीना हो ही जाते हैं।
0: अच्छा, जो किसान हमारे की जैसे कपास नहीं करते, उनकी जानकारी नहीं है, उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसकी बीजों की रुपाई की जाती है, किस तरीके से इसको लगाया जाता है?
1: इसको सर उसको लगाना पड़ता है, तैयारी करते हैं अपन कपास करते हैं तो इस जमीन को जब अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, खाद कई अपन ये गाय का ये खाद मिल जाते हैं, ये डाल देता है इसमें कपास अच्छा बनता है
0: जी।
1: हाँ, इसमें ठीक रहता है।
0: अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूंकि अभी हम यूरिया और हम डीएपी की बात करते हैं, पहले ज़माने में जो खेती की जाती थी वो शुद्ध गोबर की गाय के गोबर से या फिर जो जैविक पद्धति होती थी उससे हम खेती करते थे, अब क्यों, ऐसा क्या कारण हो गया है कि इसको बंद कर दिया है और इसी पर हम लोग आश्रित हो गए?
1: इसमें सर ये अभी थोड़ा माल मेवा से कम पड़ गया है।
0: हाँ, मवेशी।
1: हाँ, मवेशी तो कम है अभी। क्या है कि पहला तो एक घर में मवेशी करना 20-15 एक एक घर में करनी दो दो चार चार आठ आठ दस दस गाय रहती थी, अभी है ही नहीं।
0: क्यों नहीं है, क्या कारण है इसका?
1: अभी क्या है, अभी थोड़ा सारा सरनेमान सब थोड़ी कमी है।
0: हाँ,
1: तो अभी नहीं है, बस एक दो बैल है, किसी के पास भैंस है।
0: अच्छा अच्छा,
1: सब ये कम है अभी।
0: जैसे छोटी छोटी जमीन है तो अभी भी आवश्यकता पड़ती होगी बैलों की, हल की या बकर की?
1: वो तो

0: फायदा होता है इससे?
1: हाँ, इससे होता है ना।
0: मुर्गी पालन करते हैं?
1: मुर्गी पालन तो ये देसी मुर्गा है घर पे।
0: अच्छा अच्छा करते हैं।
1: हाँ है ना।
0: अच्छा, अब जो समस्या जो आप कह रहे हैं कि कपास में हम लोग जैविक खाद यानी गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मतलब क्यों डालते हैं डीएपी यूरिया?
1: तो वो अभी क्या है सर, लगातार अपन ने डाल दिया तो ये खाद तो डाले बिना तो नहीं होते है।
0: अच्छा,
1: अब तो वो क्या है, खाने की अपन को आदत कुछ पड़ गई तो वो खाद डाले बिना तो होते ही नहीं फसल।
0: अच्छा अच्छा,
1: ऐसा है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या अनुभव हैं खेती किसानी में, आप कितने वर्षों से खेती किसानी कर रहे हैं?
2: सर 6 साल हो गया है।
0: 20 साल से खेती कर रहे हैं। कौन कौन सी आप फसल उगाते हैं, कैसे करते हैं?
2: बस मूंगफली,
0: मूंगफली भी करते हैं। अच्छा अच्छा,
2: उड़द थोड़े करते हैं, ज्यादा नहीं करते
0: हैं,
2: 10-15 किलो।
0: अच्छा कर देते हैं। इनको आवाज में हमारी समझ मतलब समझ में नहीं आ रही, तो आप करो।
3: हाँ, तो फिर से स्टार्ट करो या
4: नहीं, उसको कंटिन्यू करो। ठीक स्टार्ट, यहीं से जो हमने सवाल पूछे।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, हमारे स्टूडियो में हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और हमारे बहुत सारे किसान साथी इसको अच्छे तरीके से सुन भी रहे होंगे कि किस तरीके से झाबुआ जिले के हमारे किसान साथी कैसे खेती करते हैं, कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं अपनी खेती किसानी में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं और इसके बाद और भी हमारे साथी हमारे स्टूडियो में हैं, उनकी भी बातचीत हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो जाइएगा नहीं, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप लोग रेडियो अपनी बातें।

0: कई नी कई प्रकार की जगह से मतलब तार जगह के कई तरह से मतलब बैडू है घेर वाली है ना मालमई
1: बैडू है काले जमीन है
0: पाकी जातो है केम आपण मुफळा पाकी जाता है अड़द हो है अंठुवर से ने आपण हलिये थई गये हूँ कह रहा आपण सोयाबीन है कि नहीं ते फिर बीजी फसल लेवा हरू खेतर से निमाला
1: बीजी फसल लेवा हर खेतर रियो पर आती हूँ बीजी फसल हूँ लेवा फिर
0: क्या पानी नी कमी से
1: पानी नी कमी ना
0: अच्छा पानी नी कमी से ते तन मतलब एके एके फसल मला है
1: एके सुमा सावल फसल
0: ते इनी खेत मतलब आप फसल ने अलावा फिर हूँ से मतलब फिर हूँ तो कमावार हूँ करी आप हूँ
1: कमावार बस ये 12 महीना या फिर 6 महीना कमाई कर ली फिर
0: डूंगर वसिया नी अपनी कान है डूंगर वसिया नी कई नी आपू कहाँ सरावा ली जाये है समस्या ये भी है हाँ सरवा नी थोड़ी दिक्कत है ठीक ठीक तो तन हूँ लगे की आप अगर बोकड़ा आपू पाली तो बोकड़ा में अपन फायदो से नीचे है ना और बोकड़ा में फायदो है लेकिन अपन एक असल प्रजाति नी बोकड़ी मलवी जो है हमने अपना बोकड़ा थोड़ा से मादा दुबला पातला से है ना तो अपन थोड़ी असल प्रजाति नी थोड़े असल जो
2: थोड़े कोलादार
0: है थोड़े असल जिनो मां भी काजू पड़े जो है दूध खावा भी अपन लागी थोड़ो बढ़िया क्वालिटी नु मिली जाए बढ़िया रहे अपन डगरियों में भी अपन इमेज देखी है ना डगरा है अपना डोबा है इनमें भी अपन असल असल
2: खोजदार
0: खोजदार बढ़िया मिल जाए हाँ ओलादार अपन मतलब ताजो थोड़ा बनी सके है ना
2: सही
0: है सलिया भाई इन्हें अलावा तन हूँ लागे अपन खेती में हूँ करव जो है आप हूँ करी सकी हमने तो अपन मान लो अगर पानी की समस्या है अपनी कन हमने लेकिन अगर पानी की समस्या ये अपनी थोड़ी कम थी जाए तो आप हूँ करी सकी
2: बस पानी नी समस्या कम थे जाए फिर हूँ करी सकी पानी ऊपर है या
0: हाँ अगली पानी पर से जैसे कि आप वाड़ी है कि नहीं अगर वाड़ी करवा मांगी तो हमने हमने आप भिंडा है ग्वालफड़ा है काकड़ा है अपने तरबूजा है ना
2: तरबूज तो हमारा सुमा हम कम करे है
0: हाँ नहीं पर कहीं ना करे है मार तानो सुकेड़ो लीन गयो है एक जनो तो अपन अंतर विले मेरे एक जनो है तिने तरबूज लगाड़िया है
2: सुमा हर उनाला हर
0: हाँ उनाला
2: नहीं उनाला हर उत्तर यहाँ लोगों ही हाँ पानी नहीं समस्या है
0: हाँ जिना
2: राम राम नहीं
0: हाँ तो जिना पानी नहीं समस्या है तिने हरू आप की सकी के मतलब थोड़ी ये दिक्कत आवे है ना
2: पानी नहीं दिक्कत है ना
0: हाँ देखो हम कृषि में जो अपन जो बातें कर रहे हैं जो हमारी चर्चा चल रही है
3: जी
0: इसमें हम ये चर्चा कर रहे थे कि जो हमारी कृषि के लिए जो हमारे पास कौन कौन सी जमीन है ना उपजाऊ जमीन हमारे पास कौन कौन सी है कि हम आपको की कम कहीं नी जगह अपने कन है ना तो उसमें क्या क्या मतलब हूँ आपको पकड़ी सकी अपनी इस जगह में है ना तो
3: देखो अपनी जगह में हमने अपने कन जगह तो भूरी जगह भी है अने काली जगह भी है
0: हाँ
3: तो जो भाठोड़ी जमीन है जो अपने कन तो भाठोड़ी जमीन में मूफड़ा पाकी सके आने इन अलावा जैसे कि अगर मूफड़ा पकड़ सके अड़द पकड़ सकी सोयाबीन भी पकड़ सकी
0: बिल्कुल
3: आने फिर इन अलावा जैसे काली जमीन है तो कपा पकड़ सकी आने फिर इन बाद है तो गेहूं पकड़ सकी सड़ा पकड़ सकी
0: बिल्कुल बिल्कुल ते या आपू देखे या सड़ा है गेहूं है यू हंगलू बीज आपून मतलब केतरू पड़ी जाए
3: जैसे ये जमीन ऊपर निर्भर करे से
0: अच्छा
3: हाँ जेवी रीतनी जो जमीन हो अने जेत्री जमीन हो एवी रीते यू आपू ओर सकी
0: अच्छा ते मतलब तार तार हूँ के वो मतलब बीज कहाँ तू लाऊं जो है आपून
3: इम तो बीज तो जैसे कि फिलहाल आपो अगर आपड़ा घेर मेले लो होए
0: हाँ।
3: तो आपड़ा घेर नो बीज आपो वावे सके ओरे सके बाकी आपड़े कर नहीं होए
0: हाँ।
3: तो अपन फिर मूल लेव पड़े
0: मूल लेव पड़े ते क्या मतलब कदी कदी मन को बात करे कि आपो गैसा जीव पकड़ियो फिर त्यू त्यू भी आपू लगाड़ी थोड़ी तीनी उपज थोड़ी कम थी जाए एम कर बात करें।
3: हाँ ये बात तो बरोबर से केम के तीन जो उपज कम थी जाए केम के जो इना मनखाकन जो बीज है तो इना महती जैसे 100% मोटो बीज जो नहीं रह सके इना कन मिक्स बीज रे कई नानो बीज रे कई मोटो बीज रे तो नाना बीज न तीना जो पौधो हल्को रे तो हल्का पौधा न कारण तीनों जो कम पाक मळे उपजाव कम मळे।
0: आपू गवर्नमेंट अपन केवी की है तो केवी की थी भी अपन वरे साल कैसा कैसा धान आले है तो तमार हूँ कहो अगर ताती मले तीना धान ने अपन लेवू जो नहीं लेव जो या तमन मले कि नहीं मले तीन धान।
3: देखो आज तक हमारा एरिया में जैसे ग्रामीण क्षेत्र है गावड़ा में से गावड़ा में ये सारी जानकारी नहीं मलवा करे। अच्छा। एक फेर बीजी बात से जिन जानकारी मले तो घना खरा लोग जेवी रीते पेलो के दूध भी धोड़ो घोड़मो धोड़ो ते हूँ से के जो दूध नो गरम हतो ने दूध पीधो ने त्यो सरो पड़े मर्यो तो पछी त्यो पेला घोड़मान पण फूकी फूकी पीए एवी रीते घणा लोको जो वात करे ते तीनी वात ने कारणे लोको हरी रीते वात पर ध्यान नहीं दे ते ये जो सरकारी जो लाभ है अने सरकारी जो मळे बीज इना बारेम लोको जानकारी नहीं मळे एतरे लोको तीने जानकारी लेवा हारे तैयार नहीं थाय अने तीना लोको ने यु वस्तु नहीं मळवा सके।
0: बिलकुल बिलकुल ते मतलब तू एम केवा मांगी रह्यो के एक वारी हूँ से आपू पेलखा आपू बरो करीन ली ली अन कदी कदी फिर त्यो बीज असल भी नहीं निकले या फिर मतलब आलू आलू हम करीन कदी आपू मळे होतो नहीं बीज है ना।
3: हाँ बात नहीं ये थाई।
0: हाँ ते आपू एम लागे के यार तानु फिर पाक्यू पाक्यू नहीं पाक्यू एम करीन आपू फिर नहीं यार कहतो मळी मळी नहीं थायु थे कि नहीं।
3: हाँ।
0: तो हेम करीन आपू तिन पर एक विश्वास नहीं करी पावी है ना
3: भरोसा नहीं करी सकी।
0: ठीक असल बात कहती तमे।

0: तो चलो अभी हम बात करते हैं, आप बातें करी हैं कि अब गर्मी में हूँ फसल आप करी सकी, फसल नहीं करी थे आप वाड़ी, मतलब आप अधिकतर देखी कि हाँ बाजार में तो घनी सब्जियों अलग अलग प्रकार की सब्जियों है अने घनी महंगी भी थी गई हाल, कहीं नहीं भी सब्जी आप ली ली 40 रुपया थी कम मिले नहीं हर सब्जी है ना, तो आप लगे कि आप अपना अपना खेतर में हूँ हमने कर सकी।
1: देखो हमने फिलहाल ये हमने तो पानी ना दन आवी गया से, तो इना पानी ना दनों में अगर कहनो भाई अगर सब्जी भाजी नु कई करवा चाहे तो हमने टुका टगला दन है तो कदाच कोई खो माती कहनो कर सके केम के हगला नहीं कर सके केम हगला कन पानी नी सुविधा नहीं थई सके। अने आपु जरे पानी नी सुविधा ना बारे में बात करिए ते घना बदा नेता या से त्या के से बोट ना समय मा के भाई तब मन बोट आल होते हूं तमन नर्मदा नदी नो पानी तमार ते पुगाड़ी, पण त्यो पानी तो ફેરવા હારું અને પકડવા હારું ઘણી જ મોટી વાત, પણ પાણી પીવા તક નહીં મળી રહ્યું
0: ખરી,
1: તો આજની તારીખમાં હું છે ઘણા લોકો આગળ કરવાની ઉમેદમાં છે બચારા, પણ તેના કારણે પાણીની સુવિધા નહીં મળે એટલે ત્યાં લોકો નહીં કરી શકે, એના માંથી હો માંથી લગભગ 5% યા 10% હિ આદમી કઈના જો પાણી હોય તે આદમી કરી શકે તે હું કરી શકે
2: કઈ
1: ખેતીવાડી કરે તેનામાંથી જૈસે ગવાળ ફળ હૈ યા ફેર ભીંડા હૈ યા ફેર તોરૈયા હૈ યા કારેલા હૈ या ये भी कई सब्जी भाजी लगाड़ सके,
2: गलकी है
0: हाँ गलका
1: है टमाटा है
0: टमाटा है बढ़िया। तो हमने जैसे कि हाँ पानी आवा वालो से है ना, आप समय थी गया आप पानी आया मा से थोड़ा जूट दन ले काठे करो, तो हमने अधिकतर आप देखी के जो रोप तैयार करवानो समय है ना, तो आप कह सके कि हमने अगर रोप तैयार करवानो जो समय

0: यो से है ने कि अगर आप चाहिए तो आप मरस नो रोप तैयार करी सकी फिर आप टमाटा नो करी सकी है ना तो जो भी भाई अपन वाड़ी करते है मतलब मोटा मोटा स्तर पर करे तो तीन यार यो सा लेके यो एक असल समय है ना कि आप ये आप करी सकी तो तमन हूँ लागे मरसू नी खेती मतलब जेम के आप आखा खेतर में मूफड़ा करिए आखा खेतर में आप मक्की कर दिए सोयाबीन कर दिए अन्न अलग अलग आप फसल करिए देखा जाए तो मरा सुधा पानी नी फसल से है ना तो इनी फसल ने अपन आप घना कम से इनी फसल ने करिए जबकि आप वगैरह मरस नहीं तो अपना खावा बने नहीं है ना तो हूँ कहूँ से तमार
1: मरसमान भाई मरस की खेती तो आप करी सकी मरस की खेती में उपजा भी असल से अने मरस नो फायदो पण से क्योंकि हमने मरस तो घना मोहगा पण से तो मरस की खेती करवी एक असल चीज है पण खास कर ये बात है कि मरस की खेती में आपने कदास कदास घाटो पण थई जाय
0: बिल्कुल
1: तो तीन मा सरकार अगर मरस नी खेती आपो करी सरकार अगर आपो घाटो थई तो थोड़ो घणो आपन पासो इन मा कई सरकार आपरी मदद करे तो फिर बीजे वखत ना पण आपो मरस नी खेती करवा भी असर रे पण अमुक अमुक हो सके कई कोड़ाई जाय कई मरस मा एवो कई कीटाणु लागी जाय मरस मा कई केवी आवी जाय तकलीफ तो फिर मरस नी लागे तर घणा खरा ने मरस वेसवानी जगह पर मरस खावा तो खुदा नी मळे
0: बिल्कुल खुमान भाई ते खरी बात कह दी के मरस अपन हूँ से कि इन्हीं बात ने मतलब अपन करते घना लिए पर अपन फिर तीन माह हूँ बीमारियों आवे तीन वक्त अगर अगर पूरी फसल खराब थी तो फिर आपको लेवानो देव पड़ जाए है ना
1: लेवानो देव पड़ जाए
0: तो कहीं ना कहीं आपको एम देखी कि अपने में ये बात नहीं थोड़ी अपन अवेयरनेस की कमी है ना जो चीजें मतलब हम बताड़ी जो थोड़ी बोलना चाहिए कि हमको इस चीज के बारे में पता नहीं है ना
1: जानकारी
0: की कमी है जानकारी का अभाव है हमें है ना सलिया भाई तमार हूँ कि अगर आप मरसू की खेती करवा मांगी ते कि कम तारो अगर तारो हमने तक तारो हूँ अनुभव से तारो कि ते अगर कभी करी हो या तन हूँ लागे कि मरसू की खेती ताजी है या फिर आप हमने जो करी रहा ये ताजी से
2: नहीं मरसू की खेती भी बढ़िया है हूँ है तीन माह आपको करी दिए तो समय समय पर अपन दवा है कहीं भी नो ध्यान रखी करव पड़े तो मरसू में फायदा भी है और आई वही सैले अपन पहले कहीं देख ले तो अरे मरस खराब था क्या कहीं नहीं करिए तो फसल नहीं क्यों आदमी इतने मई कोई सोट मरसू ने खेती करी नहीं
0: अच्छा
2: थोड़ी बहुत खावा पूर्ति कर ली
0: ठीक अगर अगर आप केवी की नहीं मदद ली ना अगर केवी के वाला अगर आप के हमू तमुन मतलब समय समय पर बताड़ हूँ ने ये अपन मतलब मरस नु खेतर करवा हरू अगर तमुन प्रोत्साहन करे तो तमु इन करवा मांगो कि नहीं करवा मांगो
2: अगर अपन कोई भाई जानकारी कदी आले तो करी भी सकी है
0: बिल्कुल
2: मेहनत करी सकी है आप
0: बिल्कुल है ना तो जम के अगर अभी तो हमारे पास मतलब देखी आप अफ्रीकन हमने जानकारी ना थोड़ा अभाव है इन वजह थी आप इनमें घना कम है हमने अपने आप देखी तो आप खाली वाड़ी करिए आप थोड़ी सी घेर खाए इतना
2: खावा पूर्ति
0: है ना घेर खावा पूर्ता आप हमने करिए है अधिकतर तो आप सोयाबीन में लागेला है अपन मक्की है सोयाबीन है अपन जुआर है ना तो अपन पारंपरिक धान अजू तक सालीरों से पर हाँ अपना कोदरा ने याद खोवाई गया क्या
2: बद्दू खोवाई गया
0: हाँ कोदरा खोवाई गया राड़ो खोवाई गयो
2: तीन लोग हमने ना स्वरा ओळखे ही नहीं
0: ओळखे
2: भी है तो अगाड़ी डोकरा हूँ बोलता है हामली करी
0: हामली हाँ
2: फिर बादली एक हूँ बोलता कुरी
0: દેખે જાય આપણે કોદરા તો તમે કોઈ ના વરું ઉદા મેલી દો કદી હળેલી ગળે નહી ત્યાં
2: કઈ નહી થાય
0: ત્યાં હે ને ત્યાં કોદરા અને ભાગેલું ડગરું હતું કે હા હા તનમાં તો પાછું બેઠું થઈ જાય
2: ને દડી ધાન જો કોદરા ખાલી દા તૂઠણેલું ડગરું ભી બેઠું થાય જાય એટલી તાકાત કોદરામાં હતી
0: હા એટલી તાકાત કોદરામાં હતી ખરી તો એ કોદરા હું એ મતલબ હું અગાડી એક જગ્યા હતો ત્યાં કે હું એ વાટે લાયે કોદરા વાટી ને હમણાં ની રાબડી સુધી આજ સુધી આપું ભૂલી ગયા
2: કોદરા ની રાબડી એવી લાગે કે
0: એક બાવટા ની એક ની કોદરા ની એ આપણ અગર આપણે દેખી ને મોટા મોટા મોલું માં तार का ये असल वैसे ही रही 150 रुपए किलो तक हूँ खुदे देखी ना यो तार की ते बढ़िया वैसा है पर आप ये धान जुनू धान आप थोड़ा खोई ना क्यों तो इन पर भी आप मतलब करी सकी यू भी असल बढ़िया है लेकिन इन नानू रहते अवेरवा मा काटवा मा
2: थोड़ी
0: दिक्कत पड़े थोड़ी
2: नहीं गाड़ी डोकरा यूज करियो ना
0: हाँ यूज करियो यू खादो
2: नहीं गुजरो अधिक कर गुजरानी फसल करता ज्यादा गुजरो केम के धान रेतु ने पेलखो गुजरो वेगो पाकी जातो
0: खरो
2: इनी हारो गुजरानु कमाई करता न करता डोकरा
0: हां गुजरो है एंड फिर हमली है
2: हमली है
0: हमली वेगो आ जान साली दन
2: वेगो आ जाए
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम
4: आपनु रेडियो आपडी वाटें
0: आते हाँ आप चर्चा करी के किकम मतलब कहीं भी एक खेती आप ये करी तीन खेती में आप असल फायदो पड़ियो ते खुमान भाई तमु बतावा चाहो के, मतलब कहीं खेती तमार हेरू असल सक्सेस री कि बढ़िया तरीके थी तीन तमार पाक में भी आई कमाई भी असल थी तीन तीन कमाई थी
1: देखो इस साल कमाई तो आप देखी सके कपा मस्त रहो
0: अच्छा
1: हाँ कपा एवी रीते मस्त रहो कि कपा मा कोई पण जातनो रोग नहीं पड़ियो अने कपा मा कोई पण प्रकार नो जैसे कि वधारे परेशानी नहीं आवी तो कपा असल रियो अने कपा पाक्यो भी खरो अने कपा घणो मस्त रियो अने कपा नो असल भाव भी असल हतो
0: बिल्कुल ते कपा मतलब हुन आपु देखी ते इना साल मा ये कपा असल पाक्यो है ना
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल सलिया भाई तमु हूँ कहवा मांगो कि तमारी कहीं नहीं फसल मतलब असल रही
2: मारे तो बस यही कफा नहीं
0: अच्छा कफा तो ये भी कपास करे लो
2: कपास करे लो
0: तो इन्हें मतलब बड़े साल कपा करो से या फिर
2: बड़े साल करता हूँ साल कफा नहीं फसल
0: बढ़िया रही हाँ। अच्छा
2: मतलब ते, हाँ ठीक रही और इनमा हूँ है क्या भाव भी बढ़िया रही हो तो इतने अमून कफा नज कमा फसल बढ़िया लगी
0: बढ़िया कमाई में भी आवी है ना तो हाँ आपते साल हूँ करवानी हो सी रहा है
2: बस आपते साल तो देख सोया बीज करिए तो सोया बीज ना पैसा तो दिवाली था नहीं पूरा था जाए कपास ना पैसा मुन मला है
0: मला है
2: केना लेन देन थोड़ी बहुत था इसलिए अपन कफा कर दी
0: अच्छा तेर सिंह भाई तमार हूं के हूं मतलब कहीं नहीं खेती तमार ठीक रही हां तेर सिंह भाई बोलो
5: खेती बस ये कफा मुफले
0: अच्छा को कफा मुफले था तमु ये भी कफा मुफलास करेला अच्छा ते मतलब कपास असल रियो है ना
5: हां कपास असल रियो मैंने सोयाबीन करी सोयाबीन में भी लड़ पड़ जाए
0: हां को सोयाबीन में भी लड़ पड़े
5: थुवर करे थुवर में भी लड़ पड़ जाए
0: हां थुवर में भी जेली खाए है ना दवा नाख्या वगैरह तो काम नहीं साले
5: काम नहीं साले
0: ते आप मतलब बाजार ने वाली दवा वापरो से कि आप घर बनावेली जैविक
5: नहीं बाजार ही लावी हम दे
0: बाजार थी लावी ठीक ठीक ठीक अजमेर जी तमुए कहीं नहीं फसल करेली तमुन कहीं नहीं फसल में असल फायदो था इस साल तमु हूँ कहीं नहीं फसल करवानी हो सी रहा है
6: इस साल ये साल तमु कपा करे लो
0: कपा करे लो
6: तो कपा ना भाव पी रहे हो
0: हाँ।
6: तो कायदे सर ए भाव रे वो जो है और ठीक रही हूँ
0: अच्छा कप्पा ठीक रहो ना हाँ आवते भी कप्पा करवाना विचार से
6: विचार थे पण हूँ वाला केवो भाव आवे
0: केवो भाव आवे मतलब अजमेर जी हूँ तन एम पूछवा मांगू कि अपना लोग लेखू देखे थे ना कि आई हूँ मोवड़ी मतलब डोला कम लग्या से ते मुफड़ा कम आव है अने आपण आमला जरी आम है ना ते आपण गाँव में एक एक कहीं कहीं झाड़ रहे या फिर झाड़ू देखी कहीं लेखा देखे से है केवी रीते
6: नोकरा है त्या करे से
0: है करे ते हूँ किरा है हूँ हूँ चर्चा में आवी रू के आपण हूँ पाकवानू से हूँ
6: तर हामड़ी नहीं से
0: कोई ना हामड़ी हाल
6: नहीं हामड़ी
0: अच्छा आपण सलिया भाई ते कई हमड़वा में आवी कि नहीं कहीं बात के हूँ कहीं धान पाखे कहीं लेखो देखना रहा हूँ किरा है ना
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम
4: आपनो रेडियो आपडी वाते
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में और इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुना और हम सभी किसान साथियों को जो हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं और खास तौर पर ऐसे ही हमारे किसान साथी यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं आपको लगता है कि हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना है तो जरूर हमारे स्टूडियो में आइएगा अपनी बात को रखिएगा क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है आपके लिए है, आपकी बात को रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मंच आपके लिए बनाया गया है। तो साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी से जाने का, आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
4: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
4: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
3: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी कर रहे होंगे आगामी फसल किस तरीके से करें। और खेतों की तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी अब तो समझ ही गए होंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यानी खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक वो छोटी छोटी बात को हम लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती है। खास तौर पर देखा जा रहा है कि पथरीला इलाका है और झाबुआ जिले को देखा जाए तो किसान साथियों के पास सीमित संसाधन, सीमित जगह होने के कारण किसान साथी अच्छी तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों यदि आप वैज्ञानिक विधि से या फिर आपको लगता है कि हमें छोटे ही रकबे में अच्छी फसलों को करना है तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी या फिर वैज्ञानिक की सलाह लेकर अपने खेतों को अच्छा हरा भरा बना सकते हैं और साथ में अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम उन छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होती है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बातें खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम नीम की खेती, चूंकि नीम की खेती भारतीय संस्कृति में नीम को एक विशेष महत्व मिलता है और नीम को यहाँ बहुत सी मान्यताओं के साथ जोड़ा भी गया है। नीम की गुणवाणी औषधि का दर्जा भी दिया गया है और नीम की खेती भी इतनी लाभकारी भी साबित होती है जिसमें मौजूद औषधीय गुण इतने गुणकारी और मूल्यवान हैं जिनकी इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। भारत में कई स्थानों पर इसे पूजा भी जाता है और नीम का उपयोग दवाइयों के तौर पर किया जाता है। नीम से निर्मित तेल और निवोलियों से एकत्रित करके इसे बाजार में अच्छे भाव में बेचा जाता है। यह मैली ऐसी कुल का पौधा है, इसको मुख्य तह नाम दिया जाना जाता है। इसमें नीम पेड़, मोरगासा पेड़, भारतीय बकाहन, सफ़ेद देवदार, स्वर्ण पेड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों नीम के होने वाले फायदे के बारे में भी थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि घाव पर असरदार भी होता है नीम का पौधा, क्योंकि नीम में उपस्थित एंटीबायोटिक गुण जो रहते हैं अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं। इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाकर घाव को भराया जाता है। नीम की दातुन भी, क्योंकि आस पास नीम की दातुन नहीं मिलती है, शहरों में खासतौर पर ये नहीं मिलती है और शहर के लोग खास तौर पर इसको तलाशते हैं कि नीम की दातुन कहाँ मिले। और कोविड काल में अगर देखा जाए तो इसका तो जवाब ही नहीं है। वास्तव में नीम की निमोली और नीम की दातुन, नीम की कोंप को लोग देख रहे थे, कहाँ पर नीम का पौधा है वहाँ पर जाकर ताजी ताजी हवा ले रहे थे, नीम की कोंप खा रहे थे जिससे हमारे खून भी साफ होता है। और दातुन की अगर बात है, रोजाना नीम का दातुन करने से दांतों में मजबूती बनी रहती है और दांतों में किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है। साथ में बालों के लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों को पीसकर यदि बालों में लगाया जाता है तो बहुत लाभकारी साबित होता है। नीम का काढ़ा, आपको पता ही होगा कि नीम के पत्तों को उबालकर यदि काढ़ा बनाकर हम रोजाना एक गिलास पिया जाए तो उसके शरीर में अत्यंत लाभकारी होता है। नीम के पानी से स्नान करना, नीम के पत्तों को मिलाकर यदि पानी में डालकर स्नान किया जाए तो इसके शरीर साफ होता है और बहुत से फायदे भी हमें मिलते हैं। खासतौर में मलेरिया में असरदार होता है। नीम मलेरिया में फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखने में अत्यंत सहायक है। जिस वातावरण में नीम के पेड़ रहते हैं वहां पर मलेरिया नहीं फैलता है। नीम के पत्तों को जलाकर रात को धुआं करके मच्छर नष्ट हो जाते हैं और विषम ज्वर जिसे मलेरिया कहा जाता है उससे भी बचा जा सकता है। बिच्छू को काटने में असरदार होता है, क्योंकि बिच्छू को काटने पर नीम के पत्तों को मसल कर काटे गए स्थान पर लगाकर यदि लगाते हैं तो जलन नहीं होती है और जहर का भी असर कम होता है। उपयुक्त जलवायु के लिए, क्योंकि नीम की खेती करने के लिए आपको तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 400 से 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसको उगाने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसको आप सभी प्रकार की मिट्टी में कैसे भी और सभी प्रकार की भूमि, जैसे सुर्ख पथरीली इलाका हो, रीतीला इलाका हो, खासतौर पर अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो पथरीला इलाका है, तो यहाँ पर आसान तरीके से इसको उगाया जा सकता है। गहरी चिकनी मिट्टी हो वहाँ पर भी उगाया जा सकता है, भूमि में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। आरंभिक अवस्था में नीम के पौधों को पाले का खतरा बना रहता है, अतः वृक्षारोपण के बाद एक वर्ष तक पाले से बचाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पाला सहन कर सकने में यह सक्षम होकर तैयार होता है। कैसे तैयार करें? वैसे तो नीम सभी तरह की मिट्टी में उगाया जाता है, फिर भी खेत को अनेकों बार जोतकर इसमें कंकड़ पत्थर अलग करके इसको खेती लायक बनाया जाता है। और बीज का उपयोग कैसे करें? बीजों को खरीद करके समय आपको इतनी गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना होगा जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। आप इसको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बीज भंडार केंद्र से खरीद सकते हैं। बीज के अंडे जैसे सफ़ेद और दीर्घवर्तीय होते हैं। बुवाई का सही समय जो रहता है, नीम की बुवाई का समय जो रहता है, पनीरी लगाना अवश्य याद रखने के लैम रखना जरूरी रहता है। और नीम का कलम दार को आसानी से लगाया जाता है। 12 से 13 महीने पुरानी नर्सरी के पौधों के कलम को तैयार किया जाता है। सीधी बुवाई आसान होती है, इसे छिद्र रोपण छिटका विधि कतारों की बुवाई द्वारा लगाया जाता है। और यह खेतों पर निर्भर करता है कि आपके खेत कैसे हैं। तो ये सारी बातें हैं और अधिक बात के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, तो उसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने नीम की खेती कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM।

0: आप लोग रेडियो आप ही बात है।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आपने इस सभीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस खास रिपोर्ट को हम सुनते हैं और जानते हैं नीम के कैसे हम खेती कर सकते हैं, नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं और इसके आइए हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
3: कृषि प्रधान देश के लिए खाद आत्मा की तरह होती है और इस आत्मा की सलामती के लिए किसान हमेशा तत्परता के साथ कोशिश करता रहता है। किसान की आजीविका का साधन खेती है और खेती खुशहाल रहे इसके लिए इसमें इस्तेमाल होने वाला खाद सीधे तौर पर उसका साथी होता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सरकार ने अब यूरिया जैसे महत्वपूर्ण खाद में 100% नीम के इस्तेमाल की बाध्यता कर दी है। सरकार की इस बेहतरीन पहल के बाद से नीम की मांग बढ़ गई है। देश की कई अग्रणी संस्थाएं जो पहले ही नीम पर शोध कर रही थी, उन्होंने अब बढ़ चढ़कर इसके शोध और प्रयोग के दायरे को बढ़ा दिया है। हर रोज नीम से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पिछले कई सालों से नीम को लेकर अलग अलग शोध कर रहा है। शोध के दौरान ही संस्था ने एक ऐसी नीम की वैरायटी की खोज की जो न सिर्फ कम समय में फल देने के लिए तैयार हो जाता है बल्कि करीब करीब हर परिस्थिति में इसको उगाया भी जा सकता है।
4: पहली बार फूल आते हैं लगभग जो सामान्य प्रजातियां हैं सामान्य ग्रोइंग नीम है औसत 5 साल के बाद आते हैं। 5 से शुरुआत होकर के 6, 7, 8 तक भी आते हैं। लेकिन हमारी जो विकसित प्रजातियां हैं ये प्रजातियां दूसरे साल प्लांटेशन के दूसरे साल से ही फल फूल आना शुरू करते हैं और तीसरी चौथी या फोर्थ ईयर का आता है तो सफिशियंट मात्रा में बीज हार्वेस्ट किया जा सकता है।
3: नीम पर नए नए शोध कर रहे वन वैज्ञानिकों का कहना है कि नीम की खेती से न सिर्फ किसानों की आय में इजाफा हो सकता है बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वन वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में नीम की खेती किसानों की आय को कई गुना बढ़ा सकती है।
5: जहाँ नीम एक तरह से एक फंडरू ट्री था जिसका कोई वैल्यू नहीं था सवाए इसके कि हम कोई छाया ले लें कुछ निम्बोलिया FIM बना लें, आज ये एक कमर्शियल क्रॉप में तब्दील एक तरह से कन्वर्ट हो रही है और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है जहाँ वृक्ष और कृषि दोनों जो जो जो क्रॉप्स हैं फसलें हैं ये आपस में मिलके किसान को एक अतिरिक्त आय और यूं कहूं कि जो एडिड इनकम है उसकी तरफ खींच रहे हैं।
3: नीम की मांग लगातार बढ़ रही है। खाद बनाने वाली कंपनियां भी नीम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में देश की अग्रणी खाद बनाने वाली कंपनी इफको ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता कर नीम की नई वैरायटी के रिसर्च और खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में कलोल में मौजूद इफको की खाद कंपनी ने कई एकड़ जमीन नीम की खेती के लिए FRI को दी है ताकि यहां इसकी खेती के साथ साथ रिसर्च भी किया जा सके।
6: पहले हम लोगों ने बहुत सारी जगह इसका प्रयास किया, विदेशों में भी कई जगह प्रयास किया गया लेकिन अंतिम निर्णय यह हुआ कि हम अपने देश के शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका शोध करेंगे। वहां पे हम लोग गए, वहां के निदेशक से बात की और निदेशक से बात करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि पॉलीप्लाइडी विधि से जिसमें नीम में क्रोमोसोम्स के नंबर को बढ़ा करके इसके उत्पादन को तेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसकी ग्रोथ को तेज किया जा सकता है और उसमें नीम का तेल और एजरडिक्टिन की मात्रा दोनों बढ़ाई जा सकती है। तो ये शोध परियोजना यहाँ से शुरू होती है, फिर वो शोध परियोजना का को हम लोगों ने वित्तीय मदद की और उसका अनुश्रवण, उनके लिए जो भी जरूरतें थी, उनके लिए जमीन की जरूरत थी, उनके लिए फंड्स की जरूरत थी, उनके लिए आदमी की जरूरत थी, जो भी उनकी आवश्यकताएं हुई उन आवश्यकताओं को पूरा करके ये 6 साल का अनवरत प्रयास हमारी इफ्को की टीम ने और एफआरआई के साइंटिस्ट ने, बहुत ही योग्य वैज्ञानिक है एफआरआई के, उन लोगों के प्रयास से 6 प्रजातियां रिलीज हुई हैं।
3: नीम को बढ़ावा देने के लिए आखिर इफ्को ने ये पहल क्यों की, इसकी वजह खुद कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार बता रहे हैं।
6: 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम अब देश में 100% नीम लेपित यूरिया का ही प्रयोग करेंगे, यानी जितना भी यूरिया बाजार में बिकता है, जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं, उसमें नीम के तेल की, नीम की एक लेपन किया जाएगा, नीम की एक कोट होगी। तो वो एक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उससे प्रेरित होकर हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वीएस अवस्थी साहब ने अपनी संस्था के में निर्णय लिया कि इतना नीम का तेल आएगा कहाँ से और इतना निमोली कहाँ से पैदा होगी, इसके उत्पादन को बढ़ाना है और इसके नीम में कोई ऐसी शोध करके प्रजाति हमको लानी है जिससे नीम का तेल ज्यादा मिले, वो जल्दी बढ़े, जो भी निमोली किसान भाई एकत्रित करते हैं उनको क्रय करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था अगर हम कर लें, और उस सुनिश्चित व्यवस्था को क्रय करने के बाद में, क्रय करके उसका जो आगे का काम है, उसके प्रोसेसिंग का काम है, विधायन का काम है, उसे उत्पाद बनाने का काम है, इसको भी अगर हम बढ़ावा दें, तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने में, उत्पादन को बढ़ाने में और साथ ही साथ जितने भी रसायन मुक्त खेती के लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने बनाए हैं, उन सबको पूरा करने में एक बहुत बहुत ही लाभकारी कदम होगा इसके लिए।
7: इसमें पॉलीप्लांटिंग टेक्निक से एकदम टिश्यू कल्चर के माध्यम से नीम के पेड़ को ऐसा करें कि वे 3 या 5 साल के अंदर निमोली देने लगे, तो उसके कारण 2 चीजें होंगी, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उसके कारण वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम होगा, और दूसरा ये निमोली ये जल्दी आ जाएगी तो उसको 15 रुपए किलो पे हम खरीदते भी हैं, और इस पे हम रिसर्च भी करा रहे हैं कि किस तरीके से नीम के और जो अच्छी चीजें हो सकती हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड बन सकते हैं नीम से, उसमें भी बायोपेस्टिसाइड के माध्यम से हम किसान को ज्यादा पैसे दे सकते हैं, उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया और उनको उनके साथ संपर्क स्थापित करके हमने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको कि हमने टोटली फंड किया कि हमें नीम की वैरायटीज वो आप डेवलप करके दीजिए जो पॉलीप्लांटिंग तरीके से टिश्यू कल्चर के माध्यम से जल्दी से जिनका विकास हो और इसमें फूल और फल जल्दी आने लगे। तो इस दिशा में हमारे देश में तकरीबन 60 से ज्यादा वैरायटीज है नीम की।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और अपन ने वैरायटी को जाना कि नीम की कौन कौन सी वैरायटी है और खास तौर पर नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में जाना कार्यक्रम में, और बहुत सारी जानकारी है नीम से जुड़ी यानी खेती से जुड़ी। लेकिन इसको सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात।
8: आप

0: था।
1: वन वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत और इनकी टीम पिछले कई सालों से वरिष्ठ वन वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में नीम पर लगातार शोध कर रही है। किसानों के लिए नीम की नई किस्म FRI ने जो विकसित की है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है, ये वो खुद बता रहे हैं।
2: इन प्रजातियों को तेल की मात्रा, अत्यधिक तेल की मात्रा सामान्य प्रजातियों से लगभग औसत 5-8% तेल ज्यादा, और अजाडिरिक्टिन इसका एक केमिकल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, लिमोनाइड ग्रुप का होता है, वो सामान्य प्रजातियों में 3000 के आसपास, 2500 से 3000 ppm के आसपास ही पाया जाता है औसत, और हमारी इन 6 प्रजातियों में जिसमें मिनिमम 7000 का और मैक्सिमम 10000 ppm तक का है, इसका औसत 9000 आसपास है।
1: नीम की इस नई प्रजाति की खोज जब की गई तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा गया कि अगर इसे खेत में लगाया जाता है तो फिर उस खेत में दूसरी फसल की पैदावार संभव नहीं है, जो किसानों के हित में नहीं था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर किसान इसकी खेती कैसे करें।
3: जो गरीब किसान है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, उसकी आय में बढ़ोतरी करने का है, और उसका जो खेत होता है वो छोटा खेत होता है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ की जमीन है। अब अगर वो अपने खेत की बाउंड्री पे नीम के पेड़ अगर लगा दे और उसमें जो निमोरिया जो बनती है उसको मार्केट में बेच दे, तो उससे उसकी कमाई का एक एक्स्ट्रा साधन उसको मिल सकता है, जिससे कि उसकी आय जो खेती से जो आ रही है वो तो रहेगी, इसके अलावा ये एक एडिशनल इनकम उसके लिए बन सकती है। तो यही उद्देश्य है कि किसी भी किसान को अपनी बाउंड्री पे नीम के पेड़ लगा दे और उससे वो आय कमा सके।
1: किसान नीम की खेती कहाँ करें, या यूं कहें कि नीम के पेड़ को किसान उपजाऊ जमीन में ना लगाकर कहाँ लगाएं? इसकी सही सही जानकारी तो मिल गई, लेकिन सवाल एक और बनता है कि आखिर किसान नीम की खेती क्यों करें?
2: लीफ से लेकर के तना, फल, तेल सभी की उपयोगिता विभिन्न प्रकार की दवाओं के रूप में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में दातुन से लेकर के कॉस्मेटिक बनाना, टॉयलेटरीज बनाना, मेडिसिन बनाना, ये सारी उपयोगिता इसकी जो बहुत पहले से एस्टेब्लिश है, इसमें हमारा कोई नया नहीं है। लेकिन जो ये इसके लगाने का जो पर्पज है, अदर पर्पज को आप इनके बाद देखें कि सामान्य नीम अगर आप लगाते हो तो उससे ज्यादा इसमें उत्पादन मिलेगा। आप नीम के अच्छी प्रजातियों को लगा करके ज्यादा तेल की मात्रा के आधार पर उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। अधिक उपज के बाद बस शीघ्र ही इसमें फल आएंगे आपके साथ में। क्रॉप के साथ कल्टीवेशन का किया जा सकता है, जो लेसर उपयोगी जमीन है उस जमीन पर इसका प्लांटेशन करके लाभ कमाया जा सकता है।
4: नीम एक दिन इकोनॉमिक एंड वाइबल मॉडल होगा एग्रीकल्चर के लिए, और जो कि आज भी है, केवल हमको उसके गुणों को पहचानने की आवश्यकता है, उसकी कीमत को महसूस करने की आवश्यकता है और उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।
5: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी अपन ने गुणों को किस तरीके से पहचान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, उस पर हमारे विषय विशेषज्ञ की इस खास बातचीत को सुना कार्यक्रम में। और भी बहुत सारी बात चीत है ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने के लिए, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: एफआरआई की टीम नीम की इस प्रजाति पर पिछले कई सालों से काम कर रही थी। लगातार रिसर्च का काम चल रहा था, लेकिन एफआरआई की रिसर्च को मजबूती मिली साल 2015 के बाद। और वो कैसे, ये खुद बता रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत।
1: भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून के विभिन्न संस्थानों जैसे जोधपुर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इसमें कार्य तो 1992-93 में ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो कार्य अनुसंधान कार्य लगातार नहीं चला, छुटपुट हुआ, आइसोलेटेड पार्ट्स में हुआ। इसके बाद में हमने 2015 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने इफको के साथ मिलकर के एक अनुसंधान कार्यक्रम नीम सुधार अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की।

0: गिनो।
1: एफआरआई ने जिस नीम की नई प्रजाति की खोज की है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और ये बाकी नीम की प्रजाति से कैसे अलग है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर अशोक भी पिछले कई सालों से इस नई प्रजाति पर शोध कर रही टीम का ही हिस्सा हैं।
2: जो हमारी नई प्रजाति हमने जो डेवलप की है वो 2 से 3 साल में फ्लावरिंग करना चालू करती है। दूसरा इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, नीम में करीब जो आम नीम है उसमें 25 से 30% के आसपास ऑयल मिलता है, लेकिन जो हमारी प्रजातियां हैं इनमें करीब करीब 38 से लेके 41% तक जो है नीम ऑयल पाया जाता है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है, इसमें एक अजैक्टिव कंटेंट होता है। ये कंटेंट नीम में आम नीम में करीब 2500 से 3000 ppm के आसपास होता है, जबकि जो ये हमारी उन्नत जो किस्में हैं इनमें 8000 से लेकर के और 10000 के आसपास तक ये वेरी करता है। सो ये तीन जो पैरामीटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इन्हीं के बेस पे हम लोगों ने ये वैरायटी जो है डेवलप की है।

0: डॉक्टर अशोक ने नई प्रजाति के बारे में तो बताया, लेकिन किसानों को ये जानना भी जरूरी है कि अगर किसान इसकी खेती करें तो उसे क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी, नीम की खेती में किसानों को कितना खर्च आएगा। अगले साल की शुरुआत से किसानों के लिए ये बाजार में उपलब्ध होगा।
1: मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी किसी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। उनको अच्छी किस्म के पौधे अभी तो ये हमने निजात किए हैं, धीरे धीरे नर्सरीज में जाएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इन पौधों को खरीद के सिर्फ लगाना है और इस तरह से लगाना है ताकि जो उनकी जो एक एक एक तरह से जमीन के किनारे पे है या फिर बैकयार्ड में उसमें लगाना है ताकि कुछ नीम के पेड़ अगर वहां रहेंगे तो वो 2 से 3 साल बाद में फिर वो प्रोडक्शन करना चालू करेंगे, उनमें बीज का उत्पादन होगा जिसको सेल करके एक अच्छी आमदनी उसमें मिल सकती है। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसान को किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी।
0: नीम की इस प्रजाति को खोजने में कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कई सालों से लगातार इस पर काम कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में इसको लेकर शोध किए गए, तब जाकर उनकी टीम इस प्रजाति को खोज पाई।
1: ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, पूरे देश से अच्छा एग्जम्पलर इकट्ठा करना, उस एग्जम्पलर को मेंटेन करना, और सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है, मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि नीम के बीज को आप केवल 15 से 20 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद में उसका जो जर्मिनेशन का पावर है वो खत्म हो जाता है, वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इन 15 दिन में पूरे बीज को लाना, उसको रिसर्च स्टेशन में इकट्ठा करना, उसके बाद उसकी बुआई करना, उसको मेंटेन करना और आगे बढ़ाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम था। इसके बाद जो इस प्रोसेस में है कि हमको अलग अलग रीजन्स में इन सभी जो हमने जर्मप्लाज्म इकट्ठा किया है उसको इवेल्युएट करना होता है, उसमें ये देखना होता है कि जो आनुवंशिक जो इसके गुण है और जिस पर्यावरण में जिस वातावरण में ये उग रहा है उसमें आपस में इनका किस तरह का इंटरेक्शन है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज में टिश्यू कल्चर का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। FRI के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय ठाकुर बता रहे हैं कैसे टिश्यू कल्चर ने इसमें मदद की।
2: जब हमने आनुवंशिक सुधार के बारे में के बाद जब पौधे बनाए उसका परफॉर्मेंस देखा तो हमने क्या किया कि क्लोनल मेथड बोलते हैं, क्लोनल मेथड में हम किसी चीज की हूबहू कॉपी तैयार करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि बड़े पैमाने पे कम समय में हूबहू कॉपी तैयार करेंगे और जब वो पौधा बाहर निकलता है तो वो बीमारी फ्री होता है। जो भी तेल निकलने वाले पौधे होते हैं और वो इमारती मतलब लकड़ी वाले पौधे होते हैं उनमें कुछ टिश्यू कल्चर का बहुत चैलेंज होता है। पहला चैलेंज ये होता है कि वुडी हम लोग बोलते हैं ना कि जो काष्ठ प्रवृत्ति के होते हैं तो उनमें बहुत ही मैच्योर पौधे होते हैं, मतलब बूढ़ा गए हो सकते हैं, पुराने हो गए होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उसको थोड़ा पुनर्जीवित करना। तो हम अपने मेथड के द्वारा उसमें बहुत तरह की जो है हम PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन होता है जैसे हमारे ह्यूमन में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंसुलिन है तो वो पूरा हमारा शर्करा जो शुगर का है उसका डिसाइड करता है, उसी तरह प्लांट के कुछ जो है हार्मोन होते हैं जैसे कि ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, उसके विधि द्वारा हम उसको पुनर्जीवित करते हैं। और पुनर्जीवित करके पहले तो हम एक बीमारी फ्री पौधे का एक प्रारूप तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं कि पहला तो हम प्रारूप तैयार करेंगे कार्बन कॉपी से पहले। जब हमको वैसा मिल जाता है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है तो एक शूट, एक जो उसका तना है या एक ब्रांच जो निकलता है या एक छोटा पौधा निकलता है उससे हम कई पौधे बनाते हैं।

0: हालांकि टिश्यू कल्चर की तकनीक पर काम करने के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ इस प्रोसेस के दौरान कई बार निराशा भी हाथ लगी।
1: कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पहले तो हम बताया कि एक जो हम कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पिछला रिपोर्ट को देखते हैं, तो हमने उन रिपोर्ट के बेसिस पे काम जब किया तो हमने पाया कि जो जिन पौधों पे हम काम कर रहे हैं उस तरह का हमको उसमें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि किसी ने एक हार्मोन को कहा था कि अगर एक यूनिट देंगे, तो किसी ने कहा था कि उसको 40 यूनिट देंगे। तो हमने दोनों को लगा के देखा तो हमने देखा कि हमारे उसमें नहीं काम कर रहा है। तो हमने पहले तो अपने शोध को हमारे जो पौधे थे उसके हिसाब से विकसित किया। हमने पाया कि जो जितने लोगों ने बोला था उसका हमने 8 गुना कम किया, तब जाके हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इससे दो फायदे हुए कि हमको एक तो केमिकल की आवश्यकता या हार्मोन की कम पड़ी, दूसरा उसमें उसके क्लोनिंग में कोई छेड़खानी नहीं होती, यानी वो अपने क्लोनल स्वरूप को मेंटेन करता है। दूसरा उसका चुनौती था कि जब हम ये पौधा लाना, कि जब भी हम लाते हैं तो 24 घंटे तक में इसको लाना जरूरी होता है, तो हम इसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके की सिस्टम हमने डेवलप की थी। एक हम कूल बॉक्स ले जाते थे, कूल बॉक्स में हमेशा आइस पैक के साथ हम उसको लेके वहां से लाते हैं, और ऐसी व्यवस्था करते हैं या तो उसको हम हवाई जहाज से, या तो हम एसी वाले कंपार्टमेंट वाले ट्रेन से, या फिर हम अगर वाहन का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हमको जीप ही मिलता है, तो एसी वाले वाहन से हम उसको पौधे को काटते थे, सवेरे में काट देते थे, क्योंकि सवेरे के टाइम में सबसे ज्यादा सबसे शांत केमिकल माहौल होता है। और उसके बाद हम उसको पैक कर देते थे, और पैक करके उस कूल बॉक्स में डाल के आइस पैक के बीच में करके हम उसको अगले वहां ले आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इस तरह की चुनौती थी, बहुत निराशा हाथ लगी। देखिए, टिश्यू कल्चर में हम दो चीज कहते हैं, एक तो क्लोन होता है और दूसरा क्लोन नहीं होता है, उसको कैलस बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में हमको कैलस मिलता था, जब भी कैलस होता है तो उसमें क्लोनिंग नहीं होके वेरिएशन हो जाता है, उसमें मतलब चेंजेज आ जाती है, तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जा रहा था। तो ऐसा हमने बहुत जब किया तब हम उसको, हमने क्या किया, उसके हार्मोन को घटाना या बढ़ाना उस तरीके के कम से कम उसके 17 या 18 एक्सपेरिमेंट किए। जब 17 या 18 प्रयोग के बाद हमने पाया कि इसमें हार्मोन लेवल, हमने हर प्रजाति के लिए अलग अलग हार्मोन लेवल डेवलप किया, किसी के लिए 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था, किसी के लिए 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था। शुरुआती दौर में हमने 10 मिलीग्राम प्रति लीटर भी इस्तेमाल किया था। तो हमने इस पूरे प्रकरण में हमें साल लग जाता है सेट करने में।
0: FRI नीम को लेकर कई और शोध और खोज करना चाहती है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे अपने शोध के लिए दूसरे संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
2: जो हमारा सेटअप है, हम लोगों के पास अपनी ट्रायल के लिए कोई जमीन नहीं है, जिसके लिए हमें या तो किसानों पे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इश्यू आता है वो है लैंड का। इस केस में इफको, क्योंकि हम लोगों के जो है कि फंडिंग एजेंसी था, तो इफको की वजह से हम लोगों को कुछ इसमें सपोर्ट मिला है, लेकिन इन जनरल एक चुनौती यह है। और दूसरा यह है कि सीमित जो हम लोगों के पास जो वित्तीय संसाधन है वो निश्चित रूप से इसमें बाधा करते हैं। अगर वित्तीय संसाधन हमें मिलते हैं तो हम लोग और भी जो है स्पेसीज पे, उनकी वैरायटीज पे और क्लोन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं।
0: नीम की खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व न सिर्फ मिट्टी को ताकत देते हैं, बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं।
3: इसमें जो लिमोनॉइड श्रेणी के जो रासायनिक घटक होते हैं, उनका जो है कीटनाशक गुण बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इस तेल का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जो घटक इसके एंटी फंगल घटक खासकर जो है, उनका उपयोग जो है चर्म रोग में भी किया जाता है। तो इस ऑयल, इस जो ये जो तेल है, नीम का तेल जो है, ये औषधीय और कीटनाशक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो यौगिक है उसका नाम है एजाडिरेक्टिन। एजाडिरेक्टिन के भी कई श्रेणियां हैं, जिसमें मूल रूप से एजाडिरेक्टिन ए जो है ज्यादा सक्रिय माना गया है। ए से लेके एस तक के इसके वेरियंट जो है ज्ञात है। ए जो है एजाडिरेक्टिन ए, ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: नीम का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में सदियों से होता आया है। नीम का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है।
4: नीम के औषधीय गुणों की बात करें तो स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, यानी त्वचा की जितनी बीमारियां हैं, उन सभी में लगभग नीम बहुत अच्छा काम करता है। हम एलर्जी की कंडीशंस लेते हैं, यदि हम इस तरह की बॉयल्स हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं, जो गर्मियों में भी हो जाती हैं और इन्फेक्टेड फुंसियां भी होती हैं, बॉयल्स बोलते हैं जिनको, या नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं जो कि हील नहीं हो पा रहे, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स को, यहां तक कि नीम जैसे कि डायबिटीज में भी बहुत उपयोगी है, शुगर को कम करने में भी कारगर है, और शुगर के पेशेंट्स को अक्सर देखा गया है कि स्किन डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं और उनको अगर कोई चोट लग जाती है, अल्सर हो जाते हैं, तो वो नॉन हीलिंग वूंड्स या नॉन हीलिंग अल्सर्स कहलाते हैं, वहां पर भी नीम बहुत अच्छा काम करता है। इवन हम ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि जो चोट आपकी ना भर रही हो उसमें नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको वॉश करें और फिर बैंडेज या जो भी आपको चिकित्सा बताई गई है उसे करें।
5: नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम कल्प वृक्ष की संज्ञा दे सकते हैं। इस धरती के ऊपर जितनी भी तरीके की वनस्पतियों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने हमारे जानवरों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने मनुष्यों में, मानव जाति में जितने रोग और कीड़े हैं, उन सबको मारने का, उन सबको नष्ट करने का, उन सबका समन करने का एक कोई उपाय है, वो नीम है।
0: नीम की ये नई प्रजाति किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार और देश की अग्रणी संस्थाएं जिस तरह से नीम की खेती और उसके अलग अलग उत्पाद को प्रोत्साहित कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में नीम किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकेगा।
6: रेडियो टांडा भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना हमने, जाना किस तरीके से नीम के खास गुण होते हैं और किस तरह से औषधि पौधे के रूप में इसको देखा जाता है और किस तरीके से इसको बाजार में बेचा जाता है और इसमें कितने सारे खास गुण रहते हैं, इसके बारे में जानकारी को जाना। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि हम अपनी एक नई खेती को कर सकते हैं, नई चीज है, नए खेती है, इसको किस तरीके से कर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था कि इस तरीके की खेती हमारे किसान साथियों को औषधि खेती करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों की आय में बढ़ोतरी हो। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे बीली गीत को। नमस्कार।
7: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम।
8: आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।

हेलो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। और आइए, स्वागत है आपका हमारे अपने कलाकार प्रोग्राम में। हमारे चारों तरफ, हमारे मित्रों में, हमारे संबंधियों में कई कलाकार ऐसे हैं जो चुपके चुपके अपनी इस कला का मजा लेते रहते हैं, और हम भी जब भी हमें मौका मिलता है उनकी कला को सराहते हैं। तो आइए आज मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक कलाकार से। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे प्रोग्राम में जो कलाकार हैं उनका नाम है सुरेश कुमार। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की उन्हीं के गाए हुए इस गीत से।

0: सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, आपका आभार है। सुरेश जी प्रोग्राम को शुरू करते हैं और पहला सवाल मेरा आपसे ये है, अब भी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में क्या कुछ खास है बताइए।
1: मैं केरल के कोझिकोड जिले में रहता हूँ। कोझिकोड उत्तरी केरल का एक बड़ा शहर है जो समुद्र, नदियाँ और अन्य खूबसूरत जगहों से भरा हुआ है।
0: जी तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं सुरेश जी का गाया हुआ एक गीत।

0: बहुत सुंदर गीत। तो सुरेश जी, आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं और कब से हैं?
1: मैं कुछ सालों से पूर्णकालिक गायक और बिजनेस भी करता हूँ।
0: जी हाँ, तो लीजिए दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं सुरेश जी की आवाज में।

0: सुरेश जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं पूछना चाहूंगा कि गाने का शौक आपको कब से हुआ?
1: जी मैंने 4.5 साल की उम्र से गा रहा हूँ। उसके बाद में मैं 15 साल की ये एज से होकर प्रोफेशनल सिंगर भी हूँ।
0: बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा गीत सुनवाया जाए हमारे दोस्तों को?

0: दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार है जो हमारे कार्यक्रम के हमारे कलाकारों के गीत आप सुन रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हमें संपर्क करें। सुरेश जी, बहुत ही प्यारा संगीत और बहुत ही प्यारी गायकी है आपकी, तो मुझे ये बताएं कि आपको संगीत में क्या पसंद है, किस तरह के गाने पसंद हैं, गजल्स, शास्त्रीय संगीत या क्या?
1: मुझे आमतौर पर फिल्मी संगीत और गजल सुनाना और गाना बहुत बहुत बहुत पसंद है।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, पेश खिदमत है सुरेश जी का ही गाया हुआ एक और गीत।

0: रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं सुरेश जी। अब एक टिपिकल सवाल, आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और वो क्यों?
1: मेरे पसंदीदा गायक सर्वश्री SP बाला सुब्रमण्यम जी है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत पहलू के बिना भी कई गाना इतनी खूबसूरत से गाए। He is my favorite singer ever।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर। तो चलिए एक और गीत सुनवाते हैं हमारे दोस्तों को आपका गाया हुआ।

0: सुरेश जी, एक और सवाल जो मेरे पिछले सवाल से जुड़ा हुआ ही है कि आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है और क्यों?
1: जी, जब पसंदीदा गाने

0: की बात आती है तो कई कई गाने हैं, लेकिन वो शाम कुछ अजीब थी, ये गाना हमेशा पसंदीदा गाने में एक है।
1: बहुत अच्छे। तो लीजिए दोस्तों, एक और गीत पेश खिदमत है सुरेश जी की आवाज में।

0: बहुत ही प्यारी गायकी, बहुत सुंदर। सुरेश जी, आपकी हॉबीज क्या हैं? थोड़ा सा उनके बारे में हमें बताएं।
1: जी, मेरा पसंदीदा शौक तब भी गाना था और आज भी गाना है। और उसके बाद में खेल में अभी भी अच्छी रुचि है मेरे को।
0: तो लीजिए दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं।

0: सुरेश जी, अब वक्त आ गया है जब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके ही जैसे सिंगर्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए, कुछ संदेश दीजिए उन्हें।
1: मैं गायब हूं जो संगीत में कुछ नहीं चाहता है। गाना हमेशा मेरे को पसंद है। श्रोताओं से एक ही बात कहती हूं, हमेशा अच्छे गायक को प्रोत्साहित कीजिए।
0: बहुत बढ़िया, तो लीजिए एक और गीत सुनते हैं सुरेश जी की आवाज में।

0: सुरेश जी, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं को जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपके गीत सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका?
1: ये मैंने पहले बोल दिया, आपका प्रोत्साहन ही गायकों की ताकत है। आप सभी को बहुत ज्यादा धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर। तो लीजिए दोस्तों, एक और गीत पेशे खिदमत है।

सुरेश जी आपका बहुत बहुत आभार है जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपके गीत सुनकर हम सभी को बहुत मजा आया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।

0: दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार है जो हमारे कार्यक्रम के हमारे कलाकारों के गीत आप सुन रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, हमें संपर्क करें।
1: तो दोस्तों मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर। हम जल्द ही और भी इसी तरह के कलाकार आपके सामने लेकर आएंगे, सुनना ना भूलिएगा और अकेले मत सुनिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को भी बताइए, फिर मुलाकात होती है। सुनते रहिए।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत।

0: आज के कलाकार का एक और बहुत ही खूबसूरत एपिसोड लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो आज जो कलाकार हमारे साथ हैं, जो टैलेंट हमारे साथ हैं, वो हैं अरुण पंडित जी। और मुझे बहुत खुशी है पर्सनली कि वे उदयपुर राजस्थान से हैं, क्योंकि मैंने भी 35 साल राजस्थान में गुजारे हैं दोस्तों। तो चलिए मैं स्वागत करता हूं अरुण पंडित जी का। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है साहब, और आइए हमारे दोस्तों से बात कीजिए। मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहूंगा कि आप ही उनको बताएं आप कौन हैं, क्या करते हैं, कब से हैं राजस्थान में, बताइए ना।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पंडित। जैसा कि समीर जी ने शुरुआत में कुछ आप सभी को बताया, उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए आप सभी से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और रेडियो SN का और टीम SN का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत अगर मैं करता हूं तो बाय बर्थ तो मैं MP से हूं, लेकिन पिछले 30 सालों से मेरा राजस्थान में रहना हुआ, और यहां पे ही फिर मन रच बस गया, और फिलहाल तो मैं यहीं से हूं, और उदयपुर बेहद ही खूबसूरत शहर है, और आप सभी यहां आएंगे तब आपको भी महसूस होगा कि ये प्राचीन धरोहर वाला ऐतिहासिक शहर, पहाड़ियों से घिरा, झीलों से घिरा खूबसूरत शहर, शायद यहाँ आके आपका भी कुछ गुनगुनाने का मन करने लगे। और जैसा कि आगे समीर जी और भी बताते जाएंगे, मेरी जो समीर जी से बात हुई है उसके मुताबिक इन्होंने भी राजस्थान में काफी लंबा समय गुजारा है, तो आज इनसे बातचीत का सिलसिला मुझे लगता है शायद बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।
0: जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ बिल्कुल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल इट इज गोइंग टू हैपन। तो बहुत खूब दोस्तों, आपने जाना मेरे दोस्त अरुण पंडित जी, उदयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है, वहां रहते हैं और वहीं से गायकी करते हैं। तो चलिए शुरू करें अरुण जी के इस प्रोग्राम को उन्हीं के गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत बढ़िया अरुण भाई। अरुण भाई, आपने बताया कि यूं तो आपका जन्म जो था वो मध्य प्रदेश में हुआ, पढ़ाई लिखाई भी आपकी मध्य प्रदेश में हुई?
1: जी हाँ, पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई
0: बहुत
1: जी।
0: बढ़िया। नहीं, मध्य प्रदेश में कहां से, कौन से शहर से?
1: मध्य प्रदेश में रतलाम के पास एक छोटा सा कस्बा हुआ करता है, जावरा,
0: ओ
1: वहां से
0: वेरी नाइस,
1: जी।
0: बहुत बढ़िया। रतलाम की सेब बहुत मशहूर है साहब, काली मिर्च वाली। जितने भी फूडीज हैं, ज्यादातर लोग फूडीज ही होते हैं, उनको पता भी होगा, नहीं पता है तो बता रहा हूं। एनीवेज,
1: जी
0: मुद्दा ये है अरुण
1: जिस तरह
0: भाई।
1: से
0: जी
1: जी जिस तरह से मधुर संगीत कानों में गूंजता रहता है और उसका जायका दिल से दिमाग से नहीं निकलता, वैसी ही रतलामी नमकीन भी होती है, उसका जायका जबान से जाता नहीं। मैं आप सभी से
0: वाह,
1: रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आप यहाँ आइए, मैं आपको रतलामी नमकीन का मजा
0: क्या बात है,
1: दूंगा।
0: क्या बात है, क्या ओ गॉड, ओ गॉड, ओ गॉड। तो दोस्तों, मैं यहां पर दरअसल अरुण जी से ये पूछना चाह रहा था कि उनका पहला गीत हमने सुन लिया। अरुण जी, जिस वक्त आप छोटे बच्चे थे, आई मीन यू वर इन योर चाइल्डहुड,
1: जी
0: ओरिजिनली क्या बनना चाहते थे आप, और फिर इवेंचुअली क्या बन गए? वो तो हम देख ही रहे हैं दैट यू हैव बिकम अ मेडिसिनल केमिस्ट्री प्रोफेशनल, बट बचपन में क्या बनना चाहते थे आप?
1: सर, मतलब जिस तरह से आजकल का जो बचपन होता है ना, कि सोशल मीडिया से बच्चे काफी कुछ सीख जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा बचपन बहुत एक तरह से प्राकृतिक वातावरण में गुजरा है,
0: जी
1: जहाँ आभासी दुनिया या वर्चुअल वर्ल्ड नहीं था वहां पे। और चूंकि छोटे शहर में पला बड़ा था इसके, और काफी बड़ा परिवार था, बड़े भाई बहन काफी थे, तो मेरा सपना हर दिन बदलता रहता
0: ओ ओके
1: था।
0: ओके ओके, नहीं, आई
1: जी
0: एग्री, ये तो
1: तो
0: सब हम सबके साथ हुआ है बॉस। हम लोग
1: मतलब कोई
0: कभी
1: पिक्चर देख रहा हूं मैं, तो किसी को अगर मैंने देखा है कि जैसा कि होता है आज, तब भी और आज भी बच्चन साहब मेरे फेवरेट हीरो थे, ठीक है, तो बच्चन साहब को किसी पिक्चर में इंस्पेक्टर में के रोल में देख लिया, मैंने कहा यार इंस्पेक्टर बनने में ही मजा है जीवन का, तो यार बाकी तो सब बेकार है। उसके बाद किसी पिक्चर, अच्छा ना, आपको सुन के हंसी आएगी कि कुछ फिल्मों में मैंने कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन देखा कि यार डाकू भी बड़ा मस्त है, बहुत शानदार वाला डाकू है यार, ये तो गरीबों की मदद करता है और देखो गाना आना गाता है, डांस करता, तो मैंने सच बताऊं तो डाकू बनने का भी सोचा था एक आध बार।
0: अरे यार, आई स्वेयर अरुण भाई, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों को बिल्कुल हंसी छूट गई होगी, और लोग बाग इस बात से रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि बचपन में तो यार नकाब वकाब लगा के और अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक जुल्म मिटाने को अमिताभ बच्चन निकलते हैं। ऐसा तो कुछ हम भी बनना चाहते थे। बहुत बढ़िया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्यूट, बहुत कूल, मजा आ गया भाई। तो दोस्तों, आई एम श्योर आप भी रिलेट कर पाए होंगे, बचपन में ऐसी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती ही रहती हैं। तो चलिए ना, आगे बढ़ते हुए एक प्यारे से गीत का मजा भी ले लें अरुण पंडित जी की आवाज में, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत बढ़िया हुआ अरुण भाई, अमेजिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जिस वक्त आपने गायकी शुरू की तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए, कब कब आपको लगा कि आप गायकी में उतर रहे हैं, म्यूजिक ने आपको अपनी तरफ खींच लिया है, आपका गायन अच्छा होने लग गया है, किस वक्त आपको महसूस हुआ, कब शुरू हुए आप?
1: इसमें ऐसा था कि पहले क्या था, रेडियो ही एकमात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था
0: जी,
1: और कुछ रिकॉर्ड प्लेयर जो थे वो हुआ करते थे घर पे, मोहम्मद रफी साहब के, किशोरदा के, इनके गाने बजा करते थे। हमारे बड़े भाई बड़े शौकीन थे गीत संगीत के, और मेरी मदर को लोकगीत गाने का बड़ा शौक था। वो काम करते करते जो एक फोक सॉन्ग होते हैं वो गुनगुनाती रहती थी दिन भर।
0: ओके,
1: तो बस मैं मम्मी की नकल किया करता था और मम्मी की आवाज निकाला करता था।
0: ओके, अरे वाह, ओ माय गॉड, ओके।
1: तो हमारे बड़े भाई साहब ने जब मेरी रुचि कुछ इस तरफ देखी तो वो गजल वगैरह के जब भी काफी शौकीन थे, तो वो मुझे सिखाते थे, बताते थे कि चलो ये तुम ये गा के बताओ, अरे ये तो सही नहीं गाया, फिर से गाओ, अच्छा मैं तुमको इतने पैसे दूंगा, शाम को दोबारा से मुझे ये गाना सुनाना। तो उस तरह से जो सिलसिला चलना शुरू हुआ, और उसके बाद उनके दोस्त लोग शाम को इकट्ठे होते थे तो सारे दोस्तों के बीच में जो है, मतलब मैं छोटा था लेकिन एक सेलिब्रेटर जैसा फील करता था।
0: क्या बात है।
1: भाई साहब के दोस्तों के बीच में बैठा हूँ और वो सारे लोग जो है मुझसे गाना सुनने की फरमाइश कर रहे हैं और मैं उनसे बदले में पैसे लेता था। अब ये बात अलग है कि गजल वगैरह सुनाने के 25 पैसे लेता था, लेकिन किशोर कुमार का गाना सुनाने का 1 रुपया लेता था।
0: 1 रुपया लेता था, क्या बात है, क्या बात है, वो म्यूजिक दैट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको पता था कि क्या मेहनत का फल क्या होता है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और देखिए, आज मुझे लग रहा है मैं आई हैड स्पोकन टू सो मेनी टैलेंट्स और बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, लेकिन आज आप खुल के बिल्कुल दिल की बात बता रहे हैं कि साहब म्यूजिक में आपकी जो है गुदान कैसे हुई, दैट इज सो ब्यूटीफुल। आई मीन आई रियली लव्ड इट।
1: समीर का अर्थ तो आपको पता ही होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेडियो एसेंस से मंद मंद बहती हुई पवन मुझ तक पहुंच रही है। समीर का मतलब पवन ही होता है ना सर?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही
1: जी।
0: अब आप जी जी जी जी बोलिए बोलिए बोलिए।
1: एक दिलचस्प अर्थ इसका यह भी है सर, अगर अरबी लैंग्वेज में देखा जाए तो समीर का मतलब रात भर जागकर बातें करने वाला साथी या फिर खुश मिजाज दोस्त।
0: Really?
1: तो आई थिंक रात भर तो मैंने आपसे बात नहीं की है, लेकिन आपसे बात करने पे यह एहसास जरूर हुआ है कि आप एक खुश मिजाज दोस्त बन सकते हैं या हैं।
0: मैं 100% हूँ सर, 100% हूँ, आई एम अ कंपनी लविंग पर्सन। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं रात में जाग नहीं पाऊंगा सर। मेरे को रात में सोने का बड़ा प्रॉब्लम है, 8-8:30 बजे तो लुढ़क जाता हूँ मैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, आपका आपकी बात सुन के सर बड़ा घमंड सा हो गया, दैट आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड कंपनी, आई एम अ गुड फ्रेंड, आई लाइक दैट। और बड़ी खूबसूरत बात कही अरुण भाई ने, अरुण भाई के साथ बातचीत ही अपने आप में बड़ी दिलचस्प होती जा रही है बहुत तेजी से। तो चलिए, 1 मिनट के लिए मुस्कुराना बंद मत कीजिएगा, मुस्कुराते रहिए, अरुण भाई की बातें सोचते रहिए और गाना सुन लीजिए उनका, एंड देन आई विल कम बैक विद मोर इंटरेस्टिंग एंड फनी टॉक्स। थैंक यू।

0: बहुत बढ़िया बात हुई. ओके अरुण भाई, चलिए वो तो आपने बताया, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड बीन यू नो लविंग द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन वी हैड बीन हैविंग. बट आपको और बेहतर समझने के लिए, आपकी गायकी को, आपके संगीत को, प्रतिभा को समझने के लिए, समझ दीजिए ना हमें अरुण जी कौन है भला. गायकी हम सुनी रहे हैं, गाने हमने आपके सुने, किस तरीके का म्यूजिक आपको ज्यादा पसंद है? देखिए आप कहोगे सब तरीके का, फिर भी एक इंक्लिनेशन होता है गजल की तरह, भजन की तरह, फोक म्यूजिक. आपने बताया आपकी माता जी जो है वो फोक म्यूजिक गाती थी, करेक्ट? सो फिर इसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक भी आ जाता है, बहुत सारे तरीके के म्यूजिक्स हैं. सो आपको पर्सनली कौन सा संगीत पसंद है, कौन सा जॉनर उसका पसंद है?
1: सर मुझे हिंदी फिल्म संगीत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है.
0: ठीक है.
1: जिसमें रफी साहब की, शोरदा कुमार शानू, अमित कुमार, इन सबको सुनना मुझे काफी पसंद है. और कुछ सेमी क्लासिकल आप मान लीजिए कि वो भी पसंद है मुझे. जी
0: सेमी क्लासिकल का मतलब क्या हुआ?
1: शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो हिंदी गीत हैं, जैसे ओ माई रे मा कैसे कहूं के, या रेना बीती जाए शाम ना आए, या इस तरह के, ये गाने भी तन्हाई में सुनना बहुत अच्छा लगता है.
0: वाओ दोस्तों, आपने कुछ सुना क्या? मुझे सुनाई दिया है, आपने पता नहीं पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, क्योंकि चलिए अभी मैं एक गाना पेश कर रहा हूं अरुण जी की आवाज में, फिर मैंने जो पकड़ा है ना उसके ऊपर बातचीत करने आने वाले हैं हम. और आई एम 200% श्योर अरुण जी भी चौंक जाएंगे, ट्रस्ट मी. आइए पहले गीत सुनते हैं.

0: बहुत बढ़िया। तो अरुण जी, चौंकने के लिए तैयार हैं आप? अभी अभी आपने जी बोले
1: सर, मैं चॉकलेट अभी खाऊंगा तो मैं डायबिटीज हो जाऊंगा, क्योंकि एक तो मीठी बातें और ऊपर से चॉकलेट, तो ये दोहरी, ये दुगुनी शक्कर हो जाएगी सर।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, घबराओ मत सर, मैं चॉकलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, चौंकने की बात कर रहा हूँ। अमेज्ड। अमेज्ड।
1: ओके।
0: लेकिन आपने मूड खराब कर दिया, अब चॉकलेट जानी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी यार घर में, चॉकलेट का मन हुआ है अब। एनीवेज, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अभी अभी जब जब आपसे मैंने पूछा कि कौन सा म्यूजिक आपको पसंद है, तो आपने जॉनर बताया, फिर आपने कहा सेमी क्लासिकल। मेरे सारे सुनने वालों, मेरे आज के कलाकार के फैमिली मेंबर, सभी लोग ध्यान से सुने, उन्होंने एक गाने का नाम लिया जो कि बहुत बहुत कम सुनाई देता है, और सच ये है कि वो गाना मेरे दिल के बहुत नजदीक है। एंड आई एम नॉट, मुझे पक्का पता नहीं कि अरुण जी को ये गाना क्यों पसंद है और उन्होंने यहां पर उस गाने का नाम क्यों लिया। कौन से गाने का नाम लिया अरुण जी आपने?
1: एक तो रेना बीती जाए, शाम ना आए, और मायरे में कैसे कहूं कि अपने
0: मायरे, मायरी मायरी मायरी, पलाश, डॉक्टर पलाश का गाया हुआ ये गीत है
1: जी।
0: मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं सर?
1: ये दस्तक फिल्म में लता जी ने भी गाया, और आई थिंक मदन मोहन जी ने भी गाया है, जहां तक मैंने सुना है।
0: आप गुनगुना के बताएंगे मुझे प्लीज?
1: मायरे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ऑलराइट, आई गॉट कंफ्यूज्ड। लेकिन डॉक्टर पलाश का एक गीत है मायरी, उसने अपने दादी के ऊपर गाया है, तो मुझे लगा आप शायद उस गीत के बारे में बात कर रहे हैं। वो भी कुछ सेमी क्लासिकल है और हल्का सा उसमें पंजाबी पुट आता है। आई एम श्योर हमारे सुनने वाले कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने इस गीत को सुना होगा। वो कुछ ऐसा है, बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके, आई एम नॉट अ सिंगर, ऐसा कुछ है। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग, बट आई गॉट एक्साइटेड। तो वेल, बहुत बहुत सारे लोगों को हिंट मिल रहा होगा कि क्यों ना इस गीत को गाने की कोशिश कर ली जाए। फिर अरुण जी, चैलेंज है आपके लिए
1: जी,
0: गा के बताइए इस गीत को। सुनिए कहाँ है ये गीत, सुन के बताइए। मायरी, डॉक्टर पलाश। डॉक्टर पलाश मतलब ही इज ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिल्ली एम्स से पढ़े हुए, लेकिन उनको गायकी का शौक था, तो उन्होंने अपना बैंड बनाया। उनके बैंड का नाम था धूम, और धूम पिचक धूम करके उनका जो गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। तो कभी ढूंढ के देखिए, उन्हीं में है एक मायरी, मायरी वो गाना कभी ट्राई करके देखिएगा। चलिए, बात कहीं की कहीं चली गई, लेकिन मजा आ गया। एक चैलेंज भी मुझे मौका मिला आप सब लोगों को देने का। तो दोस्तों, ट्राई कीजिएगा, तब तक जब तक आप ट्राई करें अरुण जी की ही आवाज में गीत को सुने और फिर आगे बढ़ें।

0: बहुत खूब अरुण भाई, मुझे ये बताइए, कभी स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका मिला? और अगर मिला तो कैसा लगा? डर लगा? कैसे संभाल लिया अपने आप को? क्या एक्सपीरियंस था वो?
1: मैं जहाँ तक मुझे कुछ ध्यान आता है, जो धुंधली सी याददाश्त, मैं फिर से जब पास्ट में जाता हूँ तो मुझे लगभग 4 या 4.5 साल की उम्र में मेरे बड़े भाई ने स्टेज पे उतार दिया था।
0: ओके।
1: तो तब से मेरे को स्टेज फियर जैसी कोई चीज कभी नहीं रही सर।
0: अरे वाह। ओके ओके।
1: तो बहुत बिंदास तरीके से जाता हूँ, जैसा मतलब जो सच है वो सुंदर है, सुना होगा ना आपने, जैसा मैं हूँ उसी तरह से जाता हूँ बस। किसी तरह के मेरी कुछ बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा संकुचित होके जा रहा हूँ या थोड़ा डर के जा रहा हूँ या नजरें नहीं उठा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस गाने की शुरुआत में मेरी आंखें नीचे रहती है कि मेरा मुझे स्टार्ट सही मिल जाए, उसके बाद में पब्लिक से आंखें मिला के गाता हूँ।
0: क्या बात है, मतलब फिर तो वार्म अप हो जाता है एंड देन यू बिकम कॉन्फिडेंट कि अब तो कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है, तो उसके बाद बस चल पड़ता है। वाह क्या बात है। नो दैट ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है बड़े बड़े सारे हमारे जितने भी मित्र हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक बार स्टेज पे चल के हल्का सा घबराहट का और स्टेज फ्रेट जिसको बोलते हैं वो होता है, और एक बार आपने स्टेज को ओन कर लिया उस पर, मतलब आपको लगा ये मेरा आधिपत्य है बस
1: जी,
0: उसके बाद तो बस नहीं अपार हो जाती है, कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत बढ़िया, नाउ दैट इज ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। चलो दोस्तों,
1: आपने नैया का जिक्र किया, तो अगर नैया का खेवैया समीर समीर जी जैसा हो तो फिर शायद घूमने वालों को भी मजा आएगा इस सुरीले सफर में।
0: ये मुझे पसंद आई बात बॉस, ये मुझे बिल्कुल पसंद आई। मेरा रोल आपने डिफाइन किया है, आई लव इट। मैं कई बार अपने वैसे भी कहता रहता हूँ कि आई एम जस्ट अ कोरियर, मैं एक संदेश वाहक हूँ, मैं एक ड्राइवर हूँ, एक चैरियटियर हूँ, मैं सिर्फ रथ चला रहा हूँ, अर्जुन तो आप हो, बाण तो आपको ही चलाने हैं साहब। तो चलिए इस प्यारे से गीत का आनंद उठाएं पहले, और फिर अरुण जी के साथ बातचीत, प्यारी सी बातचीत में वापस लौटेंगे। थैंक यू।